में शामिल है।

मैंने ये न जाना कभी, ऐसा न था हाल मेरा पहले, हाल ये मेरा हुआ है अभी। वो ख्वाब है या हकीकत है?

0: ऐ मेरी हमरंग मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तू भी ना आती।

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La virtua la burka.
1: Mirchi, burka. हेलो,
2: इज दैट वर्षा? वर्षा, मैं निखिल बोल रहा हूँ, एक्चुअली मुंबई से मैं बोल रहा हूँ। हमारा एक रियलिटी शो शुरू होने वाला है जिसका नाम है धारेगामा पा।
1: क्या नाम बताया आपने?
2: धारेगामा पा। हमारा ये रियलिटी शो है, मुझे कहीं से पता चला कि आप अच्छी सिंगिंग कर लेती हैं, अच्छा गाना गा लेती हैं, और किसी ने मुझे बताया कि आप हिमेश रेशमिया को भी कॉपी कर सकती हैं, उनके गाने आपको पसंद हैं।
1: थोड़ा बहुत गा लेती हूं।
2: ओके, मैं आपको टेलीफोन पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर धारेगामा पा में आप शॉर्टलिस्टेड हो गई तो हम आपको फिर इस रियलिटी शो में पूरा हिंदुस्तान देखेगा, आपको गाने का मौका देंगे।
1: बट ये रिकॉर्डिंग आप फोन पर ही करेंगे?
2: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझिए आप। आपको जो भी गाना देंगे आप उसमें हिमेश रेशमिया का जो आपने मशहूर सुना होगा अब तक, ओ राइट, वो जो एक उनका सुर है,
1: लेकिन उनकी कॉपी करनी पड़ेगी।
2: नहीं नहीं नहीं, नॉट एग्जैक्टली कॉपी, आप कोशिश करिएगा कि हिमेश रेशमिया स्टाइल में गाना आपने सुना ही होगा। गाना है आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। गाने की शुरुआत में, गाने के बीच में, अंतरा जब खत्म हो, मुखड़ा जब शुरू हो, आप ऊ ऊ लगाएंगी। स्टार्ट वर्षा। वर्षा, वन सेकेंड, देखिए ऊ।

0: वही वाली ऊँ चाहिए जो पहले करी थी आपने, बहुत अच्छी करी है।
1: देखिए इससे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा।
0: अरे गड़बड़ आपको क्या प्रॉब्लम है, हमारा शो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, धारेगा में पानी सा, स्टार्ट।
1: मिल गई मंजिल मुझे,
0: ऊँचाइए ऊँचाइए।
1: ओ
0: तेरा तेरा तेरा सुरूर, एक्चुअली ये तेरा कसूर भी नहीं है
2: वर्षा, ये किसी का कसूर नहीं होता, ये कसूर उनका होता है जो लोग मुझे नंबर देते हैं और ये कहते हैं कि उनका मुर्गा बनाया जाए। वर्षा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा आपको अजीब लगा होगा।
1: oh
2: लेकिन
1: अजीब नहीं, मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot,
4: it's hot.
5: A ring for the newly married, cute little bangle for the newborn.
6: अरे यार, holiday season is here और फिर वही gifting का tension. फिर मालबार gold and diamonds, gold and summer के साथ, buy a free cash vouchers on diamond and precious gem jewelry purchases. Plus, exchange your gold jewelry and upgrade to the latest designs without any loss. और सुनो, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
7: How's the Josh?
8: Hi, sir!
7: How's the Josh?
8: Hi, sir!
9: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
10: बैक टू बैक।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Well, मुझे सुनने वाले ऑल द पेरेंट्स आउट देयर, मुझे सच बताइए कि भाई आपके बच्चों को किसी चीज से एलर्जी हुई है या फिर आपने खुद ही ऐसे जजमेंट कर दिया है कि नहीं यार इसको शायद दूध सूट नहीं कर रहा है या अंडे सूट नहीं कर रहे हैं या ये सूट नहीं कर रहा है। और अक्सर ऐसा होता है ना कि पेरेंटिंग करते वक्त पहली बार रहती है, बहुत सारे अजम्पशंस हम कर लेते हैं और इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए एक नई खबर आई है।
1: क्या खबर कदर?
0: देखिए खबर ऐसी है दैट हमद मेडिकल कॉर्पोरेशन ने वर्ल्ड एलर्जी वीक के मौके पर दो नए स्पेशलाइज्ड पीडियाट्रिक एलर्जी सर्विसेज लॉन्च किए हैं। देखिए अब बच्चों के लिए स्किन एलर्जी टेस्ट और फूड एंड ड्रग चैलेंज टेस्ट अवेलेबल होंगे। स्किन टेस्ट डॉक्टर्स को एक्चुअल एलर्जन जो है वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है जिससे अर्ली डायग्नोसिस और बेटर एलर्जी मैनेजमेंट पॉसिबल होता है। और जो फूड एंड ड्रग चैलेंज टेस्ट है ना उनका काम सिर्फ एलर्जी पकड़ना नहीं होता है बल्कि एलर्जी को रूल आउट करना भी होता है क्योंकि कई बार ना लोग सालों तक अननेसेसरीली मिल्क एग्स या कुछ मेडिसिन ना अवॉइड करते हैं जबकि साइंटिफिकली उनकी जरूरत होती नहीं है। मेडिसिन में ना एक कॉन्सेप्ट होता है ओवर डायग्नोसिस बाय अजम्पशन, मतलब टेस्ट के बिना सिर्फ गेस वर्क किया और उस वजह से बस रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि नहीं ये नहीं खाना है ये ऐसा हो सकता है। लेकिन ये जो नई सर्विसेज है जो हमद मेडिकल कॉर्पोरेशन लेकर आई है ये गेस वर्क को रिप्लेस करेंगी एविडेंस बेस्ड डायग्नोसिस से। और इसका रिजल्ट क्या है कि आप अपने बच्चों को ना बेटर न्यूट्रिशन दे सकते हैं, अननेसेसरी जो फूड रिस्ट्रिक्शन लगाए रखे हैं उससे छुटकारा मिल सकता है और एंटीबायोटिक्स का जो इस्तेमाल है वो ज्यादा जुडिशियसली कर सकते हैं। तो वेल अगर आपके घर में किसी बच्चे को रिपीटेडली एलर्जी सिम्टम्स अगर होते हैं ना तो सेल्फ डायग्नोस या गूगल या फिर चैट जीपीटी ये सब बिल्कुल नहीं कीजिए, साइंटिफिक कंफर्मेशन कीजिए क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम एलर्जी नहीं सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। और जब ये क्लैरिटी मिलती है ना तो पेरेंटिंग भी जो है वो थोड़ी और स्ट्रेस फ्री हो जाती है ना कि नहीं। माइक से दिल तक आप शीन के साथ है आप राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: दोस्ती का ही कुछ सुन ले मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
1: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
2: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
3: खूब मिलेगा, मिलेगा।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: weather check brought to you by RSL Group of Company. Ab pao Qatar mein delivery riders or driver ki job. For bright future, call now 3100813.
1: बिल्कुल वेदर को चेक करने का अब वक्त आ ही गया है।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
0: वेदर अपडेट।
1: देखो वेदर आज ये कह रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर आज 45 डिग्री तक आ सकता है। ओह माय गॉड, मिनिमम 32 तक रहेगा शाम के वक्त। अभी जो महसूस कर रहे हो आप, ये 36 डिग्रीज है और ह्यूमिडिटी जो है वो एक्चुअली कम लग रही है, 25% पर है, यानी ड्राइनेस बहुत रहने वाली है हवाओं में। लेकिन हवाएं भी बहुत तेजी से चल रही है, 16 किलोमीटर पर आवर पर हवाओं की रफ्तार रहने वाली है। सो ऑल इन ऑल अपनी तबीयत का अच्छे से ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये जो ड्राई सा वेदर होता है, हवाएं चलती है, तो यार तबीयत खराब होने के बहुत चांसेस रहते हैं। सो बस पानी पीते रहिएगा और कूल रहने के लिए हॉट वाला रेडियो स्टेशन सुनते रहिएगा। माइक से दिल तक आफरीन के साथ, इट्स हॉट। अ ब्यूटीफुल ट्रैक कमिंग अप जो आपके दिन को बहुत खूबसूरत बनाएगा, दैट इज अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज में हॉट मिर्ची।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: लगा
6: मिर्ची। It's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: देखो मैं गलत नहीं हो सकती हूँ, मैं यहाँ पर एकदम ढूंढ ढांड के आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। देखो भाई, जानती हूँ मैं कि अब सबकी तैयारियां चल रही है, इनफैक्ट कल तक आई थिंक सो सब स्कूल्स चालू थी एंड फाइनली खत्म हो गई। अगर कोई स्कूल अभी बची है, चालू है, देन लेट मी नो ये कौन सी स्कूल है जो अब तक ही चल रही है। सो वेल आई एम श्योर पैकिंग शैकिंग चल रही होगी, वेकेशन पर जाना है, और जो लोग इंडिया जाने वाले हैं उनके लिए ये खास ट्रैवल एडवाइजरी है, वो है एयर सुविधा 2.0 से रिलेटेड। अब ये जो है ये मैंडेटरी है फॉर ऑल द इंटरनेशनल पैसेंजर्स कि इन्हें ये हेल्थ डिक्लेरेशन जो है ये ऑनलाइन जो है कंप्लीट करनी है बिफोर ट्रैवलिंग टू द कंट्री। अब ये जो अपग्रेडेड सिस्टम है ये इंट्रोड्यूस किया गया है, इट्स अ पार्ट ऑफ एनहांस्ड हेल्थ स्क्रीनिंग मेजर्स, क्योंकि एबोला ये वायरस आउटब्रेक कहीं पार्ट्स ऑफ अफ्रीका में रिपोर्ट किए गए हैं, उस वजह से आपने जो है ट्रैवलर्स एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ये सबमिट करना है बिफोर अराइवल, और ये आप 24 आवर्स बिफोर अराइवल भी सबमिट कर सकते हैं। तो बस यही एंकरेज किया गया है कि आप ये जो सबमिट करोगे तो उसको आप वेब चेक इन के बाद कर लीजिए, या फिर आप जब बोर्डिंग की तरफ जा रहे हो तब कर लीजिए, कि ये ना हो गड़बड़ की जब आप लैंड करो फिर आप वो फॉर्म भरने बैठ जाओ फिर वो इमिग्रेशन के लिए देरी हो जाए। वो क्या होता है ना, जैसे ही हम लैंड होते हैं ना, अब आपके होम टाउन कहिए, मुंबई, पाकिस्तान, कहीं पर भी कहिए, तो कैसा रहता है कि अगर आपको देरी होती है ना तो एक हलवली मचती है, यार अपनों को मिलना है, बाहर रिश्तेदार वेट कर रहे हैं। सो बस तैयारी में रहो, एयर सुविधा फॉर्म जो है वो भर दीजिए, वेदर यू आर ट्रैवलिंग टू दिल्ली, मुंबई, और यहाँ से और कहाँ डायरेक्ट फ्लाइट्स जाती है, गुजरात, कोलकाता, जस्ट बी अपडेटेड। मैं हूँ आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अनिल कपूर सर, ये सवाल हम आपसे 365वीं बार पूछ रहे हैं कि आपकी फिटनेस का राज क्या है?
3: हेल्थ ऐसी बनाओ, काम ऐसा करो कि आप 40, 50 साल, 60 साल तक आराम से वैसे ही काम करते रहो। मीठा खाना तो थोड़ा थोड़ा। आपको मीठा अगर सूट नहीं करता तो हफ्ते में एक बार खाइए, और खाना तो थोड़ा सा खाइए। आपको नमकीन पसंद है, उसका मतलब ये नहीं कि आप इतना ही नमकीन खाते रहें। आपको चावल पसंद है तो दबा के आप चावल ही खा रहे हैं। आप यू नो, तो हर चीज़ करनी चाहिए, मगर थोड़ा थोड़ा करके इट शुड वर्क इट आउट एंड बैलेंस एवरीथिंग इन लाइफ एंड डू एवरीथिंग इन लाइफ एंड दैट्स आई फील इज द मंत्रा फॉर योर फिटनेस। डू एवरीथिंग बट डू इट इन मॉडरेशन एंड डू इट व्हाट मेक्स यू हैप्पी।
2: हेल्थ टिप आपने दिया एकदम क्लास, क्योंकि अनिल कपूर आप आदमी एकदम झकास। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स ऑल
0: बॉलीवुड बोल्डा। Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
5: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
6: बार बार।
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
5: FM Mirchi 1. It's hot. Mirchi Fresh Maal.
8: जब हर बीट में हो तड़का तब बनती है चटनी।

0: इस गाने को आवाज दी है नीलकमल सिंह और ममता शर्मा ने, म्यूजिक दिया है आदित्य देव और नीलकमल सिंह ने, और लिरिक्स लिखे हैं धीरज बबुआन ने। धमाल फोर से सुनते रहिए चटनी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
2: मैं अपने पौधे को पानी दे देकर थक गया हूँ, पर पौधा बड़ा ही नहीं हो रहा, क्या करूँ?
1: अरे गोचू, तो तेरे को किसने बोला था कि आर्टिफिशियल पौधा ले?
3: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस।
4: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

0: Well, that is Cocktail 2 ka gaana, featuring Shahid Kapoor, Kriti Sanon and Rashmika Mandanna. Sung by Mehmood Raghav Chaitanya Rua Ke. Main hu Afreen aapke saath right here on Mirchi Mornings. और मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 7:02 की तरफ और अगला गाना अरिजीत सिंह की आवाज़ में आ तो रहा है लेकिन उसके तुरंत बाद मैं आपको सुनाने वाली हूँ कि फुटबॉल के जगत में क्या चल रहा है भाई वर्ल्ड कप किस मोड पर आ गया है क्या क्या हो रहा है ये सब कुछ लेकर आऊंगी ना मैं राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर

फुटबॉल वर्ल्ड कप ने एक चीज तो बिल्कुल कंफर्म कर दी है, दैट एवरी नाइट कुड बी अ सरप्राइज. जैसे कोई जायंट टीम भी गिर सकती है, जैसे जर्मनी या नेदरलैंड्स. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. और देखिए, कल के राउंड ऑफ 32 में नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली. ये मैच मैंने कल देखी थी एंड आई शुड से आइवरी कोस्ट ने बहुत ही जबरदस्त फाइट दी है. मतलब नॉर्वे का जो सेकेंड गोल था वो बिल्कुल आखिरी मिनटों में था एंड आई वॉज रियली रूटिंग. मतलब जब भी कोई स्ट्रॉन्ग टीम खेलती है ना ऐसे अंडरडॉग्स के साथ में, आई रियली रूट फॉर दिस अंडरडॉग्स के भाई ऐसा कुछ हो जाए कमाल की ये जीत जाए. आएगा ये, एक दिन भी आएगा. वैसे चलिए बात करते हैं उसके बाद की मैच के बारे में, दैट इज फ्रांस एंड स्वीडन के बीच जो 3-0 से कंफर्टेबली बीट कर दिया. और एम्बापे ने तो 2 गोल्स के साथ अपनी रेड हॉट फॉर्म कंटिन्यू रखी है. रात के आखिरी मुकाबले की अगर बात करें तो मेक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया. मतलब अभी की मैच है ये, जस्ट नाउ इफ यू कैन से दैट. और होम ग्राउंड के सामने ही मेक्सिको ने राउंड ऑफ 16 का टिकट पाकर जीत हासिल कर ली है. वेल, उसके बाद आगे आने वाली मैचेस की अगर हम बात करें तो 3 जबरदस्त नॉकआउट क्लैशेस आपको देखने मिलने वाले हैं. दैट इज इंग्लैंड वर्सेज डीआर कांगो, जहां इंग्लैंड फेवरेट जरूर है लेकिन डीआर कांगो पहले ही एक अपसेट कर चुका है. फिर बेल्जियम के सामना जो है वो सेनेगल से होने वाला है. और दिन का आखिरी मैच दैट इज USA वर्सेस बोस्निया वर्सेस बोस्निया एंड हर्जेगोविना, जहां होस्ट नेशन USA अपने फैंस के सामने ऑफ कोर्स क्वार्टर फाइनल की तरफ एक और कदम बढ़ाने की कोशिश तो जरूर करेगा. सो ये रही पिछले 24 घंटे और आने वाले 24 घंटे के मैचेस के लाइनअप. सो आप ये अगली मैचेस में किसको रूट कर रहे हैं बताइए मुझे 5000196 पर. मीनवाइल आफरीन है आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कहाँ पे है?
1: थैंक यू सो मच, लेकिन मेरा बर्थडे नहीं है।
0: तो फिर कहाँ पे भाई तेरा बर्थडे?
1: मेरा भी 3 महीने बाद बर्थडे आना है।
0: तो 3 महीने बाद है तो तू बता अब रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया? यहाँ मैंने पूरे ग्रुप को जमा करके तुझे विश करना चाह रहे हैं, हम पागल खड़े हैं है? राकेश तेरे को पहले नहीं बताना चाहिए था ये?
1: भाई मैं राकेश नहीं हूँ, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, मैं राकेश नहीं हूँ।
0: तो सो के जाग रहा है, राकेश भी नहीं है, तेरा बर्थडे भी नहीं है, तू पहले नहीं बता सकता था, दांत फाड़ रहा है। अब तेरे को बोले परेशानी,
1: तमीज नहीं है बात करने
0: की? तमीज तेरे को तमीज होनी चाहिए यार। यहाँ पे हम 50 आदमी खड़े होकर तेरे को बर्थडे विश कर रहे हैं, तेरे को पहले बोल देना चाहिए क्यों कर रहे हैं, मैं राकेश नहीं हूँ। नवाब साहब पहले पूरा सुनेंगे हैप्पी बर्थडे, फिर मेरे से कहेंगे यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं मेरा बर्थडे नहीं है, ना मैं राकेश हूँ। तू है कौन यार?
1: तू एक बार बता, मेरा नाम ना राकेश है, ना मेरा बर्थडे है, तू मेरे को जबरदस्त उल्टा सीधा बोले यार।
0: उल्टा सीधा मैं तेरे को नहीं बोल रहा, तू एक बार बता, तेरे को पहले बताना नहीं चाहिए था कि तेरा बर्थडे नहीं है? तो तेरा बर्थडे देख क्यों नहीं आता, आज क्यों नहीं आया तेरा बर्थडे? बैक आ गया यार, केक तो खा ले।
1: हेलो,
2: हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: तूने दिमाग खराब कर रखा है मेरा, मेरी
0: मेरी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लो भाई। मैं तुम्हारे बर्थडे नहीं है, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम, मैंने तो ऐसे नंबर मिला दिया था। तुम्हारा बर्थडे नहीं मना रहे हैं, तुम्हारा मुर्गा मना रहे हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और तुम अपना नाम बताएंगे प्लीज अपना?
1: मैं समीर बोल रहा हूँ।
0: समीर, तुमसे ये मेरे साथ की जो टीम है ये कुछ कहना चाह रही है, जरा सुन लो एक सेकंड।
2: बोला कुकड़ू कुकड़ू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इस वेकेशन प्यार से हमारा
0: मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और तुम अपना नाम बताएंगे प्लीज अपना?
1: मैं समीर बोल रहा हूँ।
0: समीर, तुमसे ये मेरे साथ की जो टीम है ये कुछ कहना चाह रही है, जरा सुन लो एक सेकंड।
2: बोला कुकड़ू कुकड़ू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: आइए फ्री कैश वाउचर्स अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिवीजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे
1: तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
2: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
5: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

Mix. Mirchi. देखो जी मीट ब्रदर्स यो यो हनी सिंह सुखबीर की आवाज में ये गाना सुन लीजिए और तैनू मैं एक गर्ल सुनाने जा रही हूँ बस इस गाने के बाद वो लोग जो कतर में ही अपनी वेकेशन स्पेंड करने वाले हैं सी गॉट अ स्टे ट्यून्ड विद मी दैट इज आफ्रीन ऑन मिर्ची इट्स ऑल

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लग

0: Mirchi Mornings, brought to you by KIMS Health Medical Center.
1: देखो, आप अगर वेकेशंस पर कतर से कहीं नहीं जा रहे हो तो डोंट यू वरी, आपको बिल्कुल भी कोई फोमो नहीं होगा क्योंकि कतर में है ही इतनी सारी चीजें करने के लिए. देखो बॉस, ये कतर है, सबका ख्याल रखता है ना. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. और देखिए, विजिट कतर लेकर आ गया है हाला समर 2026, जो 1st of July से लेकर 30th of September तक पूरे कतर को एक जायंट फैमिली प्लेग्राउंड में बदलने वाला है. यस, अब भले ही वो मॉल ऑफ कतर हो, दोहा फेस्टिवल सिटी, प्लेस वेंडम, विलाजियो, सिटी सेंटर, लैंडमार्क, दोहा मॉल, हयात प्लाजा, अल हजम, गिवान आइलैंड, वेस्ट वॉक, यू नेम इट, हर जगह आपको मिलने वाले हैं फ्री फैमिली शोज, लाइव एंटरटेनमेंट, मैस्कॉट मीट एंड ग्रीट्स, फन चैलेंजेस, पजल गेम्स एंड क्या नहीं भाई. देखिए, इतना ही नहीं, इनफैक्ट अगस्त में तो शुरू होने वाला है हाला समर शॉपिंग फेस्टिवल. अगर आप पार्टिसिपेटिंग डेस्टिनेशंस पर 200 कतरी रियाल से ज्यादा स्पेंड करते हैं ना, तो रिसीट कैंपेन, जो रिसीट मिलता है उस कैंपेन बूथ पर आप रिडीम कीजिए और रैफल एंट्री पाइए. आपके पास मौका होगा एक ब्रांड न्यू कार और बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस. देखिए, मुझे तो लगता है ना कि इस बार समर सिर्फ एसी के अंदर बैठने का सीजन नहीं है बॉस. बाहर निकलो हमारे कतर में और मॉल में जाइए. मॉल के एसी के पूरे कंफर्ट में आपको पूरी तरह से एंटरटेनमेंट मिलने वाला है और वो भी एब्सोल्युटली फ्री फ्री फ्री. माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ राइट ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल, सीधा, नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5, 10, 15, 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईपी, स्मॉलर फीस, बिगर स्माइल्स. TNC apply.

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान, खान, खान,
0: खान। मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुस्सेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: व्हाट अ सॉन्ग यार, के कितना जादू चलाते थे, वी रियली मिस यू। साथ में सुनिधि चौहान की आवाज में अक्सर मूवी का ये गाना, एंड यू नो ये किसका गाना है। देखो, बहुत सच्चे मिलेनियल हो नहीं सकते हो अगर आपको इमरान हाशमी के मूवी के गाने नहीं पता है। अच्छा ठीक है, मानती हूँ कि एज अ मिलेनियल हमें हर एक इमरान हाशमी की मूवी देखने का मौका ना मिला हो, लेकिन हमने गाने सारे सुने हैं, राइट। ये गाना हो या फिर एनी ऑफ हिज मूवी, आप कोई भी मूवी उठा के उनका कोई भी गाना देख ले, इट इज सो ब्यूटीफुल एंड सो सुपर डुपर हिट। एंड टॉकिंग अबाउट इमरान हाशमी, आज मेरे गेम में लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट में मैं इमरान हाशमी का ही एक डायलॉग लेकर आई हूँ। एक्चुअली मैं पहले ही बता रही हूँ, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, वी ऑल नो यार, अखा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ। सो प्लेइंग द नेक्स्ट डायलॉग हियर, एंड यू हैव टू टेल मी कि ये हाशमी के कौन सी मूवी का डायलॉग है, यू गॉट टू टेल मी। चलिए रेडियो सच की वॉल्यूम करो हाय और ध्यान से सुनो।
0: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट।
2: बस कुछ देर और मुझे जिंदा रख, थोड़ी सी जिंदगी और दे दे। बहुत गुनाह किया है मैंने, सवा पाने का बस एक ही मौका है ये।
1: What a movie. मतलब इट्स इमरान हाशमी ना, इंटेंसिटी तो भरपूर होनी चाहिए, आप भले ही वो एक्शन में हो प्यार में हो, इट्स जस्ट इमरान। वेल, बहुत सारे मैसेजेस ऑलरेडी आ गए हैं। इफ यू नो द आंसर, इट्स 5000186 इज माई व्हाट्सएप नंबर। यहाँ पर आइए, मैसेज कीजिए, वॉइस मैसेज भेजिए, जो आपका मन करे, लेकिन अपना नाम जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। क्वाइट सम मैसेजेस हियर, समीर अब्दुल रजाक, और ये मर्डर मूवी नहीं है इतना बता दूं, जिसने भी लिखा है, ठीक है ना। अरिजीत सिंह और रूपाली मोगे की आवाज में अगला गाना, और
3: जब चलते चलते
1: ये डायलॉग आपके सर में अटक गया है ना, तो आंसर दो ना बॉस ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: गोविंदा, आपका अल्टीमेट फिटनेस टिप कौन सा है?
2: मुझे ऐसा लगता है योग और प्राणायाम जो है, इससे आपकी बॉडी जो है बहुत ही करेक्ट रहती है और आपको मतलब वो घबराहट नहीं होती है।
1: तो ये एडवाइस आप देंगे कंटेम्प्रेरी हीरोज को?
2: योग प्राणायाम तो करते ही होंगे वो लोग, मुझे ऐसा लगता है।
1: आपको क्या लगता है कौन कौन करता होगा? मैं आपको तीन नाम देती हूँ, इन तीनों में से बताइए। वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जॉन अब्राहम।
2: ये तीनों एक्टर्स ऐसे हैं लोगों की मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी ज्यादा अच्छी है और पता नहीं कितने पैक निकले हुए हैं। उस जमाने में तो पूरी शाम में सब लोग हीरो लोग पैक ही लगाया करते थे, अब वो पैक उनके पेट पे आ गए। टेढ़ा मेढ़ा क्या नजर आ रहा है, ये पेट है इनका? ओहो, अच्छा अच्छा, फाइन फाइन फाइन, वेरी गुड वेरी गुड।
1: फिटनेस का पता नहीं लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर पर 110 फॉर चीची। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
4: आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस।
5: पर दीदी, आर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
7: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।
8: सच ही

0: वेल, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग दैट वाज. जब सोनोडी गम की आवाज रहती है ना, हर गाना मेरे ख्याल से खूबसूरत हो जाता है. और वो आवाज में और चार चांद डालने के लिए श्रेया घोषाल थी ना. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सिंपली आफरीन का साथ है राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. और देखिए भाई, आज तो मैं बिल्कुल नॉस्टैल्जिक होके इमरान हाशमी को लेकर आ गई शो पर. मतलब उनकी आवाज लेकर आई यहाँ पर मेरे गेम में, लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट पर. ठीक है ना. सो चलिए पहले सीन सुन लेते हैं, उसके बाद में बात करते हैं इमरान हाशमी के बारे में.
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट.
2: बस कुछ देर और मुझे जिंदा रख, थोड़ी सी जिंदगी और दे दे. बहुत गुनाह किया मैंने, सवा पाने का बस एक ही मौका ही है.
0: Well, इमरान हाशमी भी इमरान हाशमी, सो टेंस. और यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, जैसे मोहम्मद यूसुफ खान ने बिल्कुल सही मैसेज किया है. देन आई हैव योर आवारापन इज द मूवी नेम, लेकिन नाम यहाँ पर इन्होंने लिखा नहीं है. चले ठीक. और चार्ली का मैसेज आया, गैंगस्टर नहीं है चार्ली. यहाँ पर महमूद शरीफ का मैसेज है. देन आई हैव योर सद्दाम का मैसेज और समीर का मैसेज, अब्दुल रज़ाक का मैसेज, एंड यस सो मेनी मोर पीपल. लेकिन जिन्होंने वॉइस मैसेज भेजा है ना भाई, आप ना अगली बार से मेरी आवाज को लो कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि मुझे तो मेरी आवाज ही सुनाई देती है, आपकी आवाज नहीं सुनाई देती है. तो कोई नहीं, चलिए फिर इमरान हाशमी का ये गाना आवारा वन से. लेकिन टॉकिंग अबाउट आवारा टू, इट इज अ डायरेक्ट सीक्वल टू द 2007 कल्ट क्लासिक एक्शन रोमांस आवारापन. अब ये आवारापन टू यही साल आने वाली है. एंड आई होप आ गई क्या, आने वाली है. रिलीज डेट क्या है, क्योंकि मैं आई एम नॉट कीपिंग अ ट्रैक. येस, दिस इज गोना कम ऑन 14th of August. बस तो ऑल द इमरान हाशमी फैंस, आई नो यू आर वेटिंग फॉर आवारा पन टू. सो बस आएगी, बस एक ही महीने में आई जाएगी, तब देखते हैं. एंड आई एम श्योर इसमें भी कोई ना कोई गाना बहुत जबरदस्त होगा. जैसे ये मूवी में ये वाला गाना मुझे बहुत पसंद है, सुजैन डी मलुक की आवाज में आवारा पन में से ये गाना ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: मर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय अंजलि, मर्ची हेल्पलाइन बोल।
0: यू नो आई लव्ड विनिंग, पर मेरा बीएफ मैचिंग कपड़े कभी नहीं पहनता, वो हर बार ना बोल देता है, क्या करूं?
1: हाय, तो गलत थोड़ी बोल रहा है, लड़के स्कर्ट में थोड़ी अच्छे लगते हैं अंजलि।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

0: लड़के की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना रिक्वेस्ट किया गया था अमित की तरफ से. सो आई होप यू रियली एंजॉय दिस सॉन्ग. मैं हूँ आफरीन आपके साथ और मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 8:04 की तरफ. अब हो गए 5 भी. बने रहेगा हमारे साथ. कमिंग अप नेक्स्ट माई फेवरेट सॉन्ग संजू राठौड़ की आवाज में ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
1: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical center.

well, संजू राठौर की आवाज में ये गाना मुझे इतना पसंद आता है. इट रिमाइंड्स मी ऑफ मुंबई, इट रिमाइंड्स मी ऑफ महाराष्ट्र, क्योंकि मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ. और अगर आप भी मुंबई से बिलोंग करते हो देन यू विल अग्री दैट ये गाने की जो म्यूजिक है ना, ये कोई सॉन्ग्स होते थे ना, कोड़ी क्या होता है, कोली क्या होता है ना, कोली मैं बताती हूँ. कोली एक समाज होता है इन मुंबई महाराष्ट्र कहीं पर भी, जहाँ फिशरमैन कॉलोनीज होती है ना, तो कोली कहते हैं उन्हें, कोलीज कहते हैं, इफ आई एम राइट. अगर कोई है ऐसे यहाँ पर और मुझे सुन रहा है देन टेल मी यस यू आर राइट आफरीन, और इफ यू आर रॉन्ग, है ना. आए रे आए रे खुशी खुशी खुशी, बच्चों के यार चेहरे पर खुशी तो आएगी जब छुट्टियां शुरू हो गई है. सुबह सुबह नहीं उठना है जल्दी, अब तो बस 2 महीने का आराम है और उस पर कतर ऐसे ऑप्शंस लेकर आएगा बच्चों के लिए तो फिर जबरदस्त है ना. जैसे कतर टॉय फेस्टिवल 2026 एक्टिवेशन, ये तो आज से शुरू ही हो गया है. और मजे की बात ये है कि ये बहुत सारी जगहों पर है. कतर टॉय फेस्टिवल जो है ये एक्रॉस मॉल्स इन कतर, जहाँ पर बच्चे खेल सकते हैं. और देखिए बेस्ट पार्ट ये है ना कि फ्री एंट्री है, कुछ चीज़ों के लिए कुछ तो पैसे कहीं ना कहीं लगेंगे, दैट्स ओके. बट जैसे आप मॉल ऑफ कतर जाओगे तो वहाँ पर एवेंजर्स जो है वो सुपर हीरोज उसका सेटअप है. अगर बच्चों को आप प्लेस वेंडम लेकर जाते हो तो वहाँ पर पिक्सार स्टूडियोज के जैसे टॉय स्टोरी हो गया, इनसाइड आउट हो गया, ये सारी वहाँ पर सेटअप है. अपार्ट फ्रॉम दैट, बारबी के शौकीन है लड़कियाँ तो फिर सिटी सेंटर ले जाओ ना, वहाँ पर बहुत सारे बारबी के एक्टिवेशंस चल रहे हैं. ऐसे ही कतर के अलग अलग मॉल्स में देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑल थीम बेस्ड एक्टिवेशंस गोइंग ऑन फॉर द किड्स आउट देयर. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर भाई, अब बच्चों को एंटरटेन करने का जिम्मा आपका है, टीचर्स को मिलती है 2 महीने की आराम. चलिए अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं. और यहाँ पर जैसे मैंने मैसेज किया था कि अबाउट अ सॉन्ग जो संजू राठौर की आवाज़ में था, फिर मुंबई के कोली समाज के बारे में मैं बोल रही थी, और यहाँ मुझे फटाफट से मैसेज आ गया. यहाँ राज मोहम्मद का मैसेज है, देन समवन अपना नाम तो नहीं लिखा है लेकिन ये सही कहा है कि येस यू आर राइट आफरीन, इट इज़ आगरी कोली समाज. येस यू आर राइट, इन फैक्ट मुझे अब याद आया. शाश्वत सचदेव मधुमती बागची की आवाज में ये अगला गाना फ्रॉम द मूवी धुरंधर. माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा, इट्स हॉट.

0: तेरी जेब कटी थी कुछ दिन पहले, तेरा वॉलेट गायब हुआ है यहाँ से।
1: हाँ कटी, कौन बोल रहा है?
0: मैंने काटी है तेरी जेब, 17.5 रुपए लेके घूम रहा है तू पर्स से मेरी मेहनत की, तूने ऐसी
1: तूने जेब काटी
0: नंबर मुझे इसमें पड़ा मिला, तू तू रखता क्यों नहीं इसमें पैसे?
1: मेरे पैन कार्ड और कुछ क्रेडिट कार्ड होंगे भाई।
0: हाँ तो मैं क्या करूँ उसका,
1: जरा वापस दे दो यार।
0: पैन कार्ड दे दूँ मैं, तेरा क्रेडिट कार्ड दे दूँ, और जो मेरी मैंने तो पानी फिरा 17.5 रुपए, शर्म नहीं आती पर्स में? नहीं ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरी मेहनत का क्या होगा, मेरी मेहनत का क्या होगा, वो कौन देखेगा आके?
1: 17.5 रुपए
0: कितने पैसे चाहिए? 2000 रुपए से कम आज तक जेब नहीं काटी मैंने।
1: कर देना, तो कर दूंगा।
0: एक चीज कर दो मेरे लिए, मैं सारा पैसा तुम्हारा वापस कर दूंगा। करो मेरे साथ।
1: क्या करूं बताओ?
0: मेरे साथ बोलो कुकड़ो कु।
1: सॉरी
0: भाई साहब, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका पर्स किसी ने मारा था, मैंने नहीं मारा। और आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया यार, मुझे बड़ा तरस आया आप। अब मेरे साथ जरा प्यार से बोल दीजिए आप कुकड़ो कु।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
3: अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न।
4: अरे यार, हॉलीडे सीजन इज हियर, और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्डन समर के साथ आइए, फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस, प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर्स मोर। With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
5: Ja Simran, ja jee le apni zindagi. Ja beta, ja.
6: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
7: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
8: हिट गाने
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: स्टोरीज बस 24 घंटे ही रहेंगी।
1: अरे चाटा क्यों मारा?
2: चला पैसे निकाल।
1: किस बात के पैसे?
2: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
3: क्या बोला तूने?
1: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
4: क्या जोक मारा भाई?
1: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
2: कौन सा?
1: चाटा लगा
2: लगा
5: मिर्ची। It's hot.

What a song यार, उड़ता पंजाब से ये गाना कनिका कपूर और बाबू हाबी की आवाज में, and I love the music of this song. Right here on Richie Mornings, आपने सुना? और एक तारीख है आज, 1st of July. यार मतलब ऑफ कोर्स किसी की सैलरी कल परसों में ही आ गई थी, किसी की सैलरी आज आई है, तो बस सैलरी का सही इस्तेमाल तो एक्सचेंज रेट से ही होता है ना. यस, आज की एक्सचेंज रेट जो है आईपे की, ये कहते हैं दैट एक अच्छी रियाल के बदले मिल रहे हैं आपको इंडियन रुपीस, दैट इज 26.93. वहीं जनाब पाकिस्तानी रुपीस इज एट 76.78. अगर बात करें बांग्लादेशी टाका की तो 33.97 पर है. श्रीलंकन रुपीस आपको एक अच्छी रियाल के बदले मिल रहे हैं 92.15, और नेपाली रुपीस आपको एक अच्छी रियाल के बदले मिल रहे हैं 41.49. ये थे आज के एक्सचेंज रेट. घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां, खुशियों का नंबर वन फॉर्म One and only 89.6 Mirchi One, Mike Sidil Tak Afreen ke saath, it's hot.

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply. कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है, क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
1: तो इंतजार खत्म, RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
0: अभी कॉल करें 3100813।
2: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
3: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
4: बहुत कुछ होगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
6: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: वेल केके की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना डोमिनिक सिरोकजो का साथ, राइटर ऑन मिर्ची, मैं हूँ आफरीन आपके साथ। एंड इट्स टाइम के आप और मैं यहाँ पर मिलकर खेलें वो गेम जिसे मैं कहती हूँ सेलिब्रिटी पहचानो। नहीं, कुछ अच्छा नाम सोच कर लाती हूँ मैं इसके लिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर मैं एक सेलिब्रिटी की आवाज़ यहाँ पर आपको सुनाने वाली हूँ। आपको गेस करना है कि आखिर ये कौन से सेलिब्रिटी की आवाज़ है। सो रेडियो सच के वॉल्यूम करो हाय और ध्यान से ये सुनो, और कोई गेम के लिए मेरे ये नाम हो ना तो मुझे वो भी जरूर बताना।
2: उम्र में और एक्सपीरियंस में बहुत फर्क होता है। जस्ट बिकॉज यू ओल्ड डजंट मीन यू आर एक्सपीरियंस्ड। यू नो, हम अक्सर उसमें गलती करते हैं, अच्छा ये आदमी ये 50 साल के, इसको ज्यादा नहीं, 50 साल का इडियट है वो, 50 साल से कुछ नहीं किया इसकी लाइफ, उसको क्या पता है। आपने जो 10 साल की उम्र में अचीव किया है, 20 साल की उम्र में अचीव किया, इस आदमी ने 70 साल की उम्र में अचीव नहीं किया, तो वो समझदार कैसे हो गया आपके सामने जस्ट बिकॉज ही इज ओल्ड? नो, you old, you give him respect, pair chose, ke pas isse zyada kuch
1: nahi. All right, bahut hi jaani pehchani si awaaz hai, aur aisa ho hi nahi sakta na ki ye awaaz koi na pehchane. 5001H96 mera whatsapp number hai, fatafat se aaiye yahan message kijiye aur वॉइस मैसेज भी भेज सकते हो वैसे, और जब भी भेजोगे ना भाई मुझे मेरी आवाज जो है वो नहीं सुननी, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज सुननी है, तो रेडियो सिट की वॉल्यूम कम करके अपना वॉइस मैसेज जरूर भेजना, ठीक है ना। 5001H96 इज माय व्हाट्सएप नंबर, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। मीनवाइल अरिजीत सिंह की आवाज में अगला गाना एंजॉय करते हैं ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: मिलिन सोमन, आपकी इतनी फिट बॉडी है, क्या आपने कभी इस बॉडी का फायदा उठाया है? आ जा, दिखाता हूँ तुझे, झगड़ा करेगा मेरे साथ।
3: कभी झगड़ा नहीं किया, और टफ फिजिक का मतलब ये नहीं कि झगड़ा करके उसको जस्टिफाई करो। गुड फॉर शो व्हिच इज गुड फॉर माय प्रोफेशन एंड आई वर्क अ लॉट, आई वर्क वेरी हार्ड, सो आई नीड दैट फिटनेस लेवल
2: एंड आई नीड योर मोटिवेशन लेवल। मिलिन सोमन, आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: A ring for the newly married, cute little bangle for the newborn. अरे यार, holiday season is here, और फिर वही gifting का tension. फिर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, गोल्ड एंड समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस, प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
5: Hello, Sharps. Our product is phenomenal. One of a kind, but still profit nahi ho raha hai. Maine Baba Ji se advice li to kehte hain.
6: Office ke toilet mein toilet paper white nahi, yellow lagao. Profit aayega.
5: Relative se advice slow to kehte hain.
7: Kaam ko time do. 25 ghante kaam karo. Dark circles honge to future bright hoga.
5: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
8: भाई क्या कर रहा है तू? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहाँ तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
9: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now 7070-7687.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: मधुबनी बागची की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मैं हूँ आफरीन आपके साथ। और देखिए भाई, यहाँ पर सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा था। और यहाँ इतने सारे आज वॉइस मैसेजेस आए हैं, क्या बात है। ये तो क्लियरली दिख रहा है कि ये जिसके बारे में मैंने आज बातें की है या फिर जिनकी आवाज़ सुनाई है ना, दिस पर्सन हैज़ एब्सोल्युटली नो हेटर्स, है ना। मतलब सभी इनको पसंद करते हैं, इनकी एक्टिंग पसंद करते हैं और इनकी कॉमिक टाइमिंग की क्या ही बात बताऊँ मैं। वेल, जो लोग अभी जुड़े हैं उन्हें तो सही आवाज़ सुना ले। तो चलिए सुनते हैं आज के आवाज़ ऑफ दिस पर्सन।
2: उम्र में और एक्सपीरियंस में बहुत फर्क होता है। जस्ट बिकॉज यू ओल्ड डजंट मीन यूर एक्सपीरियंस्ड। यू नो, हम अक्सर उसमें गलती करते हैं कि अच्छा ये आदमी ये 50 साल के, इसको ज्यादा नहीं, 50 साल का इडियट है वो, 50 साल से कुछ नहीं किया लाइफ, उसको क्या पता है। आपने जो 10 साल की उम्र में अचीव किया है, 20 साल की उम्र में अचीव किया, इस आदमी ने 70 साल की उम्र में अचीव नहीं किया, तो वो समझदार कैसे हो गया आपके सामने जस्ट बिकॉज ही इज ओल्ड? नो, यू ओल्ड यू गिव हिम रिस्पेक्ट, पैर छो उसके, पास इससे ज्यादा कुछ नहीं।
1: राइट, ये एक की ही आवाज हो सकती है यार, सच अ फैमिलियर वॉइस इट इज। कौन सी है, किसकी है, लेट्स हियर इट फ्रॉम आवर लिसनर्स। हेलो,
3: द नेम ऑफ दिस सेलिब्रिटी इज अरशद वारसी।
1: ऑलराइट,
3: ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ कोरियोग्राफर,
1: दैट्स राइट।
4: हेलो,
1: हां जी,
4: जी शोएब, दिस वन अरशद वारसी,
1: बिल्कुल सही। हां जी,
4: गुड मॉर्निंग।
1: हां, ये गुड मॉर्निंग
4: अरशद वारसी का है।
1: राज शमानी, अब पॉडकास्टर्स की बात करें तो राज शमानी नंबर वन पर ही आते हैं। और वैसे ही अरशद वारसी जिसने भी यहाँ पर लिखा है, जॉनसन ने लिखा है, चीनो ने लिखा है, देन आई हैव विवेक मैसेजिंग मी, देन हु इज दिस अशरफ मैसेजिंग मी, ताहिर का मैसेज है, और जिन्होंने नाम नहीं लिखा ना उनका तो मैं बता ही नहीं सकती हूँ ना, मोहम्मद यूसुफ खान है और ऐसे बहुत सारे हैं। सो यस, अरशद वारसी इज द राइट आंसर। और अरशद वारसी की ही आवाज में ये मैं आपको गाना सुना रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि अरशद वारसी ने कौन सा गाना गाया है। सो याद आया, समझो, वही तो है।
5: ए भाई, भाई बहुत खुश लग रहा है भाई, बात क्या है। ए भाई, हुआ क्या? ए भाई, हुआ क्या? ए भाई, बोलना यार, हुआ क्या?
6: काट चप्पल
5: है।

0: भाई रिवर्स में क्या कोई स्टोरी सुना रहा है, स्टार्टिंग से सुना ना। भाभी को घुमाने के लिए किधर ले गया?
1: अरे किधर मत पूछ, ये पूछ किस में ले गया, किस में?
0: किस में भाई?
1: अरे किसिंग कार में यार।
0: ए भाई साइड कार सुना, कलाकार सुना, बेकार सुना, डकार भी सुना, किसिंग कार क्या होता है?
1: अरे जिसमें किस करते हैं यार।

0: हाँ ड्राइवर ने मिरर में देखा नहीं ना, कैसा मैनेज किया?
1: अरे ड्राइवर को मैंने 100 का नोट दिखाया, उसको सुसु करने का आइडिया तब आया।
0: अरे भाई तू तो जीनियस है, फिर क्या हुआ?
1: कभी चूमती इधर कभी चूमती उधर, अरे बोले मेरा मुन्ना इतने साल थे कि थर।
0: ऐसा हो गया भाई?

0: भाई शेर को मामू बोल डाला, फिर क्या हुआ?
1: डर से उसने ऐसे मुझको गले लगाया, क्या बताऊं सर के अरे कितना मजा आया।
0: ऐसा हो गया भाई।

0: देखो फुटबॉल वर्ल्ड कप ने एक चीज तो बिल्कुल कंफर्म कर दी है, दैट एवरी नाइट कुड बी अ सरप्राइज. जैसे कोई जायंट टीम भी गिर सकती है, जैसे जर्मनी या नेदरलैंड्स. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, राइट अराउंड मिर्ची मॉर्निंग्स. और देखिए कल के राउंड ऑफ 32 में नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली. ये मैच मैंने कल देखी थी एंड आई शुड से आइवरी कोस्ट ने बहुत ही जबरदस्त फाइट दी है. मतलब नॉर्वे का जो सेकेंड गोल था वो बिल्कुल आखिरी मिनटों में था एंड आई वॉज रियली रूटिंग. मतलब जब भी कोई स्ट्रॉन्ग टीम खेलती है ना ऐसे अंडरडॉग्स के साथ में, आई रियली रूट फॉर दिस अंडरडॉग्स कि भाई ऐसा कुछ हो जाए कमाल कि ये जीत जाए. आएगा ये, एक दिन भी आएगा. वैसे चलिए बात करते हैं उसके बाद की मैच के बारे में, दैट इज फ्रांस एंड स्वीडन के बीच जो 3-0 से कंफर्टेबली बीट कर दिया. और एम्बापे ने तो 2 गोल्स के साथ अपनी रेड हॉट फॉर्म कंटिन्यू रखी है. रात के आखिरी मुकाबले की अगर बात करें तो मेक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया. मतलब अभी अभी की मैच है ये, जस्ट नाउ इफ यू कैन से दैट. और होम ग्राउंड के सामने ही मेक्सिको ने राउंड ऑफ 16 का टिकट पाकर जीत हासिल कर लिया. वेल उसके बाद आगे आने वाली मैचेस की अगर हम बात करें तो 3 जबरदस्त नॉकआउट क्लैशेस आपको देखने मिलने वाले हैं. दैट इज इंग्लैंड वर्सेस डीआर कांगो, जहां इंग्लैंड फेवरेट जरूर है लेकिन डीआर कांगो पहले ही एक अपसेट कर चुका है. फिर बेल्जियम के सामना जो है वो सेनेगल से होने वाला है. और दिन का आखिरी मैच दैट इज यूएसए वर्सेज बोस्निया वर्सेज बोस्निया एंड हर्जेगोविना, जहां होस्ट नेशन यूएसए अपने फैंस के सामने ऑफ कोर्स क्वार्टर फाइनल की तरफ एक और कदम बढ़ाने की कोशिश तो जरूर करेगा. सो ये रही पिछले 24 घंटे और आने वाले 24 घंटे के मैचेस के लाइनअप. सो आप ये अगली मैचेस में किसको रूट कर रहे हैं बताइए मुझे 5000196 पर. मीनवाइल आफरीन है आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर.

0: Mirci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virba la burga. Mirci, burga.
2: हेलो
3: मिल गया
4: मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद आया है आपका?
2: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
4: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर, जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज़ सुने हैं हम, और बहुत अच्छा लगा है आवाज़ सुन के। आप जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
2: क्या तुझे पागल लगता
4: नहीं
2: है?
4: मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
2: क्या कहना है?
4: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना रिक्शा वाले
2: मेरी
3: बात है। चारू फोन मत रखना। चलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा
2: मैंने सोचा
3: यार रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स अपने
3: यार मैं तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशर

0: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
1: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
2: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के? कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची 1 इट्स हॉट।
3: मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 9:15 पर और वक्त हो चला है कि चलिए मधुबंती बागची के साथ में जावेद अली का कॉम्बिनेशन, ये कैसा हो सकता है? हो सकता है ये वाले गाने में पुष्पा टू का ये गाना राइट ऑन मिर्ची। मिलती हूँ उसके बिल्कुल गाने के उस पार एक बच्चों के लिए बड़ी मजेदार खबर लेकर। माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा। इट्स हॉट
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

देखो बचपन में अगर मम्मी को कहते थे ना बोर हो रहा है मम्मी, तो मम्मी यही कहती थी जाओ नीचे जाकर दोस्तों के साथ खेलो। और आज के बच्चे वाह रे वाह, बोर हो रहा है बस कहने का इन्हें मौका ही कहाँ मिलता है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स एंड टॉकिंग अबाउट हमारे बच्चे कतर के जो फिलहाल छुट्टियां मना रहे हैं। बस इनकी जस्ट छुट्टियां शुरू ही गई है और उसी चलते कतर का सबसे बड़ा टॉय फेस्टिवल इज बैक दिस समर।

वेल, मैं बता दूं, ये 1st of July से लेकर 31st of July तक रहने वाला है दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में, दैट इज DECC. संडे टू वेडनेसडे इसकी जो टाइमिंग है दोपहर 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक है. और अगर वीकेंड की टाइमिंग्स में बताऊं जो है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, वो है दोपहर के 2 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक. और टिकट्स बिल्कुल 50 कतरी रियाल. अगर देखा चाहे तो यार, हम बच्चों को कितनी ही बार ये समर वेकेशंस में हम मॉल्स लेकर जाते हैं, प्ले जोन्स लेकर जाते हैं, और 50 क्या, वहां पर तो 200-250 ऐसे यूं खर्च होते हैं. आप सोचिए, सिर्फ 50 कतरी रियाल इनकी एंट्री टिकट है, और वीकेंड पे चलिए 70 है, लेकिन उसमें ये कितनी सारी चीजें कर सकते हैं. वहां पर इतने सारे ब्रांड्स हैं टॉयज के, लाइव स्टेज शोज है, कैरेक्टर्स मीट एंड ग्रीट है, इंटरैक्टिव एक्सपीरियंसेस है, शॉपिंग है, कॉम्पिटिशन है, और बहुत सारे थीम जोन. सो मेरे ख्याल से ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है. मेरा दिल तो हमेशा से बच्चा है, और ऐसी जगह पर ना मैं अपने आप को भूल जाती हूँ, छोटी वाली आपशीन बन जाती हूँ. बने रहिएगा मेरे साथ माइक से दिल तक ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसको एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: लगा
6: मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings, brought to you by KIMS Health Medical Center.
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
2: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है,
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: अक्सर ऐसा होता है ना कि दिल वही ले आता है हमें उन यादों के पास जो इतने स्ट्रॉन्गली हमारे साथ में जुड़े हैं। वैसे तो हर कहानी का दी एंड होता है, लेकिन हर एक एहसास इमोशन का नहीं होता है। कुछ यादें बनकर कभी अलविदा कहती ही नहीं है, और बस इसी खूबसूरत ख्याल पर आज की मेरी शायरी है।
1: आफरीन की डायरी से शायरी।
0: तो अर्ज किया है, वक्त चाहे कितना आगे निकल जाए, कुछ किस्से वहीं ठहर जाते हैं। वक्त चाहे कितना आगे निकल जाए, कुछ किस्से वहीं ठहर जाते हैं। जिन यादों से हम आजाद नहीं हो पाते, वो सीधा रूह में उतर जाते हैं। अब इस शोर भरी दुनिया में, इन खामोशियों में मेरा ठिकाना है। जो किस्सा अधूरा छूट गया, जो किस्सा अधूरा छूट गया, वही मेरा सबसे हसीन फसाना है। बस इस खूबसूरत शायरी के बाद में लकी मिल की आवाज में ये गाना तो बनता है, माइक से दिल तक आफरीन के साथ ऑन मिर्ची।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: आमिर खान इतनी सारी फिल्में और हर फिल्म में एक अलग फिजिक. What is the ultimate fitness tip?
2: I know everyone says this, but I can't stress how important it is to be regular in your workout. And along with that, for the best results, you need to have a very balanced and healthy diet. आमतौर पे लोग high protein diet करते हैं. You know, that's not healthy. The body needs proteins, but also needs carbohydrates. It needs fat. It needs everything. So we must have a balanced diet and a healthy diet and rest. You have to sleep well. You have to rest well.
1: Sleep well. Oh, फिर तो फिट होना मुश्किल है आमिर खान. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
4: 89.6, 89.6.
5: नहीं, बसंती, इन कुत्तों के सामने मत
6: नाचना. अरे, पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
7: कैसे रुक सकता है?
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM, मिर्ची वन. इट्स हॉट.

याग्निक की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना, व्हाट अ मूवी टाइटल ट्रैक ऑफ द सॉन्ग, ये प्यार तूने क्या किया। और सच क्या हो तो यार, ये वक्त तूने ये क्या कर दिया भाई, इतना जल्दी कैसे गुजर जाता है। तो हाँ जी, वक्त की रफ्तार से तो हम सारे वाकिफ है कि साल यूँ शुरू होता है, यूँ ख़त्म होता है, महीना यूँ शुरू होता है, ख़त्म होता है। अब देखो 1st of July के हम आज खड़े हैं यहाँ पर, बातें कर रहे हैं और गर्मी को फेस करने के लिए तैयार है, और ये सोच रहे कि भाई दो महीना अब कैसे गुजरेगा, भाई क्या करेंगे हम। लेकिन लेट मी टेल यू, ये जो वक्त की रफ्तार गर्मी में ना, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा जल्दी गुजर जाती है। उन लोगों के लिए भी जो वैकेशन पर गए हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि भाई अब तो आए थे, अब कहाँ ये 10-15 दिन, एक महीना यूँ फटाफट से निकल गए। और उन लोगों के लिए जो यहाँ पर है भाई, ये भी बहुत जल्दी वक्त गुजर जाएगा। बच्चों के साथ में है तो बच्चे आपको बिजी रखने वाले हैं, आपको बिजी रहने की मतलब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड टू कीप योर किड्स बिजी, बहुत सारी इवेंट्स चल रहे हैं। पहले तो भाई टॉय फेस्टिवल लेकर जाओ, DECC में है, दैट इज वन अमेजिंग थिंग टू टेक किड्स टू, लाइक मतलब यार इतने सारे ब्रांड्स एक साथ, मतलब एक चीज होती है जहां हम बच्चों को एक टॉय खरीद के देते हैं, एक महंगे से महंगा टॉय खरीद के देते हैं, और फिर वो बच्चे का इंटरेस्ट उस टॉय में 2 से 4 दिन, वो भी ज़्यादा ही बता दिया ना मैंने, उसके बाद में इनका इंटरेस्ट चला जाता है। इससे अच्छा ये सारे खरीदो मत, लेकर जाओ जब भी याद करे, 50 रियाल्स खाली टिकट है, लेकर जाओ खेलने के लिए वहाँ पर, जितना चाहिए खेलो, जितनी मर्जी जितने घंटे चाहिए खेलो, ये भी सही रहा है ना। चले फिर, फिलहाल के लिए तो मैं लेती हूँ अलविदा, टाटा बाय बाय, सायोनारा, माइक से दिल तक आफरीन है, अच्छा चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। मैं भी कह रही हूँ, अरिजीत सिंह भी यही कह रहे हैं।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: सर मैंने IIM में जाने के लिए बहुत ट्राई किया, 2 साल कोचिंग भी करी, फिर भी नहीं हो पा रहा, क्या करूं?
1: अरे तू ये सब मत कर, तू गेट नंबर 2 से जा, वो खुला ही होता है और मैं वहीं से जाता हूँ।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

0: हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, कहाँ पे है?
1: थैंक यू सो मच, लेकिन मेरा बर्थडे नहीं है।
0: तो फिर कहाँ पे भाई तेरा बर्थडे?
1: मेरा भी 3 महीने बाद बर्थडे आना है।
0: तो 3 महीने बाद है तो तू बता अब रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया? यहाँ मैंने पूरे ग्रुप को जमा करके तुझे विश करना चाह रहे हैं, हम पागल खड़े हैं? हैं राकेश, तेरे को पहले नहीं बताना चाहिए था ये?
1: भाई मैं राकेश नहीं हूँ, मैं तेरे से बोल रहा हूँ मैं राकेश नहीं हूँ।
0: तो सो के जाग रहा है, राकेश भी नहीं है, तेरा बर्थडे भी नहीं है, तू पहले नहीं बता सकता था? दांत फाड़ रहा है अब तेरे को बोलने परेशानी?
1: तमीज नहीं है बात करने?
0: तमीज तेरे को तमीज होनी चाहिए यार। यहाँ पे हम 50 आदमी खड़े हो गए, तेरे को बर्थडे विश कर रहे हैं, तेरे को पहले बोल देने चाहिए क्यों कर रहे हैं? मैं राकेश नहीं हूँ। नवाब साहब पहले पूरा सुनेंगे हैप्पी बर्थडे, फिर मेरे से कहेंगे यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं मेरा बर्थडे नहीं है, ना मैं राकेश हूँ। तू है कौन यार?
1: तू एक बार बता, मेरा नाम ना राकेश है ना मेरा बर्थडे है, तू मेरे को जबरदस्त उल्टा सीधा बोले यार।
0: उल्टा सीधा मैं तेरे को नहीं बोल रहा, तू एक बार बता, तेरे को पहले बताना नहीं चाहिए था कि तेरा बर्थडे नहीं है? तो तेरा बर्थडे देख क्यों नहीं आता, आज क्यों नहीं आया तेरा बर्थडे? बैक आ गया यार, केक तो खा ले।
1: हेलो,
2: हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: तूने दिमाग खराब कर रखा है मेरे,
0: मेरी बात सुने, मेरी बात सुन लो भाई, मैं तुम्हारे बर्थडे नहीं है, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम, मैंने तो ऐसे नंबर मिला दिया था। तुम्हारा बर्थडे नहीं मना रहे हैं, तुम्हारा मुर्गा मना रहे हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और तुम अपना नाम बताएंगे प्लीज अपना?
1: मैं समीर बोल रहा हूँ।
0: समीर, तुमसे ये मेरे साथ की जो टीम है ये कुछ कहना चाह रही है, जरा सुन लो एक सेकंड।
2: बोला कुकड़ू कुकू
1: कुकड़ू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: दर्शन रावल की खूबसूरत सी आवाज, रोचक कोहली का साधन, व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज। लड़की को देखने के बाद कैसा लगा ये तो इस गाने ने बहुत अच्छी तरह से बयां किया। मुझे सुनने के बाद कैसा लगा ये आप बयां करेंगे। हैविंग सेड दैट, चलिए करते हैं मीठी मिर्ची की शुरुआत। वक्त हो चुका है कमाल मिर्ची घड़ी में, इस वक्त बज रहे हैं 10:09 हबीबी।
1: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: वैसे क्या आपने कभी सुना है या कभी महसूस किया है कि कुछ रिश्ते जो होते हैं जिंदगी में ये काफी कमाल होते हैं।
2: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से मीठी मिर्ची की शुरुआत करने आपके साथ मैं आ ही चुकी हूँ। यार पता है, लाइफ में कुछ हो ना हो, कुछ खास लोगों का होना बेहद ज़रूरी है। हम चाहे कितना भी क्यों ना सोच लें कि हम जो है अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मशगूल रहते हैं, मस्त रहते हैं, मस्ती में रहते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं यार। यूँ ही एक इंसान को, ह्यूमन बींग को सोशल एनिमल थोड़ी ना कहा जाता है। जब तक हमारे आसपास इर्द गिर्द वो चार पांच लोग ना हो, कुछ शख्स ना हो, जिंदगी जो है ना अधूरी होती है। एंड सच कहूँ, जिंदगी को अच्छी तरह से जीने के लिए ना कभी भी भीड़ की जरूरत नहीं, ना यार झुंड किसे चाहिए। यार गिन के तीन चार लोग हों लेकिन वो दिल से अपने हों, एंड कुछ इस तरह से अपने हों कि आपकी गलती में आपको हक से डांट सकें, आप उनकी बात को स्वीकार सकें, आपकी खुशी को आपसे ज़्यादा सेलिब्रेट कर सकें, आपके गम को अपना मान सकें, जब आपको ज़रूरत हो आपकी पुकार के पहले आप तक पहुँच सकें, और हर कदम साथ चलने का सिर्फ वादा ना करें, कभी साथ ना भी हो पाए ना तो अपने रास्ते अपनी जगह से आपकी खुशी को पूरी तरह से मना सकें। अगर ऐसा कोई शख्स, ऐसे कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में है ना, सच कह रही हूँ, आपसे ज़्यादा रईस और अमीर कोई हो ही नहीं सकता। तो बस अगर ऐसा कोई लाइफ में है तो फटाफट से इसी वक्त उन्हें कॉल करने की बारी आ चुकी है। एंड अभी फिलहाल मीठी मिर्ची शुरुआत चुकी हम कर चुके हैं, तो जल्दी से मुझे भेजें गुड मॉर्निंग मैसेज, ईगली वेटिंग फॉर योर रिप्लाइज 5000 1896। बंधु कविता सेठ की आवाज़, नीरज श्रीधर का साथ, अगला गाना फ्रॉम द फिल्म कॉकटेल 2, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष, महापुरुष।
1: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

Well, परमप्रिया टंडन की खूबसूरत सी आवाज फिल्म का नाम दो पत्ती एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज. क्या खूबसूरत सा गाना यार. लेकिन चलिए एक काम करते हैं कि इससे पहले मैं आपको वर्ल्ड कप की दुनिया का मैजिक एक बार फिर से दिखाऊं. निखिल डिसूजा की आवाज में क्रूक फिल्म का एक गाना है जो कि 90s के लवर्स 101% कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हम जो 90s बॉर्न है ना, इनफैक्ट जो 80s वाले भी हैं भाई, अपने जब कॉलेज टाइम में प्राइम पर हम पहुंचे तो ये गाना ऐसा था जिसने हमें पूरी तरह से हिला के रख दिया था. मतलब वो जो इश्क प्यार मोहब्बत वाली फीलिंग है ना, वो दोगुना हो चुकी थी. तो भाई 80s 90s वाले इंस्टेंट गुड मॉर्निंग मैसेज भेजने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये अगला गाना भाई सभी के लिए लेकिन खासकर आपके लिए. 5000 1896 5000 1896 आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. मीनवाइल एंजॉय दिस ट्रैक ऑन मिर्ची. वंदी का नाम अंशु. एंजॉय.

0: Well, निखिल डिसूजा की खूबसूरत सी आवाज, फिल्म का नाम क्रू एंड व्हाट अ लवली ट्रैक, जैसा कि मैंने आपको कहा था। लेकिन अब जो है धमाका आपकी जिंदगी में एंट्री करने वाला है।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to me, Timothy, and this is RJ Anshu with you. Well, इस वक्त अगर वर्ल्ड कप की बात करें तो इतना समझाएं, डू और डाई आपके लिए घर पे हो या ना हो, लेकिन हाँ इनके लिए 101% है, क्योंकि मौका एंड दस्तूर कुछ इस तरह से है कि ना ही आपको ये सेकेंड चांस है, ना ही आपको ये कमबैक स्टोरी है। एक गलती एंड सीधा डायरेक्ट फ्लाइट बैक होम। वेल, अगर कल के मैच की बात करें, फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 यानी कि 3-0 से हराकर एक सॉलिड स्टेटमेंट दे दिया है। एंड यार, जर्मनी एंड नीदरलैंड्स जैसी बड़े जायंट्स जो हैं ऑलरेडी टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। एंड अगर आज रात की नजरों की बात करें तो पूरी तरह से वो रहेंगी इंग्लैंड वर्सेज DR कांगो पर। देखिए, पेपर पर इंग्लैंड फेवरेट है, लेकिन DR कांगो ने पूरे टूर्नामेंट में सबको सरप्राइज किया है। एंड ये नॉकआउट स्टेज जो है, ये एक ऐसा स्टेज है जहां पर पेपर काम नहीं आता भाई, जिसका चल गया उसका चल गया, बस यही माहौल क्रिएट होता है। वहीं अगर आज के दूसरे मैच की बात करें, बेल्जियम वर्सेस सेनेगल, एंड वी कुड नॉट बी मोर एक्साइटेड। लेकिन इस बार वीकेंड की तैयारी अभी से कर लो बॉस, दिल को थाम के रखने की बारी आ चुकी है, जब पोर्चुगल एंड क्रोएशिया इन दोनों का आमना सामना होगा। मतलब एक तरफ रोनाल्डो, दूसरी तरफ लुका मॉड्रिच, इससे ज्यादा कोई सोचे तो क्या ही सोचे। चलिए आपसे एक सवाल पूछते हैं, फीफा कतर के एक्सपीरियंस के बाद इस वक्त जब आप वर्ल्ड कप के बारे में और भी ज्यादा सुन रहे हैं, तो हाउ डू यू फील एट द मोमेंट? क्या नॉस्टैल्जिया में जा रहे हैं? कुछ बातें हैं जो कहीं ना कहीं मिस हो रही है, कैसा लग रहा है यार? 5000 1896, वी विल गेट कनेक्टेड देयर। मीनवाइल, अगले तीन गानों का टीजर मैं आप तक पहुंचा दूं जो आपके इस खूबसूरत से दिन को और खूबसूरत बनाएंगे।
1: तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा।
0: एंड दिस इज गोइंग टू बी फॉलोड बाय
1: कश्ती है, जानिए तुझ में बस्ती है, तेरे संग लागी जो परी।
0: परीत कुछ ऐसी लगी है कि ये गाना सुनना तो बनता ही है। भाई गाड़ी का मीटर शुरू करें, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: में ही स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसको एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची, इट्स हॉट।
7: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
8: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
9: आएंगे दीदी।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6
12: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: ऑलराइट फिल्म साथियान, व्हाट अ लवली पावर पैक ट्रैक इट इज. जब लेजेंड्स एक साथ आते हैं ना तो मैजिक किसे कहते हैं. ये ट्रैक हमें ये बात जरूर बताता है. तो जब शान एक साथ आए, कुणाल, प्रवीण मानियन, के भाई, गाना जो है इतना मैजिकल ना बने तो फिर कैसा ही बने.
1: मिर्ची अंशु.
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ. एंड बस कुछ तो खास हुआ उसके बाद मुझे लगा कि किस्मत साथ देती है तो तब देती है जब जेन्युइनली आपने किसी चीज़ की दिल से ख्वाहिश की हो और इसके अलावा आपने अपनी मंजिल को पाने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया. यार ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं, ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं जिन्हें हमने आगे आते हुए देखा है. लेकिन किस तरह देखा है? किसी ना किसी रियलिटी शो के चलते. कोई किसी सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया लेकिन उसके बावजूद, ट्रॉफी जीतने के बावजूद ही वो पूरी तरह से गुमशुदा हो गया. लेकिन कोई ऐसे हैं जिन्होंने शायद अपनी टॉप पोजिशन उस फील्ड में ना बनाई, डिस्पाइट आज की डेट में वो काफ़ी मशहूर हो गए. कुछ ऐसे हैं जिन्होंने ट्रॉफी भी साथ मिली एंड साथ में शोहरत, दौलत सब कुछ साथ मिली. लेकिन हाँ, ये सब कुछ बस ऐसे ही नहीं हुआ. लगातार वो मेहनत करने से, कोशिश करने से ये सिलसिला जो है चलता रहा एंड फाइनली उनका मुकाम उन्हें मिला. चलिए, उनमें से एक ऐसे सिंगर जो आज के डेट में हमारे सभी के दिल में राज करते हैं, उनका नाम है अरिजीत सिंह. तो आज चलिए उन्हीं की बात करते हैं. अरिजीत सिंह को अगर हमने पहली बार कहीं देखा था, अगर हमारा उनसे रابطہ हुआ था, तो वो एक रियलिटी शो के जरिए हुआ था. एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन में वो आए थे एंड उसके बाद वो शायद टॉप पोजिशन तो हासिल नहीं किए लेकिन द रेस्ट इज हिस्ट्री. वो क्या है वो अगले लिंक पे बताऊंगी. हिस्ट्री एक बार फिर से प्रेजेंट में आएगी. लेकिन आपको मुझे इस वक्त ये बताना है कि अगर मैं अरिजीत सिंह की बात करूं तो वो कौन से सिंगिंग रियलिटी कॉम्पिटिशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था. अगर याद है फटाफट से करेक्ट आंसर भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, विच इज 5000 1896. 5000 1896 पर विल गेट कनेक्टेड देयर. इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु. आपके मैसेजेस का इंतजार. मीनवाइल अरिजीत सिंह की आवाज में टीजर के तौर पे अगला गाना सुना दो. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: जॉन अब्राहम, आपके हिसाब से द टॉप फिट बॉयज ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री।
3: फर्स्ट रेफरेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी वरुण धवन एंड आई विल टेल यू व्हाई, क्योंकि वरुण का जो फिजिक है वो बहुत ही प्रोपोर्शनेट है, उसके लेग्स बहुत ही स्ट्रांग है। टाइगर श्रॉफ, फैंटास्टिक बॉडी। रणवीर सिंह, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली फिट। एंड ऑफ कोर्स ऋतिक रोशन, ऑनेस्टली अमंगस्ट ऑल दीस इंक्लूडिंग माई सेल्फ आई थिंक सबसे फिटेस्ट इंसान हमारे इंडस्ट्री में इज अक्षय कुमार। एंड आई मीन होलिस्टिकली फिट, ही कैन सर्वाइव एनीवेयर। अगर आप उसको माउंट एवरेस्ट पे छोड़ दो, अगर आप उसको रेगिस्तान में छोड़ दो, अक्षय कुमार विल बी द ओनली गाय हु विल सर्वाइव एंड कम आउट।
2: छोड़ने की जरूरत ही नहीं है जॉन अब्राहम। अक्षय कुमार इज द ओनली पर्सन इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो बाय चॉइस इन जगहों पर जाएंगे। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: Our business is our business, none of your business.
5: पर दीदी, our entertainment is your entertainment.
6: Qatar का number one radio station.
7: 89.6
8: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: ट्रैक हिट्स द टाइटल ट्रैक ऑफ फिल्म सैयारा उफ यार, आहान पांडे, अनीत पड्डा। भाई साहब इस गाने की वजह से ना ये दोनों हमेशा दिल में पूरी तरह से बस और बैठ से गए। फहीम क्या गाते हो यार। यार एक मैजिकल गाने से दूसरे मैजिकल आवाज की जर्नी की तरफ आगे बढ़े। यार कभी सोचा है कि जिस आवाज ने लाखों दिलों को सुकून दिया, उस आवाज को पहली दफा या सबसे पहली बार इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया था। वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आर्यांशु विद यू। साल था 2005। एक यंग लड़का बंगाल से आया, नाम था अरिजीत सिंह। रियलिटी शो फेम गुरुकुल, लेकिन ट्रॉफी ये जीत ना पाया। वो टॉप 5 तक भी ना पहुंच सका। बहुत लोगों के लिए वही जर्नी जो है वो खत्म हो जाती है, लेकिन अरिजीत के लिए वहीं से उनका असली रियाज शुरू हुआ। रियलिटी शो के बाद उन्होंने फेम नहीं, प्रैक्टिस चुनी। म्यूजिक डायरेक्टर्स के असिस्टेंट बने, प्रोग्रामिंग सीखी, रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में घंटों बैठकर म्यूजिक को समझा, सालों तक बैकग्राउंड में काम किया बिना किसी शोर के, बिना शॉर्टकट्स के। लेकिन इसके साथ जुनून और लगन के चलते इन्हें पहला ब्रेक मिला। एंड पता है वो गाना कौन सा था? वही गाना जिसने हमारे कॉलेज टाइम में कहीं ना कहीं इश्क प्यार मोहब्बत की फीलिंग को ज्यादा बढ़ाया था, यही वाला। फिर
1: मोहब्बत करने चला है तू दिल।
0: लेकिन फिल्म जो है डिले हुई, डिले होने के बाद कुछ चीजें और हुई, लेकिन बात इतनी है फिर ले आया दिल। इस गाने ने लाखों लोगों को उनकी आवाज से रूबरू कराया। लेकिन अगर इनके असल ब्रेक की बात करें तो वो मिला इन्हें साल 2013 में आशिकी 2 के साथ, वो गाना जिसने हम सबके दिल में पूरी तरह से घर कर लिया। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट तुम ही हो। एंड आफ्टरवर्ड्स फॉर अरिजीत सिंह इट वॉज नेवर लुकिंग बैक। प्लेबैक सिंगिंग का अगर कोई सिनोनिम बन गया तो वो है अरिजीत सिंह। लेकिन आज के डेट में कुछ महीनों पहले अरिजीत सिंह ने एक बड़ा खुलासा किया, एक ऐसी न्यूज जो हर जगह सनसनी बन गई। एंड बस वही कि मैं प्लेबैक सिंगिंग को अलविदा कह रहा हूँ। सबके सब ये सोचने लगे अरिजीत सिंह बिना किसी गाने की कैसे हो सकता है। भाई इस बंदे ने यही कहा कि मैं अपनी ओरिजिनलिटी और वर्सिटैलिटी प्लेबैक सिंगिंग के चलते ला ही नहीं पा रहा हूँ। मैं म्यूजिक को अलविदा नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग को अलविदा कह रहा हूँ। अभी भी मेरे इंडिपेंडेंट गाने आएंगे, मेरे जो क्लासिकल ट्यून्स हैं वो आप तक अपनी धुन ज़रूर पहुँचाएंगे, और म्यूजिक का मैजिक मेरी ज़िंदगी में हमेशा बरकरार रहेगा। तो ये है बंगाल के उस लड़के की कहानी जो अपनी आवाज़ से लाखों दिलों में राज करता है। चलिए जी, मोहब्बत इरफान की आवाज में अरिजीत सिंह के तड़के के साथ क्यों ना वो इंसेप्शन वाला गाना हो जाए। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

अल्ड लानी की खूबसूरत सी आवाज नेहा भासन का साथ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज स्वैग के साथ पूरे दिल से आपका 11 बजे के इस नए आवर में स्वागत है। Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ। एंड अगर आज के दिन को देखने की कोशिश करें तो एक नई तारीख के साथ नए महीने ने हमारी जिंदगी में दस्तक दे ही दी। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 1st of July, मतलब आधा अध्याय जो है साल का हम पूरा कर चुके हैं, दूसरा आधा हमारी जिंदगी में शुरू हो चुका है। कहते हैं ना, अगर शुरू के 6 महीने ढंग से पढ़ाई नहीं की, ढंग से प्रैक्टिस नहीं की, तो अगला 6 महीना तुम्हें पूरा मौका देता है कि फाइनल इम्तिहान में अच्छे मार्क्स जो है वो तुम स्कोर कर ही लो। तो अगर लगता है कि कुछ सपने थे, कुछ ख्वाहिशें थी जो आपने इस साल मैनिफेस्ट की थी, लेकिन हाँ, शुरू शुरू में जोश रहा, सब कुछ किया, उसके बाद जो है टाइटाइफस ऐसा सब कुछ हुआ तो टेंशन नहीं है। ये अगला 6 महीना एक बार फिर से वो भरपूर मौका दे रहा है भाई कि अपने सपनों को दिल से ना ही सिर्फ आप सोचें, उन्हें जिएं एंड उन्हें पूरा करने में पूरी तरह से लग जाएं। चलिए जी, इतना बता दूं कि जुलाई का महीना जो है कतर में भी एंटरटेनमेंट की बहार लेकर आ रहा है। भाई साहब, एक ऐसा इवेंट जो काफी खास एक्सपीरियंस देगा वो जरूर होगा पाकिस्तानी मैंगो एग्जीबिशन। इट इज ऑल सेट टू किक स्टार्ट ऑन 9th of July एंड ये चलेगा 18th of July तक। तो बस पाकिस्तानी आमों का पूरा चस्का एंड मजा उठाने के लिए हम तो पूरी तरह से तैयार हैं। वंस अगेन एट द ईस्टर्न स्क्वायर ऑफ सुक वाकिफ, हाउ अबाउट यू? क्या आपकी मुलाकात मेरी वहां से होगी कि छुट्टी पे निकल जाएंगे? जरूर बताना। 5000 1896 5000 1896, आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। इन केस यू आर लिसनिंग टू मी, से अ हाय, सेंड अ हाय। मीनवाइल मैं आपको शंकर महादेवन एंड श्रेया घोषाल की आवाज में बहुत प्यारा सा गाना सुनाती हूँ फ्रॉम द फिल्म माय नेम इज खान। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: हेलो,
1: इज दैट वर्षा?
0: हु इज दैट?
1: वर्षा, मैं निखिल बोल रहा हूँ, एक्चुअली मुंबई से मैं बोल रहा हूँ। हमारा एक रियलिटी शो शुरू होने वाला है जिसका नाम है धारे गामा पा।
0: क्या नाम बताया आपने?
1: धारे गामा पा। हमारे ये रियलिटी शो है, मुझे कहीं से पता चला कि आप अच्छी सिंगिंग कर लेती हैं, अच्छा गाना गा लेती हैं, और किसी ने मुझे बताया कि आप हिमेश रेशमिया को भी कॉपी कर सकती हैं, उनके गाने आपको पसंद हैं।
0: थोड़ा बहुत गा लेती
1: हूं। ओके, मैं आपको टेलीफोन पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर धारे गामा पा में आप शॉर्टलिस्टेड हो गई तो हम आपको फिर इस रियलिटी शो में पूरा हिंदुस्तान देखेगा, आपको गाने का मौका देंगे।
0: बट ये रिकॉर्डिंग आप फोन पर ही करेंगे?
1: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझे आप। आपको जो भी गाना देंगे आप उसमें हिमेश रेशमिया का जो आपने मशहूर सुना होगा अब तक, ओ राइट, वो जो एक उनका सुर है,
0: लेकिन उनकी कॉपी करनी पड़ेगी।
1: नहीं नहीं नहीं, नॉट एग्जैक्टली कॉपी। आप कोशिश करिएगा कि हिमेश रेशमिया स्टाइल में गाना आपने सुना ही होगा। गाना है आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। गाने की शुरुआत में, गाने के बीच में, अंतरा जब खत्म हो, मुखड़ा जब शुरू हुआ, आप ऊ ऊ लगाएंगी। स्टार्ट वर्षा। वर्षा, वन सेकेंड, देखिए। ऊ

0: वही वाली ऊँ चाहिए जो पहले करी थी आपने, बहुत अच्छी करी है।
1: देखिए इससे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा।
0: अरे गड़बड़ आपको क्या प्रॉब्लम है, हमारा शो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, धारेगा में पानी सर। स्टार्ट।
1: मिल गई मंजिल मुझे,
0: ऊँचाइए ऊँचाइए। तेरा तेरा तेरा सुरूर, एक्चुअली ये तेरा कसूर भी नहीं है
2: वर्षा, ये किसी का कसूर नहीं होता, ये कसूर उनका होता है जो लोग मुझे नंबर देते हैं और ये कहते हैं कि उनका मुर्गा बनाया जाए। वर्षा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा आपको अजीब लगा होगा लेकिन
1: माय गॉड, अजीब नहीं, मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
5: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
6: दोनों मिलेगा।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
8: 89.6
9: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: Well, Sachi Tandon and Param Ratnan ki khoobsurat si awaaz aur a lovely track it is. Ye khoobsurat sa gaana to maine aapko suna diya, lekin is naye mahine ko welcome karte hue aapke beech ek khaas khabar bhi pahuncha hi di jaye. Maine aapse kaha tha ki July ka mahina jo hai hamari zindagi mein khushiyon ki bahar lekar aayega. Ab ye bahar jo hai kisi talent show ke zariye hogi.
1: Mirchi Anshu.
0: वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आज अंशु विथ यू. भाई साहब इतना समझाएं कि गर्मी की छुट्टियों में हम जो है आपको शांति से बैठने नहीं देंगे. याद है बचपन में कहा जाता था कि गर्मी की छुट्टी आई है तो बस हॉबी की कोई ना कोई क्लास लगवा लो, कहीं नाचने जाओ, कहीं गाना सीखने जाओ, नहीं तो स्विमिंग करने जाओ, कुछ ना हो सके तो फिर से एक बार पढ़ाई की क्लास लगवा लो. तो चलिए ऐसी कोई क्लास आपकी जिंदगी में फिर से लग जाए इसकी तैयारी और इसका मौका जो है मिर्ची आपको दे ही रहा है. लेकिन कैसे? वाया कतर्स गॉट टैलेंट. बोले ऐसा टैलेंट शो जैसा ना आपने कभी कतर में पहले देखा है ना चाहे सुना हो, जिसमें ये एक ओपन कॉम्पिटिशन आपके बीच हम लेकर आ रहे हैं. चाहे ग्रुप परफॉर्मेंस हो, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हो, आपके अंदर जो भी खास हुनर है बिल्कुल आप उसे मंच तक पेश कर पाएंगे. लेकिन उसके पहले एक ऑडिशन राउंड से आपको गुजरना होगा. लेकिन भैया ऐसा कोई हुनर है जिसे घर वाले कहते हैं कि बेटा बाथरूम में ही गाना, उससे बाहर ना निकलना, तो ऐसे मौके हम आपको स्टेज के बाहर जरूर देंगे. तो वेल कतर्स गॉट टैलेंट एक ओपन टैलेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वेदर आप बहुत अच्छा गाते हैं, आप बहुत अच्छा डांस करते हैं, आप एक मैजिशियन है, आपके अंदर कोई और हुनर या स्किल है, बिल्कुल आप पेश कर पाएंगे. इसकी एंट्रीज हम बहुत जल्दी एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, चाहे इंडिपेंडेंट आप परफॉर्मर हैं या ग्रुप परफॉर्मर हैं. तो बस अपने झुंड को इकट्ठा करने की तैयारी कर लीजिए. जुलाई लास्ट वीक में इसका ग्रैंड फिनाले होगा एंड बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस आपका इंतजार भी करेंगे. ये तो सिर्फ टीजर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. सुर निगम की आवाज श्रेया घोषाल के साथ ये अगला गाना. मीनवाइल एंजॉय. बंदी का राम अंशु. शुक्र

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चांटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चांटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चांटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची इट्स हॉट।
7: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
0: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
8: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: मतलब जसलीन रॉयल की पावर पैक आवाज हर्षदीप कौर का साथ, फिल्म का नाम बार बार देखो, लेकिन ये गाना जो है अक्सर पार्टीज में बार बार सुना जाता है। मिठास है, स्पाइस का तड़का है, जब आप और हम साथ हैं तो बस यही काम होना ही होना है। लेकिन जरा देखें इसके साथ ही आज का फ्यूल अपडेट क्या ही कहता है।
1: What is the price of fuel, you beauty fuel? Fuel update.
0: Well, इस वक्त अगर फ्यूल प्राइसेस को हम देखने की कोशिश करें तो इतना बता दूं कि कतर एनर्जी ने जो अनाउंसमेंट की है उनके हिसाब से अगर आप प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल की बात करें तो वो प्राइस जो है वो इंक्रीज हो चुका है, लेकिन अगर सुपर ग्रेड पेट्रोल की मैं बात करूं सो दैट रिमेन्स अनचेंज्ड। एंड सुपर ग्रेड पेट्रोल का प्राइस इस महीने के लिए भी है कतरी रियाल 2.10 पर लीटर, वहीं अगर मैं प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल की बात करूं सो इट विल बी प्राइस एट कतरी रियाल 2.05 पर लीटर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, अप फ्रॉम कतरी रियाल 2 इन जून। चलिए यहां पर ना आपसे एक सवाल पूछते हैं, आप जिस भी साल कतर आए थे, आप जब भी कतर आए थे उस वक्त पेट्रोल की कीमत कतर में कितनी हुआ करती थी? 5000186 आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। जब तक आप अपना जवाब भेजते हैं मैं आपको राघव ऑफ टेशर की आवाज में पावर पैक गाना सुनाती हूँ। इंजॉय विद दिगना अंशु।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: Govinda, आपका अल्टीमेट फिटनेस टिप कौन सा है?
3: मुझे ऐसा लगता है योग और प्राणायाम जो है इससे आपकी बॉडी जो है बहुत ही करेक्ट रहती है और आपको मतलब वो घबराहट नहीं होती है।
2: तो ये एडवाइस आप देंगे कंटेम्प्रेरी हीरोज को?
3: योग प्राणायाम तो करते ही होंगे वो लोग, मुझे ऐसा लगता है।
2: आपको क्या लगता है कौन कौन करता होगा? मैं आपको तीन नाम देती हूँ, इन तीनों में से बताइए। वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जॉन अब्राहम।
3: ये तीनों एक्टर्स ऐसे इन लोगों की मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी ज्यादा अच्छी है और पता नहीं कितने पैक निकले हुए हैं। उस जमाने में तो पूरी शाम में सब लोग हीरो लोग पैक ही लगाया करते थे, अब वो पैक उनके पेट पे आ गए। टेढ़ा मेढ़ा क्या नजर आ रहा है, ये पेट है इनका? ओहो, अच्छा अच्छा, फाइन फाइन फाइन, वेरी गुड वेरी गुड।
2: फिटनेस का पता नहीं लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर पर 110 फॉर चीची। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
5: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
1: बार बार।
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
6: 89.6
5: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए आज हूँ, लेकिन आपके बीच एक खास अपडेट भी पहुंचाना चाहूंगी. वेल, इस वक्त अगर मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की बात करें तो उन्होंने एक ही एडवाइसरी हम सबकी जिंदगी में बार बार लेकर आए. उनका यही कहना है कि बदलते मौसम के साथ गर्मी जो है ग्रेजुअली बस बढ़ती ही जा रही है, लेकिन जहां पे एक तरफ टेम्परेचर तापमान काफी ऊपर है, वहीं दूसरी तरफ काफी सारे वायरल इन्फेक्शन भी इस वक्त कतर में देखने को मिल रहे हैं. तो वाल इतना ही कहना चाहेंगे कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि धूप में कम से कम निकले, और इसके अलावा कभी भी ऐसा ना हो कि सडनली एकदम गर्म से आप एकदम ठंडे में आ रहे हैं या एकदम ठंडे से आप एकदम गर्म में जाने की कोशिश कर रहे हैं. ये तापमान डिफरेंस की वजह से ना शरीर का बैलेंस जो है वो जरूर बिगड़ता है, उसके बाद अगर जिंदगी में कुछ आता है तो वह सर्दी जुकाम पूरी तरह से बिन बुलाए मेहमान की तरह. बुआ को तो आप फिर भी कैसे ना तैसे एक दो दिन में रवाना कर ही दोगे, लेकिन जो सर्दी जुकाम एक बार आपकी घर में जिंदगी में आ गए ना भाई, एक एक इंसान को जब तक छू ना ले, हाय इनका दिल भरे तो कैसे ही भरे. तो बस प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पे मैं तो ये कहती हूँ, हर रात सोने से पहले ना एक बार वो कहते हैं ना गुनगुने पानी का गरारा, यानी कि गार्गल जो है वो करते ही रहें. साथ में भले ही स्किन को अच्छा करने के लिए एक आध बस स्टीम हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस जब तक वायरल इन्फेक्शन का दौर चल रहा है अपनी लाइफ में 101% मेंटेन रखें एंड कंटिन्यू रखें. चलिए जी, अगले आवर की तरफ बढ़ने से पहले आपको राघव चैतन्य की आवाज़ में ये अगला गाना मैं जरूर सुना दूँ. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: अरिजीत सिंह एंड अंतरा मित्रा की खूबसूरत सी आवाज फिल्म का नाम दिलवाले एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज। बस तुमने कह दिया कि कभी ना कहना अलविदा, तो ये वादा समझ लो कि मैं रहूंगी तुम्हारे साथ सदा। क्या बात है।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Ajay Anshu with you. जिंदगी में मिठास और साथ स्पाइस का तड़का, ये दोनों का दोनों एक साथ लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ। भाई साहब, आज 1 जुलाई की बात करें तो घड़ी का कांटा जो है बस यही इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है कि बेटा तुम्हारा आज का इस नए महीने का आधा दिन जो है वो पूरा हो चुका है। अब किसी के लिए निकला है, किसी के लिए बीता है, किसी के लिए साकार हुआ है। वो किस तरह से हुआ है तो ये तो इसी बात पर डिपेंड करता है कि तुमने अपने दिन को किस तरह से बिताया है। लेकिन हाँ, इसके साथ ही कोई तो है जिनका आधा काम भी अब पूरा हो चुका है।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
0: वेदर अपडेट। हाँ जी, हमारे सूरत चाचू की बात कर रहे हैं। हम सुबह से बेचारे इतनी मेहनत से लगे हुए हैं हमें तपाने में, खुद को तपाने में कि क्या ही बताएं। तपते तपते अगर आज के टेम्परेचर को देखने की कोशिश करें तो तवा जो है ये खुद कह रहा है कि ऑमलेट बाहर जो है मैं खुद ब खुद बनाऊंगा, अपने घर के गैस को जरा बचा के रखो मेहमानों के लिए। टुडेस मैक्सिमम टेम्परेचर इज गोइंग टू बी समवेयर अराउंड 47, मिनिमम इज गोइंग टू बी अराउंड 35। प्लीज कीप योरसेल्फ फुल्ली हाइड्रेटेड, इंश्योर यू आर हैविंग इनफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन योर बॉडी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर्दी से ठंडी, ठंडी से एकदम ज्यादा गर्मी, इमिजिएटली ये वाला ट्रांजिशन जो है ना अपनी लाइफ में बिल्कुल भी ऐड ना करें। ऐड करना है तो अंशु को करें यार, मिठास स्पाइस दोनों बना रहेगा। एंजॉय बंदी का नाम अंशु। वेदर चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
3: RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813।

0: Milchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Yambala. Murga, murga. La vieja la murga. Milchi, murga.
2: हेलो
3: हेलो भाई राज, एक ये बात बता भाई, तू तेरी इनकम कितनी है? हैं,
2: बोल कौन रहा है?
3: नहीं, मुझे ये बता भाई, कितनी तनख्वाह मिलती है तुझे एक महीने में? कितने पैसे
2: कमाते?
3: तमीज से ही बात कर रहा हूँ मैं, मेरी मेहनत में पानी फेर दिया। मैं तुम्हें बताना चाह, तेरी जेब कटी थी कुछ दिन पहले, तेरा वॉलेट गायब हुआ है यहाँ से?
2: हाँ, कटी। कौन बोल रहा है?
3: मैंने काटी है तेरी जेब, 17.5 रुपए लेके घूम रहा तू पर्स में, मेरी मेहनत की तूने ऐसी,
2: तूने जेब काटी, पर्स काटी ऊपर से, और तू फोन करके आ रहा है कि साले 17 रुपए।
3: तेरा नंबर मुझे इसमें पड़ा मिला, तू रखता क्यों नहीं इसमें पैसे?
2: तो मेरे पैन कार्ड और कुछ क्रेडिट कार्ड होंगे भाई।
3: हाँ, तो मैं क्या करूँ उसका?
2: जरा वापस दे दो यार।
3: पैन कार्ड दे दूँ मैं, तेरा क्रेडिट कार्ड दे दूँ, और जो मेरी मैंने तो पानी फेरा 17.5 रुपए, शर्म नहीं आती पर्स में? नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरी मेहनत का क्या होगा? मेरी मेहनत का क्या होगा, वो कौन देखेगा आके?
2: 17 रुपए
3: कितने पैसे चाहिए? 2000 रुपए से कम आज तक जेब नहीं काटी मैंने।
2: तुम्हें एड्रेस दे दे अपना, वो कर दे, मैं कॉरियर कर दूंगा।
3: एक चीज कर दो मेरे लिए, मैं सारा पैसा तुम्हारा वापस कर दूंगा। करो मेरे साथ।
2: क्या करूं बताओ?
3: मेरे साथ बोलो कुकड़ो कु।
2: सॉरी
3: भाई साहब, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका पर्स किसी ने मारा था? मैंने नहीं मारा। और आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया यार, मुझे बड़ा तरस आया आप। अब मेरे साथ जरा प्यार से बोल दीजिए आप कुकड़ो कु।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: यार देखो एक बात तो तय कि घर के हर एक सदस्य का इंतजाम हो ही गया।
1: मिर्ची अंशु
0: हे वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। एक बात मुझे बताना कि घर में पापा जो हैं वो सबसे ज्यादा खुश कब हुआ करते थे? जब उन्हें बस यही पता हो कि भाई मम्मी खुश है। मम्मी तब खुश होती थी जब हम जो हैं पूरी तरह से ऑक्यूपाइड होते थे। तो चलिए आपके घर में ऐसा कोई सिनेरियो उस वक्त हम क्रिएट कर ही दें, और ये होगा दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर पर, जहां पर एक तरफ आपको पता है कि शॉपिंग की बहार लगी हुई है विद दोहा शॉपिंग एंड ट्रेड एग्जीबिशन, एंड वहीं दूसरी तरफ कतर टॉय फेस्टिवल ने दस्तक दे दी हो। इन दोनों सिनेरियो में जब मम्मी एंड बच्चे पूरी तरह से ऑक्यूपाइड रहेंगे, मम्मी शॉपिंग में, बच्चे खेलकूद में, तो पापा की जिंदगी में खुशहाली ना आए तो फिर क्या ही आए। तो चलिए जी, इस बार आपके वीकेंड को बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग एंड स्पेशल बनाने की तैयारी हमने कर ही ली है। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हला समर, समर को हेलो बोलने का टाइम आ गया है, एंड कतर वेकेशन मोड को ऑन करने का वक्त भी आ ही गया। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: अच्छी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: लगा
6: मिर्ची। It's hot.

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: क्या करें क्या ना करें ये कैसे मुश्किल है।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Aajan Show with you. अगर आपकी जिंदगी में यही सवाल है तो बस इसका हल बताने के लिए तो मैं आई हूँ। भाई साहब इतना समझ जाओ, हाला कतर के चलते आपकी जिंदगी में अगर कुछ हाय हेलो बोलने वाला है तो वो है एंटरटेनमेंट, एंड बाय बाय अगर कुछ बोलने वाला है तो वो है बोरियत। वैसे मेरे आने से ये काम तो आपकी लाइफ में हो ही जाता है, लेकिन जब अंशु नहीं तो क्या भैया, जाओ कतर के वेंडर्स एक ही सवाल पूछते हैं कि कहाँ जाए क्या, ये पूछने के लिए कतर के इतने डिजाइनर एंड खूबसूरत मॉल हमने तुम्हारे लिए बनाए। जाइए यार, अच्छी खासी शॉपिंग कराइए, समर का टाइम है, वेकेशन का टाइम है, एंड इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि कतर टॉय फेस्टिवल के एक्सटेंशन की अगर मैं बात करूं तो कतर के ढेर सारे मॉल्स में आपको उसके एक्टिवेशंस देखने को मिलेंगे। तो एक बार फिर से बच्चे जो है वो खुश हो ही जाएंगे, बीवी जो है शॉपिंग में फिर से मशगूल हो ही जाएगी, एंड फायदे का सौदा दोबारा आपकी जिंदगी में आएगा। जाओ घूम फिर के आओ, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: मेलिन सोमन, आपकी इतनी फिट बॉडी है, क्या आपने कभी इस बॉडी का फायदा उठाया है? आ जा, दिखाता हूँ तुझे, झगड़ा करेगा मेरे साथ।
3: कभी झगड़ा नहीं किया, और टफ फिजिक का मतलब ये नहीं कि झगड़ा करके उसको जस्टिफाई करो। गुड फॉर शो व्हिच इज गुड फॉर माय प्रोफेशन एंड आई वर्क अ लॉट, आई वर्क वेरी हार्ड, सो आई नीड दैट फिटनेस लेवल
2: एंड आई नीड योर मोटिवेशन लेवल। मिलिन सोमन, आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: Hello, Sharps. Our product is phenomenal. One of a kind, but still profit nahi ho raha hai. Maine Baba Ji se advice li to kehte hain.
5: Office ke toilet mein toilet paper white nahi, yellow lagao. Profit aayega.
4: Relative se advice lo to kehte hain.
6: Kaam ko time do. 25 ghante kaam karo. Dark circles honge to future bright hoga.
4: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
7: भाई क्या कर रहा है तू? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहाँ तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
8: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.

0: इस गाने को आवाज दी है नीलकमल सिंह और ममता शर्मा ने, म्यूजिक दिया है आदित्य देव और नीलकमल सिंह ने, और लिरिक्स लिखे हैं धीरज बबुआन ने। धमाल फोर से सुनते रहिए चटनी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: बधाइयां जी, बधाइयां, बधाइयां हो।
2: मिर्ची अंशु
1: हरी बधाई जी, लख लख बधाई। फाइनली जब अकाउंट में पैसे आ जाएं तो इस बात की हम आपको और आप हमको बधाई ना दे तो फिर क्या ही दें। सच कह रही हूँ, बड़ी खुशी हो रही है एंड साथ में ये भी खुशी हो रही है कि भैया नेचुरल ऑर्गेनिक वाला इंक्रीमेंट मिल ही गया है। देखो बॉस से तो हमने उम्मीद लगानी छोड़ दी है, लेकिन हाँ अच्छे खासे एक्सचेंज रेट से हम ये उम्मीद आए दिन लगा ही लेते हैं। दिल की बात जो है रेडियो में आ गई आज। हैविंग सेड दैट, आज आईपी मनी में कमाल के एक्सचेंज रेट्स मिल रहे हैं। अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो 1 रियल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 25.95 एंड इसके साथ ही पाकिस्तानी रुपीज 76.88, बांग्लादेशी टका 33.97, नेपाली रुपीज 41.49 एंड इसके साथ ही लंकन रुपीज डंका बजाते हुए 92.05। घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां। लेकिन जब बॉस आसपास नहीं होते तो मैं ऐसी बातें करती रहती हूँ क्या? आप भी ऐसा कुछ कहते हैं क्या? बताना जरूर। स्टूडियो में बची बंदी का नाम अंशु, मासल्ला महबी।

0: Anjali, match your helpline. Ball.
1: You know, I loved winning. But mera BF matching kapde kabhi nahi pehenta. Wo har baar na bol deta hai. Kya karun?
0: Hey, to galat thodi bol raha hai. Ladke skirt mein thodi acche lagte hai, Anjali.
2: Mast joke marar. Ye has re halka has.
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

प्रोफेसर, वायरस ने तो हमें नंबर वन की अहमियत काफी लेट बताई थी यार, थ्री इडियट्स मूवी में, लेकिन नंबर वन की अहमियत हमें पहले ही पता लग गई थी। पहली तारीख की अहमियत हमें उस एड से ही पता लग गई थी जब गाते थे कि मीठा है खाना आज पहली तारीख।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. Now you tune in with me on Mirchi. And बचपन से हम सीखते आ रहे हैं कि जो पहली तारीख है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है. लाइक इस एड से भी पहले मम्मा हमेशा पहली तारीख पढ़ना जब घर आती थी तो सांता क्लॉज बन के आती थी यार. उनके पास होते थे खाने पीने के भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन. वो बेकरी से होती हुई आती थी तो वहां से हमारे लिए केक्स, पैटीज, चिप्स और क्या क्या नए लेकर आती थी. ऑफकोर्स और जो बिस्किट्स और नमकीन का स्टॉक करना होता था महीने भर का वो भी लेकर आया करती थी. तब से ना जब पहली तारीख आती है तो कुछ कुछ होता है जो आज मैं समझती हूँ, बचपन में मुझे समझ में नहीं आता था, आज वो डबल हो गया है. बिकॉज यार बचपन की यादें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं पहली तारीख से. और दूसरा, जब हमारी सैलरी आती है तो हमें भी बड़ी खुशी हो रही होती है कि यार आज तो सैलरी आने वाली है. तो बस फिर ये जो चंद लम्हों वाली खुशी है इसको सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि सैलरी जैसे आई है उससे जल्दी जाएगी, ऐसा वाला सीन है. इस बात को भी मद्देनजर रखते हुए पहली तारीख सेलिब्रेट करना तो बनता है बॉस. मुझे तो आप ये बताओ, आप पहली तारीख को कुछ खास करते हो जिससे कि आपको महसूस हो या आपके घर वालों को महसूस हो कि यार आज तो पहली तारीख है. देखो मैं आज भी ना मम्मा की वो जो प्रथा है वो कहीं ना कहीं फॉलो करती हूँ कि यार हम ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर लेते हैं ये कहते हुए कि यार आज पहली तारीख है. हाँ, कुछ ना कुछ तो बनता है ना बॉस. तो बस दिल को खुश करने के लिए ये छोटी मोटी खुशियों का ख्याल ही अच्छा है गालिब. क्या बोलते हो, मिड्डे मोहब्बत की गाड़ी को अब 90s के गियर में डाला जाए? तो बस फिर आगे बढ़ते हैं और आपसे कहती हूँ स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कहाँ पे है?
1: थैंक यू सो मच, लेकिन मेरा बर्थडे नहीं है।
0: तो फिर कहाँ पे भाई तेरा बर्थडे?
1: मेरा भी 3 महीने बाद बर्थडे आना है।
0: तो 3 महीने बाद है तो तू बता अब रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया? यहाँ मैंने पूरे ग्रुप को जमा करके तुझे विश करना चाह रहे हैं, हम पागल खड़े हैं? हैं राकेश, तेरे को पहले नहीं बताना चाहिए था ये?
1: भाई मैं राकेश नहीं हूँ, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, मैं राकेश नहीं हूँ।
0: तो सो के जाग रहा, राकेश भी नहीं है, तेरा बर्थडे भी नहीं है, तू पहले नहीं बता सकता था? दांत फाड़ रहा है अब तेरे को बोलने परेशानी?
1: तमीज नहीं है बात करनी?
0: तमीज तेरे को तमीज होनी चाहिए यार। यहाँ पे हम 50 आदमी खड़े हो गए, तेरे को बर्थडे विश कर रहे, तेरे को पहले बोल देना चाहिए क्यों कर रहे हैं? मैं राकेश नहीं हूँ। नवाब साहब पहले पूरा सुनेंगे हैप्पी बर्थडे, फिर मेरे से कहेंगे यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं मेरा बर्थडे नहीं है, ना मैं राकेश हूँ। तू है कौन यार?
1: तू एक बार बता, मेरा नाम ना राकेश है, ना मेरा बर्थडे है, तू मेरे को जबरदस्त उल्टा सीधा बोले यार।
0: उल्टा सीधा मैं तेरे को नहीं बोल रहा, तू एक बार बता, तेरे को पहले बताना नहीं चाहिए था कि तेरा बर्थडे नहीं है? तो तेरा बर्थडे देख के क्यों नहीं आता? आज क्यों नहीं आया तेरा बर्थडे? बैक आ गया यार, केक तो खा ले।
1: हेलो,
2: हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: तूने दिमाग खराब कर रखा है मेरा,
0: मेरी मेरी मेरी बात सुने, मेरी बात सुन लो भाई। मैं तुम्हारा बर्थडे नहीं है, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम, मैंने तो ऐसे नंबर मिला दिया था। तुम्हारा बर्थडे नहीं मना रहे हैं, तुम्हारा मुर्गा मना रहे हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और तुम अपने नाम बताएंगे प्लीज अपना?
1: मैं समीर बोल रहा हूँ।
0: समीर, तुमसे ये मेरे साथ की जो टीम है ये कुछ कहना चाह रही है, जरा सुन लो एक सेकंड।
2: बोला कुकड़ू कुकड़ू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: अर्ज
3: किया है
5: इरशाद, इरशाद

0: IP payments ka wah tarika. With IP, send money starting from just QAR 5 and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IP app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IP, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: हमारी चोरियाँ चोरों से कम है के
2: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची वन इट्स हॉट

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: महेश भट्ट की मूवी की एक खास बात है कि वो अक्सर अपने न्यूकमर्स को जब भी लॉन्च किया करते थे तो उनकी आवाज ओरिजिनल नहीं होती थी, वो हमेशा डब्ड होती थी।
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And the same happened जब जॉन इब्राहिम ने पहली मूवी करी अपनी and that was जिस्म, तो उनकी आवाज भी डब थी। In fact, बिपाशा बासु की आवाज भी डब थी। And same राहुल रॉय के साथ भी हुआ था जब उन्होंने आशिकी करी थी and that was his first film, तो उनकी आवाज भी डब की गई थी। Well, जॉन इब्राहिम और बिपाशा बासु ने इस फिल्म में पहली बार साथ में काम किया था, लेकिन उसके बाद there was no looking back for like 8 years because इनकी केमिस्ट्री इतनी चल गई ऑन स्क्रीन कि ऑफ स्क्रीन भी दे बिकेम पेर और 8 साल तक इनका रिलेशनशिप रहा था। एंड बिपाशा बसु का ये सेकंड नेगेटिव कैरेक्टर था क्योंकि इससे पहले उन्होंने अजनबी ऑलरेडी कर ली थी, लेकिन इत्तेफाक तो ये है कि जहां जहां भी इन्होंने नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया है दैट इज अजनबी एंड जिस्म, इन दोनों ही मूवीज में इनके कैरेक्टर का नाम सोनिया था। हालांकि ये फिल्म आपको पता है सबसे पहले किसको ऑफर की गई थी? अमीषा पटेल को, लेकिन अमीषा पटेल ने मना कर लुकिंग बैक फॉर लाइक 8 years बिकॉज इनकी केमिस्ट्री इतनी चल गई ऑन स्क्रीन कि ऑफ स्क्रीन भी दे बिकेम अ पेयर और 8 साल तक इनका रिलेशनशिप रहा था। एंड बिपाशा बसु का ये सेकंड नेगेटिव कैरेक्टर था क्योंकि इससे पहले उन्होंने अजनबी ऑलरेडी कर ली थी, लेकिन इत्तेफाक तो ये है कि जहां जहां भी इन्होंने नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया है दैट इज अजनबी एंड जिस्म, इन दोनों ही मूवीज में इनके कैरेक्टर का नाम सोनिया था। हालांकि ये फिल्म आपको पता है सबसे पहले

डिनो मोरिया, बट सिंस बिपाशा बसु एंड डिनो मोरिया का ब्रेकअप हुआ ही था, सो द भट्स डिड नॉट वॉन्ट की सेट्स पर कुछ ऑकवर्डनेस क्रिएट हो जस्ट बिकॉज द टू एक्टर्स, देयर लीड एक्टर्स आर एक्सेस एंड बहुत रिसेंटली ही दे हैड टर्न्ड इनटू एक्सेस। एंड हालांकि इस फिल्म का डायरेक्शन अमित सक्सेना ने दिया था, लेकिन आपको पता है ये काफी कहा जाता है और काफी माना जाता है कि महेश भट्ट ने आधी से ज्यादा फिल्म जो थी उसको गोस्ट डायरेक्ट करी थी। तो गोस्ट डायरेक्ट मतलब ये कि डायरेक्टर तो बैठा हुआ है ऑन द सेट्स, लेकिन एक अगला बंदा आता है और वो डायरेक्टर की जगह डायरेक्शन करके चला जाता है। अब भट्ट साहब ने तो पैसा लगाया था मूवी में, तो काफी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट सीन्स रहे हैं जहां पर ही वो सो डीपली इन्वॉल्व की ही ओनली डायरेक्टेड दोस सीन्स फॉर द मूवी, सो दैट इमोशनल टोनालिटी एक दम सेट बैठे। आपको पता है ये फिल्म मैंने कितने जमाने बाद देखी है? स्कूल में जब मैं थी तब तो मैं ये फिल्म देख ही नहीं पाई थी। बैंड था यार हमारा इस फिल्म को देखना। कमिंग अप मोर ऑन जस्ट यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: पिछले 7 दिनों में ये सब है खोया।
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: अरे चाटा क्यों मारा?
4: चला पैसे निकाल।
3: किस बात के पैसे?
4: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
5: क्या बोला तूने?
3: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसको एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
6: क्या जोक मारा भाई?
3: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
4: कौन सा?
3: चाटा लगा
4: भाई लगा।
7: मिर्ची, it's hot. A ring for the newly married? Cute little bangle for the newborn?
8: अरे यार, holiday season is here और फिर वही gifting का tension। फिर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, गोल्ड एंड समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस। प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिवीजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन द GCC। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
9: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
10: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: कहने को तो जिस मूवी के लिए जॉन अब्राहम बहुत नए नए थे, इनफैक्ट ही वाज अ मॉडल टर्न्ड इनटू एन एक्टर, और उनसे एक्टिंग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कोई ऑन द सेट्स, बिकॉज एवरीबॉडी न्यू कि उनको उनकी एक्टिंग कैपेबिलिटीज के लिए नहीं चुना गया है, उनकी शक्ल के लिए चुना गया है। लेकिन फिर भी देयर वर टाइम्स जब जॉन अब्राहम ने मेथड एक्टिंग का इस्तेमाल किया था। Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड जॉन ने इस फिल्म के बारे में जब एक इंटरव्यू में डिस्कशन करते हुए ये बताया तो मैं भी चौंक गई यार, कि उन्होंने ना कई जगह अपने कैरेक्टर को इमोशनली चार्ज करने के लिए अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इन्वॉल्व कर दिया। तो बेसिकली ही वॉज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन जहां पर बंदा जो है ना वो इमोशनली बड़ा बैटर्ड है बिकॉज ही हैज दिस गर्ल इन हिज लाइफ जिसके साथ वो बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। इज फॉलन हेड ओवर हील्स इन लव विद दैट वुमन। एंड ड्रामा ये है कि वो उस बंदी को पा भी नहीं सकता है, उसके पास जा भी नहीं सकता है, लेकिन मोहब्बत उससे बहुत करता है बिकॉज दुनिया दैट वुमन इज ऑलरेडी मैरिड। एंड यहाँ पर अपने आप को इमोशनली बैटर्ड दिखाने के लिए जॉन अब्राहम ने ये बात बताई थी कि उन्होंने अपनी पास्ट मेमोरीज को, यानी कि उनका जो रिलेशनशिप रहा था और उनके रिलेशनशिप के जो रफ पैचेस थे उनको याद करना शुरू कर दिया। एंड द स्टोरी ही सेड कि इनिशियली इट रिलेटेड टू मी ओनली। एंड इनफैक्ट एक सीन तो ऐसा था जहां पर उनको एक इमोशनल ब्रेकडाउन को इनैक्ट करना था और उन्होंने वो सीन ऐसा दिया कि भाई सीन खत्म हो गया लेकिन जॉन अब्राहम का रोना खत्म नहीं हो रहा था। और भट्ट साहब ने जॉन अब्राहम को आकर ये बात कही कि यार इस तरीके की एक्टिंग तो मैंने या तो शबाना आजमी की देखी है और आज तुम्हारी देख रहा हूँ। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है भाई उस इंसान के लिए जिसको कि हम कहते हैं कि एक्टिंग नहीं आती है। और जॉन अब्राहम ने ये भी बोला कि काफी सारे ऐसे लोग थे जिनको कि ये लगा था कि यार जॉन अब्राहम को ये फिल्म करनी नहीं चाहिए थी, बिकॉज यू नो जॉन अब्राहम का जो इंट्रोडक्शन सीन है वो ऐसा है कि यार बंदा टूटा फूटा सा गिरता पड़ता सा नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी हीरो की एंट्री हो रही है बाइक के ऊपर, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं। तो जब लोगों को ये बात पता लगी कि जॉन अब्राहम ऐसा कुछ रोल करने वाले हैं जहां पर यू नो उनके करियर की बिगनिंग ही एक ऐसे इंट्रोडक्शन से हो रही है, so why would he do that to himself? And he was actually asked by his friends, "Ki really, do you want to do this film? Are you really sure about it?" And John Abraham was very, very sure about it. क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो इस कैरेक्टर से शुरुआत से ही बड़ा इत्तेफाक रखते थे, क्योंकि उनको लगा था कि यार ये जो कैरेक्टर का फर्स्ट हाफ है ना, it's more like what really happened in my life as well, which makes me think. आखिर कौन थी वो बंदी? खैर सवाल तो सवाल ही रह जाएंगे क्योंकि वी ऑल नो कि जॉन अब्राहम की पर्सनल लाइफ के बारे में कोई नहीं जानता बाबू मुशाय। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

झटका दे लटका लटका डाल मटका अरे सटका दे ये वो मरेगा जो डरेगा कल्लू भेज की सुनेगा तो मरेगा खालू।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अनिल कपूर सर, ये सवाल हम आपसे 365वीं बार पूछ रहे हैं कि आपकी फिटनेस का राज क्या है?
3: हेल्थ ऐसी बनाओ, काम ऐसा करो कि आप 40, 50 साल, 60 साल तक आराम से वैसे ही काम करते रहो। मीठा खाना तो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, आपको मीठा अगर सूट नहीं करता है तो हफ्ते में एक बार खाइए, और खाना तो थोड़ा सा खाइए। आपको नमकीन पसंद है उसका मतलब ये नहीं कि आप इतना ही नमकीन खाते रहें। आपको चावल पसंद है तो दबा के आप चावल ही खा रहे हैं आप, यू नो, तो हर चीज़ करनी चाहिए, मगर थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके यू शुड वर्क इट आउट एंड बैलेंस एवरीथिंग इन लाइफ एंड डू एवरीथिंग इन लाइफ एंड दैट्स आई फील इज द मंत्रा फॉर योर फिटनेस। यू डू एवरीथिंग बट डू इट इन मॉडरेशन एंड डू इट व्हाट मेक्स यू हैप्पी।
2: हेल्थ टिप आपने दिया एकदम क्लास, क्योंकि अनिल कपूर आप आदमी एकदम झकास। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स ऑन
0: बॉलीवुड बोल्डा। Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: Our business is our business. None of your business.
5: Par didi, our entertainment is your entertainment. Entertainment.
6: Qatar ka number one radio station.
7: 89.6
8: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम, ये फिल्म की शूटिंग में कहीं अक्षय कुमार बीमार पड़े तो कहीं प्रियंका चोपड़ा गॉट इलेक्ट्रोक्यूटेड, तब जाके ये फिल्म बनी है। हालांकि देखने में लगता है फैमिली फिल्म ही तो है, लेकिन नहीं बॉस, इसमें भी काफी उतार चढ़ाव रहे हैं।
0: मिर्ची फिल्मी गुल्लक।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, इस फिल्म में एक गाना था सुबह होगी, जो कि अक्षय कुमार के ऊपर ही फिल्माया गया था, और उस गाने की शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार काफी बीमार पड़े थे। well, ये फिल्म की शूट 15,000 फीट की ऊंचाई पर हो रही थी, और शूट के दौरान अक्षय कुमार फेंटेड बिकॉज ही रैन शॉर्ट ऑफ ऑक्सीजन। क्या हुआ था कि शूट कंप्लीट करने के बाद अक्षय ने डिसाइड किया कि वहाँ जो जवान मौजूद हैं उनके साथ वो वॉलीबॉल खेलेंगे, और जब उन्होंने वॉलीबॉल खेलना शुरू किया तो कुछ ही देर में उनकी ऑक्सीजन लेवल्स जो हैं वो गिरने लग गए। बाबू भैया, सांस ना आने के सिर्फ 2-3 रीजन नहीं होते कि लड़की को देख लिया तो सांस नहीं आई, और मम्मी ने अगर हाथों में सिगरेट देख ली तो सांस नहीं आई। सांस ना आने की वजहें और भी बहुत सारी होती हैं। कभी आप पहाड़ों पे जाएं तो ध्यान रखिएगा। Stay tuned with me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Milchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milchi, burga. हेलो
2: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपको?
1: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
2: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आप जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धुलाए भी नहीं है।
1: क्या तुझे पागल लगा?
2: नहीं, वो मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
1: क्या कहना है?
2: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना रिक्शा वाले मेरी बात है। चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना। चलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा
1: मैंने सोचा
2: यार रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस, और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
3: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष।
0: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
0: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आज डेट से मिलना हो तो इतनी स्पेस तो है हमारे पास कि एक मैसेज भेजकर कोऑर्डिनेट कर लिया करते हैं। लेकिन स्मार्टफोन से पहले क्या हुआ करता था, याद दिलाती हूँ आपको।
0: नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड स्मार्टफोन्स और मोबाइल फोन्स के मिस कॉल से पहले ब्लैंक कॉल्स या फिर दो घंटे के कॉल हुआ करते थे। अगर फोन दो बार बजकर बंद हो गया ना, इसका मतलब दाल में जरूर कुछ काला है। और ये जो दो घंटे वाले फोन मेरी कजन के लिए अक्सर बजा करते थे, लिटिल डिड वी अंडरस्टैंड कि ये दो घंटे नहीं, किसी के दिल की धड़कनें थी। हम ट्यूबलाइट थे यार, जो कि बाद में जाकर जली। तब तो हमें समझ ही नहीं आया था कि ये दो घंटे बजकर फोन क्यों बंद हो जाता है। इनफैक्ट हमने तो इस बात पर गौर भी नहीं किया था। गौर तो हमने तब किया जब एक दिन हमारी कजिन की क्लास लग रही थी और बड़ों ने बैठ के उनकी क्लास लगाते हुए यही पूछा कि क्या मसला है ये दो घंटियों का। हाँ, अब हम तो ठहरे बच्चे जिन्हें तमाशा देखना बड़ा पसंद आया करता था, तो हम भी वहीं बैठ गए आलती पालती मार के देखने के लिए कि आखिर ये दो घंटे का रीजन है क्या। वैसे एक बात तो है यार, अब तो ये दो घंटे क्या, हमारे लैंडलाइन पर एक कॉल भी नहीं आता है। तरस जाते हैं कान की कभी लैंडलाइन बजे तो हम जाकर उठाएं। अब तो सिर्फ मोबाइल फोन से खड़का दिया करते हैं सारे के सारे। एक बात तो है यार, एक लैंडलाइन के आसपास कितनी रौनक रहा करती थी, और लैंडलाइन होता भी उस कमरे में था जहां सब बैठते थे। घर में कलेश भी इस चक्कर में कम हुआ करते थे, क्योंकि जहां सब बैठे हैं वहां आप गॉसिप भी तो नहीं कर सकते ना फोन पे किसी और के साथ। और तभी तो ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली दो घंटियां पकड़ में आ जाया करती थी। हाँ, अगर आपके पास भी लैंडलाइन से रिलेटेड ऐसे कोई किस्से हैं तो डीएम करो और माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची इट्स हॉट।
7: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
8: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
9: आएंगे दीदी।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6
12: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: मोहब्बत मूवी से ये गाना इज अ मल्टी सिंगर सॉन्ग जहाँ पर वी कैन गेट टू लिसन टू लता मंगेशकर जी, उदित नारायण, उद्भव, मनोहर शेट्टी. एंड ये जो गाना है ना, ये वाकई में बहुत सही बात कहता है कि यार आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है. कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है, क्योंकि यार प्यार की खास बात होती है, आपको कब हो जाता है आपको खुद नहीं पता होता है, क्योंकि लोग तो आपको एक इंसान के नाम पे छेड़ रहे होते हैं और आप कह रहे होते हैं अरे नहीं नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, अनटिल यू कम अक्रॉस दैट वन डे इन योर लाइफ व्हेन यू रियलाइज कि हाँ यार इस इंसान को देखकर कुछ कुछ तो हो रहा है. अभी क्या हो रहा है उसको समझने में भी टाइम लग जाता है.
1: सारा जमाना सारा का दीवाना.
2: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
0: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. आना बेरे यारा, मान ना मान करो गानों की पहचान लेकर आ गई हूँ मैं. तो दो गाने जो आज मिक्स करके आपके लिए चलाने हैं और आपको पहचानना है कि ये दो गाने कौन से हैं, वो है कुछ यूं.

बस अब आपको एक काम करना है, डीएम करना है ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, और बता देना है कि ये दोनों गाने कौन से हैं। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: आमिर खान इतनी सारी फिल्में और हर फिल्म में एक अलग फिजिक. What is the ultimate fitness tip?
3: I know everyone says this, but I can't stress how important it is to be regular in your workout. And along with that, for the best results, you need to have a very balanced and healthy diet. आमतौर पे लोग high protein diet करते हैं. You know, that's not healthy. The body needs proteins, but also needs carbohydrates. It needs fat. It needs everything. So we must have a balanced diet and a healthy diet and rest. You have to sleep well. You have to rest well.
2: Sleep well? Oh ho ho ho. फिर तो फिट होना मुश्किल है आमिर खान. आप सुन रहे हैं मिर्ची. It's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना.
5: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
6: कैसे रुक सकता है?
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
7: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: सर मैंने IIM में जाने के लिए बहुत ट्राई किया, 2 साल कोचिंग भी करी, फिर भी नहीं हो पा रहा, क्या करूं?
1: अरे तू ये सब मत कर, तू गेट नंबर 2 से जा, वो खुला ही होता है और मैं वहीं से जाता हूँ।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट
4: मिर्ची घड़ी में बजने वाले हैं 3।
5: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आपको वो स्कूल में जो हम 3D वाले शार्पनर्स यूज किया करते थे याद है?
2: नब्बे की गप्पे।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और क्या अजीब बात है यार, आज हमारे हाथ में भी एक चीज होती है जिसको कि हम देखते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं और उसका कंटेंट जो है वो बदलता चला जाता है। रील पे रील बदलती चली जाती है और हम उसे स्क्रॉल पे स्क्रॉल करते चले जाते हैं। लेकिन स्कूल के टाइम पर भी हमारे हाथ में एक ऐसी ही चीज हुआ करती थी जिसमें ऑफकोर्स रील पे रील नहीं बदला करती थी लेकिन पिक्चर पे पिक्चर जरूर बदल जाया करती थी, और वो था हमारा एक छोटू सा शार्पनर जो कि 3D शार्पनर हुआ करता था और उसमें एक पिक्चर 3 डायमेंशन में हमको नजर आया करती थी और जैसे जैसे हम उसे मूव किया करते थे वो पिक्चर चेंज होती चली जाती थी और हमें लगता था कि वाह क्या जादू है, क्या एक्साइटमेंट लेवल हुआ करता था यार इस छोटी सी चीज का। आज हम बड़ी बड़ी रील्स देखकर भी इतना ज्यादा खुश नहीं होते, इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते, ऐसा कोई डोपामिन के हार्मोन्स नहीं निकल के आ रहे होते। लेकिन जब हम उस एक शार्पनर को देखा करते थे तो हमें लगता था कि वाह दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है यार, क्या चीज बना दी है और क्या क्यूट सी चीज हुआ करती थी यार ये। मैं बड़ी एक्साइटेड रहती थी अपने उस शार्पनर को लेकर। हाँ, मैं ना ही उसे डेली स्कूल ले जाया करती थी और ना ही मैं उसे बहुत इस्तेमाल किया करती थी, क्योंकि क्या था ना कि डर था चोरी हो गया तो। आजकल तो सभी बच्चों के पास सब कुछ होता है, लेकिन तब इस बात की तसल्ली कर लिया करते थे कि यार एक के पास कुछ है और दूसरे के पास कुछ नहीं है तो इट्स ओके, बिकॉज़ दैट इज लाइफ। आजकल तो कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया कि उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है, और पेरेंट्स इसको अवेलेबल करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं, दिस कम्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉइंट। आपको पता है मेरे पास ना ग्रीन कलर का एक शार्पनर था जिसके आगे तो एक ब्रश लगा हुआ था और पीछे एक इरेजर लगा हुआ था और बीच वाला पार्ट वॉज द शार्पनर और उस पर बनी हुई थी रेसिंग कार्स। ओए होए, 3 रेसिंग कार्स एक शार्पनर के अंदर। जैसे जैसे उसकी मैं बदलती जाऊं डायरेक्शन वैसे वैसे गाड़ियां भी बदलती जाती थी। वो अलग बात है कि बड़े होने के बाद एक गाड़ी की EMI ही चुकता हो जाए उसी में इंसान खुश हो जाएगा, 3 गाड़ियां तो दूर की बात है। बॉस, यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Ya bana. Burga, burga. La virba la burga.
1: Mirci, burga. हेलो,
2: इज दैट वर्षा?
1: हु इज दैट?
2: वर्षा, मैं निखिल बोल रहा हूँ, एक्चुअली मुंबई से मैं बोल रहा हूँ। हमारा एक रियलिटी शो शुरू होने वाला है जिसका नाम है धारे गमा पा।
1: क्या नाम बताया आपने?
2: धारे गमा पा। हमारा ये रियलिटी शो है, मुझे कहीं से पता चला कि आप अच्छी सिंगिंग कर लेती हैं, अच्छा गाना गा लेती हैं, और किसी ने मुझे बताया कि आप हिमेश रेशमिया को भी कॉपी कर सकती हैं, उनके गाने आपको पसंद हैं।
1: थोड़ा बहुत गा लेती
2: हैं। ओके, मैं आपको टेलीफोन पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर धारे गमा पा में आप शॉर्टलिस्टेड हो गई तो हम आपको फिर इस रियलिटी शो में पूरा हिंदुस्तान देखेगा, आपको गाने का मौका देंगे।
1: बट ये रिकॉर्डिंग आप फोन पर ही करेंगे?
2: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझिए आप। आपको जो भी गाना देंगे आप उसमें हिमेश रेशमिया का जो आपने मशहूर सुना होगा अब तक, ओ राइट, वो जो एक उनका सुर है,
1: लेकिन उनकी कॉपी करनी पड़ेगी।
2: नहीं नहीं नहीं, नॉट एग्जैक्टली कॉपी, आप कोशिश करिएगा कि हिमेश रेशमिया स्टाइल में गाना आपने सुना ही होगा। गाना है आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। गाने की शुरुआत में, गाने के बीच में, अंतरा जब खत्म हो, मुखड़ा जब शुरू हुआ, आप ऊ ऊ लगाएंगी। स्टार्ट वर्षा। वर्षा, वन सेकेंड, देखिए ऊ।

0: वही वाली ऊँच चाहिए जो पहले करी थी आपने, बहुत अच्छी करी है।
1: देखिए इससे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा।
0: अरे गड़बड़ आपको क्या प्रॉब्लम है, हमारा शो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, धारेगा में पानी सर। स्टार्ट चाहिए, ऊँच चाहिए। तेरा तेरा तेरा सुरूर, एक्चुअली ये तेरा कसूर भी नहीं है
2: वर्षा, ये किसी का कसूर नहीं होता, ये कसूर उनका होता है जो लोग मुझे नंबर देते हैं और ये कहते हैं कि उनका मुर्गा बनाया जाए। वर्षा
0: अच्छी करिए।
1: देखिए इससे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा।
0: अरे गड़बड़ आपको क्या प्रॉब्लम है, हमारा शो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, धारेगा में पानी सर। स्टार्ट। चाहिए चाहिए। तेरा तेरा तेरा सुरूर, एक्चुअली ये तेरा कसूर भी नहीं है
2: वर्षा, ये किसी का कसूर नहीं होता।

0: कुकड़ू
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: पटाक
3: जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी जा बेटा जा
4: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने
1: हिट गाने कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
6: FM मिर्ची वन इट्स हॉट

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear cousins ke ikattha hone wali raat.
2: Yaadon ko chitthi.
1: अब तुम लीप ईयर इनटू टू में आती हो, यानी कि चार चार नहीं आठ आठ सालों में, जब हम सारे कजिन्स को एक अरसे बाद मौका मिलता है इकट्ठे होकर गप्पे मारने का। देयर वाज अ टाइम जब तुम एक ही साल में दो बार आती थी, गर्मियों की छुट्टियों में फिर सर्दियों की छुट्टियों में। अब तो छुट्टियां ही नहीं आती यार, तो तुमने भी आना बंद कर दिया है। ये वो रातें हुआ करती थी जब हम पूरी रात जागा करते थे, एक दूसरे की टांग खींचना, गप्पे लड़ाना, एक ही रजाई में बैठकर मूंगफलियां खाना और गेम्स खेलना, और फिर आधी रात को जब भूख लगे ना तो दबे पैर किचन में जाना और चाय और मैगी बनाना। हाय, कुछ रातें तो ऐसी भी थी जब मैं ना अपने सबसे क्लोज और फेवरेट कजन के साथ बैठकर बातें किया करती थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ अपने दिल के छाले फोड़ा करते थे। रात खत्म हो जाती थी लेकिन हमारी बातें खत्म नहीं होती थी। जाने कितने सनराइजेस देखे हमने तुम्हारी कंपनी में कजिन्स के इकट्ठा होने वाली रात। एक दूसरे के साथ बैठकर हार्ट टू हार्ट टॉक्स करी है। स्कूल की पढ़ाई, नया क्रश और टीचर्स का दिया गया ट्रॉमा डिस्कस किया करते थे हम। तब जिंदगी के बारे में चीजें डिस्कस करते करते ये तो सोचा ही नहीं कि आज जो इतनी सीरियसली डिस्कस कर रहे हैं ना, वो तो कुछ भी नहीं है। और तब ये जाना भी नहीं कि आने वाले टाइम में जो बड़ी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने लायक होंगी, तब वक्त का पहिया इतनी तेजी से घूमेगा कि हम और हमारे दिल के करीब वो कजिन्स इतने दूर या मसरूफ होंगे कि जब असल में उनकी जरूरत पड़ेगी ना दिल हल्का करके बातें करने के लिए, तो ये एग्जैक्टली वही टाइम होगा जब वो हमें मिल ही नहीं पाएंगे। वक्त के पहिए में अटक कर उसी वक्त को तरसती हुई जब हमारे पास भी तुमसे मिलने का वक्त हुआ करता था। तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आना तुम मेरे गले, हे कभी आना तुम मेरे गले,
1: कभी आना तुम अपनी गली,
0: कभी आना तुम मेरी गली।
2: मिर्ची स्टोरीज
3: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
4: अरे चाटा क्यों मारा?
5: चला पैसे निकाल।
4: किस बात के पैसे?
5: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
6: क्या बोला तूने?
4: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
7: क्या जोक मारा भाई?
4: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
5: कौन सा?
4: चाटा लगा
5: भाई लगा।
8: मिर्ची, इट्स हॉट।
9: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
10: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
11: बहुत कुछ होगा।
12: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
13: 89.6
14: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: कुमार सानू की आवाज में 1942 अ लव स्टोरी से ये गाना इज कैसेट के साइड बी का चौथा गाना.
2: मिर्ची 90s कैसेट.
1: कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो ये जो गाना है ना, आई फील दिस इज द एपिटमी ऑफ लव. क्योंकि इस गाने में जो बात कही गई है ना, एक्चुअली सच्चा प्यार मुझे यही लगता है. मतलब रियल केमिस्ट्री इज इन द साइलेंस, नॉट इन द कॉन्वर्सेशन. कहते हैं कि कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो, क्या कहना है क्या सुनना है, मुझको पता है तुमको पता है, समय का ये पल थम सा गया है और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ बस एक तुम हो, तो कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो. एंड दो लोगों के बीच में जब एक गहरी सी दोस्ती हो जाती है और वो दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो चुकी होती है, एक समझ होती है एक दूसरे के लिए दो लोगों के बीच में, उस टाइम पर बोलने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है उन दोनों लोगों के बीच में, कॉन्वर्सेशन की गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि इतनी सारी बातें जो है ना वो बिन कहे ही अगला इंसान समझ जाता है, कभी आंखों ही आंखों में, कभी सिचुएशन को समझते हुए या फिर कभी इशारों में. एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट इन अ रिलेशनशिप इज कॉन्वर्सेशंस तो होती है ऑफ कोर्स, लेकिन एट अ सर्टेन पॉइंट वो कॉन्वर्सेशंस करते करते करते करते इंसान एक दूसरे को इतना समझने लग जाता है कि फिर वो जो साइलेंस होता है ना वो बड़ा खूबसूरत होता है. बिकॉज दोनों को ये पता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ इस साइलेंस को शेयर कर सकते हैं एंड दिस साइलेंस इज नॉट गोइंग टू बी अनकम्फर्टेबल. एंड आई रियली रियली फील कि जब एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है, एक सर्टेन लेवल पर पहुंच जाता है और तब जब ये साइलेंस शेयर हो रहा होता है विच इज नॉट अनकम्फर्टेबल, दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप. क्या आपने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है? डीएम करके बताना ना मुझे ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा. अभी के लिए यही गाना आपके लिए लगाती भी जा रही हूँ और आपसे कहती हूँ हम है रही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते. और बाकी यहाँ के अलावा मुझे तो आप ढूंढ ही सकते हैं ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज अगेन मिर्ची सारा. चलो जी, आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखो एंड स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची 'cause इट्स हॉट.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: जॉन अब्राहम, आपके हिसाब से द टॉप फिट बॉयज ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री।
3: फर्स्ट रेफरेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी वरुण धवन एंड आई टेल यू व्हाई, क्योंकि वरुण का जो फिजिक है वो बहुत ही प्रोपोर्शनेट है, उसके लेग्स बहुत ही स्ट्रांग है, टाइगर श्रॉफ फैंटास्टिक बॉडी, रणवीर सिंह एक्सट्रीमली फिट, एंड ऑफ कोर्स ऋतिक रोशन। ऑनेस्टली अमंगस्ट ऑल दीस इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आई थिंक सबसे फिटेस्ट इंसान हमारे इंडस्ट्री में इज अक्षय कुमार, एंड आई मीन होलिस्टिकली फिट। ही कैन सर्वाइव एनीवेयर। अगर आप उसको माउंट एवरेस्ट पे छोड़ दो, अगर आप उसको रेगिस्तान में छोड़ दो, अक्षय कुमार विल बी द ओनली गाय हु विल सर्वाइव एंड कम आउट।
2: छोड़ने की जरूरत ही नहीं है जॉन अब्राहम। अक्षय कुमार इज द ओनली पर्सन इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो बाय चॉइस इन जगहों पर जाएंगे। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
5: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
1: बार बार।
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6
5: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
0: मैं एक लड़के को एक महीने से डेट कर रही थी, पर मुझे आज पता चला कि वो मैरिड है, क्या करूं?
1: अरे अच्छा है ना, एक बार जो उसने कमिटमेंट कर लिया तो दूसरी बार भी कर ही लेगा ना।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

0: अरे शरारत नहीं, इस गर्मी में हमें यह सिखाओ कि शेडेड पार्किंग पब्लिक प्लेस पे कैसे ढूंढते हैं। मस्त मौला गौरव 89.6 G1 पे गर्मी का आलम शाम के 4:04 पर भी दोपहर 12:00 वाला है।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: एक तरफ गर्मी अपना पारा बढ़ा रही है और हमारे दिमाग के एकदम सारे पानी को चूस रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए पानी में पानी पीते रहे। यही मस्त मौला गौरव आपसे रिक्वेस्ट करेगा। FDI मोमेंटम 2025 के मुकाबले किस तरह इस साल है ये बताएंगे। ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने व्हीकल नंबर प्लेट जो नए नए आ रहे हैं उनका ऑक्शन कहां करना है ये बता दिया है। कतर फाउंडेशन बहुत सारी समर एक्टिविटीज लेकर आया एजुकेशन सिटी में। इसके अलावा अगर आप रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं कि चलो घर नहीं गए इस बार, अगल बगल कहीं चलते हैं, तो कैसे कतर से एग्जिट पॉइंट पर आपको व्हीकल परमिट लेनी है ये मस्त मौला गौरव बताएगा। फ्यूल प्राइसेस कल ही मैंने बता दिए थे। इन सब के बीच कौन बन गया है अब प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल फॉर एशिया ये भी बताएंगे। सब कुछ यही पता लगेगा, बस अपने कान खोल लो, वॉल्यूम बढ़ा लो, मिर्ची पे आ गया मस्त मौला गौरव। कतर से लेकर दुनिया भर की बातों को यही करेंगे और कॉन्टेस्ट भी खेलेंगे। तब तक लिए मिर्ची आपके साथ और लगातार एंटरटेनमेंट की बारिश जारी है। फिलहाल सूरज चाचू थोड़ी ब्राइटनेस कम कर दो, लग रहा है आपको समझ नहीं आ रहा हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही। मिर्ची शॉर्ट

0: Pepe Mirci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La viva la burga. Mirci, burga.
2: हेलो
3: हेलो भाई राज, एक ये बात बता भाई, तू तेरी इनकम कितनी है? है
2: बोल, कौन रहा है?
3: नहीं मुझे ये बता भाई, कितनी तनख्वाह मिलती है तुझे एक महीने में, कितने पैसे कमाते? तमीज से ही बात कर रहा हूँ मैं, मेरी मेहनत में पानी फेर दिया। मैं तुम्हें बताना चाह, तेरी जेब कटी थी कुछ दिन पहले, तेरा वॉलेट गायब हुआ है यहाँ से?
2: हाँ कटी, कौन बोल रहा है?
3: मैंने काटी है तेरी जेब, 17.5 रुपए लेके घूम रहा तू पर्स में मेरी मेहनत की, तूने ऐसी
2: तूने जेब काटी,
3: तेरा नंबर मुझे इसमें पड़ा मिला, तू रखता क्यों नहीं इसमें पैसे?
2: तो मेरे पैन कार्ड और कुछ क्रेडिट कार्ड होंगे भाई।
3: हाँ तो मैं क्या करूँ उसका,
2: जरा वापस दे दो यार।
3: पैन कार्ड दे दूँ मैं, तेरा क्रेडिट कार्ड दे दूँ, और जो मेरी मैंने तो पानी फेरा 17.5 रुपए, शर्म नहीं आती पर्स में? नहीं ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरी मेहनत का क्या होगा, मेरी मेहनत का क्या होगा, वो कौन देखेगा आके?
2: 17.5 रुपए
3: कितने पैसे चाहिए? 2000 रुपए से कम आज तक जेब नहीं काटी मैंने। एक चीज कर दो मेरे लिए, मैं सारा पैसा तुम्हारा वापस कर दूंगा। करो मेरे साथ।
2: क्या करूं बताओ?
3: मेरे साथ बोलो कुकड़ो कु।
2: सॉरी
3: भाई साहब, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका पर्स किसी ने मारा था, मैंने नहीं मारा। और आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया यार, मुझे बड़ा तरस आया आप। अब मेरे साथ जरा प्यार से बोल दीजिए आप कुकड़ो कु।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद, इरशाद

0: IP payments ka wah tarika. With IP, send money starting from just QAR 5. And yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IP app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IP, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
2: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
3: दोनों मिलेगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन।
4: 89.6 FM, मिर्ची वन।
5: It's hot.
6: मिर्ची।

जी मस्तमाला गौरव है आपके साथ। और वर्ल्ड कप में बहुत कुछ हो गया है खास। फ्रांस के एम्बापे ने भैया इतिहास रच दिया है, इतना जरूर कहूंगा, लड़के ने कमाल कर दिया है। यस, वर्ल्ड कप में अगर हम नॉकआउट मैचेस की बात करें तो नॉकआउट मैचेस में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी अब एम्बापे हैं। यस, हम आपको बता दें किलियन एम्बापे जो हैं उन्होंने सबसे ज्यादा गोल किए हैं वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचेस में। और कल भाई फ्रांस ने स्वीडन की टीम को 3-0 से हरा दिया, राउंड ऑफ 16 में एंट्री कर गए। और उन्होंने कल के मैच में 2 गोल लगाकर अब नॉकआउट में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी का खिताब 10 अपने नाम कर लिया है। हालांकि ही इज यू नो एज इक्वल टू मेसी नाउ, दोनों के वर्ल्ड कप में अब 18 गोल्स हैं। और अगर ऐसा होता है तो कुल मिलाकर एक नया फुटबॉल का लेजेंड मिल रहा है, अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा। इन सब के बीच अगर हम फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो कल एक बार फिर से हम कहेंगे कमाल कर दिया नॉर्वे की टीम ने। और ये बता दिया कि नॉर्वे की टीम अब फुटबॉल में भाई उनका कोई सामना नहीं है। यस, आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराया, वही मेक्सिको ने इक्वाडोर की टीम को 2-0 से, और देर रात फ्रांस ने भी स्वीडन को 3-0 से हरा दिया। आज के मैच की बात करें, इंग्लैंड एंड डीआर कांगो का मैच 7:00 से, और फिर देर रात 3:00 आपको यूएसए और बोस्निया का मैच मिलने वाला है। तैयार हो जाइए, 1 से 1 मैचेस आएंगे और धीरे धीरे अब हम राउंड ऑफ 16 की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि ये इतना बेहतरीन होने वाला है कि हर दिन के साथ कुछ फैंस का दिल टूटेगा और कुछ कहेंगे कोई नहीं नेक्स्ट टाइम। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: कार की टाइम टू टाइम सर्विसिंग करा लेते हैं, मोबाइल के सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम कर लेते हैं, लेकिन जब बात अपनी सेहत की आती है तो अक्सर बोल देते हैं, अरे हम बिल्कुल ठीक है यार, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मेडिकल की लाइन में कहा जाता है प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। इसी सोच के साथ कतर की एक नई मुहिम PHCC की अवेयरनेस कैंपेन जो शुरू की गई है, जिसमें अगर आप एक पेशेंट हैं तो आपको एनुअल हेल्थ चेकअप के लिए एनकरेज किया जा रहा है। यस, रूटीन चेकअप से कैसे आप अपने आप को फिट रखते हैं ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। आपको याद होगा आपने शुरुआती स्टेज में ही अपने इसी रूटीन चेकअप की वजह से कई सारी बीमारियों को दूर भगाया और इससे ट्रीटमेंट भी काफी आसान होता है। तो प्लीज अगर आपकी एज 18 साल या उससे ज्यादा है और PHCC के एलिजिबल पेशेंट अगर आप हैं तो आप 107 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वॉक इन फैसिलिटी भी आपके लिए अवेलेबल की जा रही है। लेकिन मेरा मानना है कि हेल्थ चेकअप को लेकर ना हमें जरा सी भी लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, एक स्मार्ट हैबिट बनानी है। जब टाइम टू टाइम रूटीन चेकअप कराने की बारी आए करा लेना है, तो खुद के लिए भी वक्त निकालिए ये कहकर कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, क्योंकि यहां हमारी शायद बहुत सारे लोगों की कोई देखभाल करने वाला नहीं है तो हम अक्सर हल्के में ले लेते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं लेना है। PHCC फैमिली की तरह हमें याद दिलाता है और हमें इस बात को समझना है कि हमारी सेहत ही हमारे घर वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहां हैं तो वहां सब ठीक है। अगर हम ये सोच के साथ आए हैं तो हमें अपने आप को ठीक रखना भी है, इस उम्मीद में कि आप अपना जितना जल्दी हो सके हेल्थ चेकअप जरूर कराएंगे और अगले अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। मसाला भरवा आगे बढ़ता है 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची इट्स हॉट।
7: दोस्ती कैसे सुले मैडम? No sorry, no thank you.
8: भाई साहब sorry and thank you. हमें दोस्ती नहीं entertainment चाहिए।
9: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ entertainment खूब मिलेगा।
10: खूब मिलेगा। मिलेगा।
11: कतर का number one radio station. 89.6
12: FM मिर्ची one. It's hot.

0: देखिए देव नेगी के आवाज में ये गाना स्वीट हार्ट जो है ये केदारनाथ मूवी से था, मुझे याद है। शादी की दुल्हन के बगल में बैठी सहेली के बारे में बात हो रही है, लेकिन लड़कों के दूल्हे के दोस्त कैसे होते हैं? उधड़े बालों में फिर से गर्मी में कोट पहन के जो बैठा पसीने में मेरा यार है। अरे हम लड़कों के दोस्त ऐसे ही होते हैं। हमारी शादी गर्मी में हो जाए तो वो बेचारे सूट पहन के नाचते हैं, भले ही अंदर पसीने पसीने तरतर पानी हो जाए। फिलहाल जबरदस्त गर्मी है।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: अब आप टेम्परेचर देखिए, 44 डिग्री सेल्सियस मजाक चल रहा है। सूरज चाचू की ब्राइटनेस किसी ने तेज कर दी, नीचे करने का नाम नहीं कर रहे, और दिन का मिनिमम टेम्परेचर भी 32 के आसपास हो रहा है। मैं कह रहा हूँ सूरज चाचू इतना गैप ही क्यों कर रहे हो, बगल बगल में रख दो ना, रात तक 40 रखो, है नहीं तो गर्मी की आदत पड़वा दी है। हमारा तो फिर भी ठीक है। यूरोप वाले सड़क पे लगे शावर में नहा ले रहे हैं, स्विमिंग पूल में कूद जा रहे किसी के भी, और तो और वहां पर जो खूबसूरत यू नो वहां पे स्क्वायर्स के पास जो एक तरह से कह सकते हैं वो शावर लगे होते हैं, उनमें वो कूद कूद के नहाने लग रहे, इतनी गर्मी लग रही 40 डिग्री में। हम लोग 50 डिग्री में टनाटन हबी भी, वाह गर्मा गर्म करक है जी। यही खूबसूरती हमारे कदर में। वेल 43 डिग्री दिन का मैक्सिमम तापमान पहुंचा, वहीं मिनिमम अराउंड 32 आएगा। बड़ी बात यह कि हवाओं का रफ्तार लगातार बना हुआ है 18 किलोमीटर के आसपास, ह्यूमिडिटी 9% पर। पानी पीते रहिए, गर्मी को कोसते रहिए, एक दिन तो सूरज चाचू को दया आएगी, अपना ब्राइटनेस कम कर देंगे रिमोट से मिर्ची शॉट।
2: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: मिलिंद सोमन, आपकी इतनी फिट बॉडी है, क्या आपने कभी इस बॉडी का फायदा उठाया है? आ जा, दिखाता हूँ तुझे।

0: करेगा मेरे साथ?
1: कभी झगड़ा नहीं किया, और टफ फिजिक का मतलब ये नहीं कि झगड़ा करके उसको जस्टिफाई करो. गुड फॉर शो व्हिच इज गुड फॉर माय प्रोफेशन एंड आई वर्क अ लॉट. I work very hard, so I need that fitness level.
0: And I need your motivation level, Milind Soman. Aap sun rahe hain Mirchi, It's Hot.
2: Bollywood Bol Dal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bol Dal.
3: Only on Mirchi, It's Hot.
4: Hello, Sharps. Our product is phenomenal, one of a kind, but still profit nahi ho raha hai. Maine Baba Ji se advice li to kehte hain.
5: Office ke toilet mein toilet paper white nahi, yellow lagao. Profit aayega.
4: Relative se advice slow to kehte hain.
6: Kaam ko time do, 25 ghante kaam karo, dark circles honge to future bright hoga.
4: Isiliye main aapke paas aaya hu promotion fund ke liye, jiske liye aap 50% equity le sakte ho.
7: Bhai kya kar raha hai tu? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है. गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट.
8: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची. टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ. कॉल नाउ 7070 7687.

0: Michelle Blaine?
1: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मैं अपने पौधे को पानी दे देकर थक गया हूँ, पर पौधा बड़ा ही नहीं हो रहा, क्या करूँ?
1: अरे गोचू, तो तेरे को किसने बोला था कि आर्टिफिशियल पौधा ले?
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हल्का ढास।
3: ऐसे ही लाइव 89.4

0: मामाशुकार ये बाना सुना के कौन आ गया जी? मस्त मौला गौरव, मस्त मौला गौरव। देखिए माशुका भी मस्त है, मस्त मौला गौरव भी मस्त है। हाँ जी आ गए। मिर्ची घड़ी का टाइम बता दें, शाम के 5:04।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: और इस गर्मी की छुट्टियों में अगर आप अपने होम कंट्री नहीं गए हैं तो कतर में क्या एक्टिविटी में आपके बच्चे जा सकते हैं, हम बताते हैं।
2: #974974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: यहाँ मस्त मौला गौरव आपको बताना चाहेगा, कतर फाउंडेशन डाइवर्स रेंज ऑफ कैंप्स लेकर आया, वर्कशॉप है, क्लासेस है, एक्टिविटीज है, जो की आपके बच्चों को एक यूनिक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं फॉर लर्निंग, कनेक्शन एंड पर्सनल ग्रोथ। एंड ये सब कुछ होगा एजुकेशन सिटी ऐप के जरिए। वहां पर आपको जाकर रजिस्टर करना है, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्लान चूज कीजिए अपने बच्चों को जो मजा आता है जिस चीज में। एंड एजुकेशन सिटी ऐप या उनकी वेबसाइट पर जाकर आप एजुकेशन सिटी के इस समर कैंप में जो भी चीजें हो रही हैं, चाहे वो आपके बच्चे की लीडरशिप स्किल्स को बढ़ाना हो, उनके लिए कुछ क्रिएटिव कराना हो, वो कैसे स्पोर्ट्स के जरिए एक्टिव रहे, या फिर उनके अंदर एक नया पैशन कैसे डेवलप हो, ये सब कुछ एजुकेशन सिटी के इस समर कैंप का हिस्सा बनेगा। जुलाई अगस्त अभी भी बचा हुआ है दोस्तों। कतर फाउंडेशन जब ऑफर कर रहा है इतनी सारी अलग अलग एक्टिविटीज, तो मुझे लगता है आपके बच्चों के लिए एक बेहतरीन प्रोग्राम तैयार है। और ये वो टाइम होता है जब बच्चों को वाकई में एक्टिव बनाए रखने के लिए हमें उनके लिए जरूर एक्टिविटी चुननी चाहिए, वरना उन्हें तो ये पता ही नहीं लगेगा कि 70 यार्ड्स का ग्राउंड भी होता है, क्योंकि उनके लिए तो सारी दुनिया 7 इंच के मोबाइल फोन में ही है। 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।
1: मिर्ची फ्रेश माल।
2: जब हर बीट में हो तड़का तब बनती है चटनी।

इस गाने को आवाज दी है नीलकमल सिंह और ममता शर्मा ने। म्यूजिक दिया है आदित्य देव और नीलकमल सिंह ने और लिरिक्स लिखे हैं धीरज बबुआन ने। धमाल फोर से सुनते रहिए चटनी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: Mirci. Iskrabana, uskrabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La vizba la burga. Mirci, burga.
1: हेलो
2: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपका?
1: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
2: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर, जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज़ सुने हैं हम, और बहुत अच्छा लगा है आवाज़ सुन के। आप जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धुलाए भी नहीं है।
1: क्या तुझे पागल लगता
2: नहीं वो मैडम, हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
1: क्या कहना है
2: मैडम? आई लव यू। हम आपको देख के इतना रिक्शा वाले मेरी बात है। चारू फोन मत रखना। हेलो, चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू, बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा
1: मैंने सोचा यार रिक्शा
2: वाला, तुम आओ कभी मिलो मुझे, तुमसे रिक्शा ही चलवाऊंगी। नहीं, रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot, it's hot। इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस, और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे। ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

आप चाहे कितना भी जान जाएं, लेकिन ब्राउन सीरीज में क्या चल रहा है ये हम ही आपको बताएंगे। यस मस्त मौला गौरव आपके साथ है, और इस वक्त जो हमारी सिटी ऑफ जॉय है ना, उसकी सांसें थमी हुई है, क्योंकि कोलकाता की खूबसूरत गलियों में इस वक्त खून की होली खेली जा रही है। और ये होली कौन खेल रहा है, वो कौन सा बेरहम किलर है, इसी का पता लगाने आ चुकी है करिश्मा कपूर एज ऑफिसर ब्राउन। एंड आइकॉनिक करिश्मा कपूर जब कमबैक कर रही है तो इतने दमदार तरीके से कि एकदम कड़क नो बकवास वाली यू नो पुलिस कॉप के रूप में। एंड आई एम श्योर ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर ब्राउन का लेटेस्ट एपिसोड आप देखने के बाद समझ जाओगे कि एक एपिसोड देखकर काम नहीं चलेगा, इसे पूरा ही कंप्लीट करना है। तो Z5 पर ये स्ट्रीम हो रहा है, और अगर अभी तक आपने Z5 स्ट्रीमिंग ऐप का सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो बस सस्पेंस से बहुत दूर हैं आप। ऐसा सस्पेंस जो आपके गूज बम्स ला देगा, रोंगटे खड़े कर देगा। एंड अगला शिकार कौन होने वाला है, क्या उससे करिश्मा कपूर बचा पाएगी या फिर ये बेरहम किलर एक और हत्या करेगा, इसके लिए तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा और ब्राउन का लेटेस्ट एपिसोड देखना होगा। एंड हम पहले ही वार्निंग दे रहे हैं, अकेले मत देखना वरना डर जाएंगे। सच में यार इतना भयंकर सस्पेंस और थ्रिल भरा हुआ है ना कि मैं कहता हूं इसे आप जितनी जल्दी हो सके देखो, और आप तब कहोगे यार गौरव ने सही बता दिया, टाइम पास अच्छा हो गया। फिलहाल करिश्मा कपूर के दमदार रोल देखने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना है Z5 का, एंड देखनी है वो सीरीज जिसका नाम है ब्राउन। 89.6 मिर्ची 1 पर। वैसे तो हम कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय, रसगुल्ला, मिष्टी दही के लिए जानते हैं, लेकिन लेना होगा और ब्राउन का लेटेस्ट एपिसोड देखना होगा। एंड हम पहले ही वार्निंग दे रहे हैं, अकेले मत देखना वरना डर जाएंगे। सच में यार इतना भयंकर सस्पेंस और थ्रिल भरा हुआ है ना कि मैं कहता हूं इसे आप जितनी जल्दी हो सके देखो, और आप तब कहोगे यार गौरव ने सही बता दिया, टाइम पास अच्छा हो गया। फिलहाल करिश्मा कपूर के दमदार रोल देखने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना है Z5 का, एंड देखनी है वो सीरीज जिसका नाम है ब्राउन। 89.6 मिनट।

0: में ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसको एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची, इट्स हॉट।
7: अर्ज किया है
8: इरशाद इरशाद

0: IB Payments ka wah tarika. With IB, send money starting from just QAR 5 and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IB app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IB, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
2: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है,
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: इंडिया जाने वालों अपना कान जरा ध्यान से सुन के लगा लो। यहाँ पर मस्त मौला गौरव आपको बताना चाहता है कि कतर में हमारे इंडियन एम्बेसी ने कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की है और ये है एयर सुविधा सेल्फ डिक्लेरेशन को मैंडेटरी बनाने के बारे में। यस, इंडियन एम्बेसी इन दोहा ने सभी उस इंटरनेशनल ट्रेवलर को कहा है जो इंडिया के लिए उड़ान भर रहे हैं कि आपको इंडिया पहुंचने से 24 घंटे पहले एयर सुविधा का एक फॉर्म भी भरना है। यस, ऑल इंटरनेशनल पैसेंजर्स अराइविंग इन इंडिया, इन्हें मैंडेटरी ऑनलाइन हेल्थ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है और अपनी जर्नी के 24 घंटे पहले इसे सबमिट कर देना है। इस बात को याद रखिए, एम्बेसी ने जोर देकर कहा है कि यह बेसिकली आपके लिए क्या करेगा, यह आपके लिए फास्टर, सीमलेस एंड कॉन्टैक्टलेस हेल्थ स्क्रीनिंग एंड इमिग्रेशन क्लियरेंस कराएगा। यानी कि अगर आप ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरते हैं अपने हेल्थ से रिलेटेड, तो आपके पास मौका होगा बिना किसी के टच किए आराम से सीमलेस तरीके से आप इंडिया में इमिग्रेशन क्लियरेंस कर लेंगे, हेल्थ स्क्रीनिंग भी हो जाएगी और यह सब कुछ इबोला को ध्यान में रखते हुए करा जा रहा है। यस, इबोला जो कि अफ्रीका से एक वायरस आया है उसको ध्यान में रखते हुए किया गया। एम्बेसी ने यह भी कहा है कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दीजिएगा अपने ट्रेवल हिस्ट्री की, पिछले 21 दिनों में अगर आप कहीं गए हैं आए हैं तो भी बताइएगा, और किसी भी तरह का सिम्टम या एक्सपोजर लगता है आपको, किसी तरह से हुआ है, आपकी हेल्थ पे कोई असर है, तो वो भी जरूर क्लियर कीजिएगा। इंडियन एम्बेसी इन दोहा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर सारे करेक्ट तरीके बताए हैं और एयर सुविधा का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, airsuvidha.civileviation.gov.in। आई रिपीट, airsuvidha.civileviation.gov.in। एंड कहीं ना कहीं अगर आप ये फॉर्म भरते हैं तो आप सिर्फ अपने लिए भला नहीं करते हैं, आप दूसरों को भी बहुत सारी चीजों से बचाते हैं, इस बात को समझिए। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Ochanna di kuri, ochanna di kuri. Bollywood Boldal, Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: Govinda, आपका ultimate fitness tip कौन सा है?
3: मुझे ऐसा लगता है योग और प्राणायाम जो है इससे आपकी बॉडी जो है बहुत ही करेक्ट रहती है और आपको मतलब वो घबराहट नहीं होती है।
2: तो ये एडवाइस आप देंगे कंटेम्प्रेरी हीरोज को?
3: योग प्राणायाम तो करते ही होंगे वो लोग, मुझे ऐसा लगता है।
2: आपको क्या लगता है कौन कौन करता होगा? मैं आपको तीन नाम देती हूँ, इन तीनों में से बताइए। वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जॉन अब्राहम।
3: ये तीनों एक्टर्स ऐसे इन लोगों की मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी ज्यादा अच्छी है और पता नहीं कितने पैक निकले हुए हैं। उस जमाने में तो पूरी शाम में सब लोग हीरो लोग पैक ही लगाया करते थे, अब वो पैक उनके पेट पे आ गए। टेढ़ा मेढ़ा क्या नजर आ रहा है, ये पेट है इनका? ओहो अच्छा अच्छा, फाइन फाइन फाइन, वेरी गुड वेरी गुड।
2: फिटनेस का पता नहीं लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर पर 110 फॉर चीची। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: नहीं बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
5: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
6: कैसे रुक सकता है?
1: Qatar का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
1: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

ये सब गाने में ही है। कोई कह दे मुझसे आज से मेरी पूरी सैलरी तेरी हो गई, मजा आ जाए जिंदगी का। खैर पहली तारीख है, खुश तो आप भी होंगे, खुश हैं कि आज पहली तारीख है, सैलरी दिख रही है अपने वॉलेट में, सब कुछ अच्छा ही लगता है। लेकिन अगर घर भेजने के लिए रेट्स अच्छे चल रहे हैं तो उसमें भी ध्यान देना है। अगर राइट नाउ की बात करें, एक कतरी रियाल के बदले मिलने वाले इंडियन रुपीज 26.08, 26.08 रुपए। एक कतरी रियाल के बदले अगर हम श्रीलंकन रुपीज की बात करें 92.05, पाकिस्तानी रुपीज आपको 1 कतरी रियाल के बदले 76.88 मिलेंगे जनाब, यस 76.88 पाकिस्तानी रुपीज। वहीं तपाईँको नेपाली रुपीज का रेट छ दाजु 41.56 रेट है बहिनी। हाँ जी अगर दाई, अगर 41.56 रेट मिल रहा अच्छा रेट है, घर भेजेंगे राइट टाइम छ। अगर इसके बाद हम बांग्लादेशी टका बात करेगा बांधु दादा, 1 कतरी रियाल के बदले 33.97, तो 33.97 एकदम भालो देखो रेट, तो बस घर भेजो पैसा और खुशियाँ। हाँ जी आईपीआई के थ्रू, और कोशिश यही करो आईपीआई अगर डाउनलोड नहीं किया तो कर लो, क्योंकि बहुत सारे और एडवांटेज भी हैं। कैसे, जैसे आप डाउनलोड करोगे पता लग जाएगा, वोडाफोन माई बुक का सब्सक्रिप्शन हो गया, सारे गवर्नमेंट बिल्स आप एक साथ भर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। पहले डाउनलोड तो कर लो, फायदे उठाओगे बाद में। मिर्ची

0: अरे अगर आपका कद काफी ऊंचा लंबा नहीं भी है, अच्छे कर्मों से, अच्छे कर्म से यू कैन मेक योर नेम बिगर। इतनी अच्छी बातें करता हूँ मैं खुद की, कभी कभी पीठ थपथपाने का मन करता है। शाम के 6:05 का टाइम हो गया।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: आज के बच्चों के लिए तो मोबाइल की जो स्क्रीन है ना, वो उनका प्ले जोन है। एक हमारा दौर था, मोहल्ले की हर बिल्डिंग हमारा प्ले जोन होती थी। आई स्पाई से लेकर चेन चेन, विच कलर यू वांट, टिप्पी टिप्पी टॉप, सब खेला हमने। ये बच्चों से सब कुछ दूर हो गया, लेकिन उनके अंदर फिर से बहुत सारा प्यार जगा ये टॉयज के लिए, क्योंकि जो बच्चे इस बार घर नहीं जा पाए, DCC में आ चुका है कतर टॉय फेस्टिवल। यस, अब शुरुआत हो चुकी है। 31 जुलाई तक कतर टॉय फेस्टिवल का 4th edition चलेगा, एंड बच्चों के लिए इस बार भी कुछ कमाल के जोन है। अगर हम यूथ जोन की बात करें, पबजी मोबाइल, पॉपी प्ले टाइम, चैंपियंस लैंड ये बनाई गई है। वही बहुत सारे अरीना है जिसमें हॉट व्हील्स, पैकमैन भी है, और तो और बड़ी बात यह है कि फ्लिंटस्टोन्स, मिकी माउस, फैंसी लैंड सब कुछ है, डिज्नी प्रिंसेस, फ्रोजन, क्यूटी पाई लैंड, लीलो एंड स्टिच, पॉ पेट्रोल, वन ऑफ माय फेवरेट दीज डेज। कुल मिलाकर ये वो जोन है जो बच्चों के लिए बनाए गए हैं। जाइए एक बार तो मजा लेकर आइए, एंड थोड़े से, एंड मुझे लगता है बच्चों के लिए थोड़े से पैसे जेब ढीले कर अगर उनके अंदर बचपन में खिलौनों का प्यार फिर से जगा दिया तो कोई बुराई नहीं है। वरना बच्चों को आज के लिए यही लग रहा है मोबाइल ही उनके लिए असली खिलौना है। मम्मी पापा किसी भी पार्टी में जाएं, बच्चे सीधे आते हैं, पापा मोबाइल दे दो, मम्मी मोबाइल दो, मुझे खेलना है जी। उनको बताओ कि ऐसे खिलौने होते हैं, हमारे जमाने में यही सब खेलते थे कि मोबाइल नहीं। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, कहाँ पे है?
1: थैंक यू सो मच, लेकिन मेरा बर्थडे नहीं है।
0: तो फिर कहाँ पे भाई तेरा बर्थडे?
1: मेरा भी 3 महीने बाद बर्थडे आना है।
0: तो 3 महीने बाद है तो तू बता अब रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया? यहाँ मैंने पूरे ग्रुप को जमा करके तुझे विश करना चाह रहे हैं, हम पागल खड़े हैं? हैं राकेश, तेरे को पहले नहीं बताना चाहिए था ये?
1: भाई मैं राकेश नहीं हूँ, मैं तेरे से बोल रहा हूँ मैं राकेश नहीं हूँ।
0: तो सो के जाग रहा है, राकेश भी नहीं है, तेरा बर्थडे भी नहीं है, तू पहले नहीं बता सकता था? दांत फाड़ रहा है अब तेरे को बोलने परेशानी?
1: तमीज नहीं है बात करने की?
0: तमीज तेरे को तमीज होनी चाहिए यार। यहाँ पे हम 50 आदमी खड़े हो गए, तेरे को बर्थडे विश कर रहे हैं, तेरे को पहले बोल देने चाहिए क्यों कर रहे हैं? मैं राकेश नहीं हूँ। नवाब साहब पहले पूरा सुनेंगे हैप्पी बर्थडे, फिर मेरे से कहेंगे यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं मेरा बर्थडे नहीं है, ना मैं राकेश हूँ। तू है कौन यार?
1: तू एक बार बता, मेरा नाम ना राकेश है ना मेरा बर्थडे है, तू मेरे को जबरदस्त उल्टा सीधा बोले यार।
0: उल्टा सीधा मैं तेरे को नहीं बोल रहा, तू एक बार बता, तेरे को पहले बताना नहीं चाहिए था कि तेरा बर्थडे नहीं है? तो तेरा बर्थडे देख क्यों नहीं आता, आज क्यों नहीं आया तेरा बर्थडे? बैक आ गया यार, केक तो खा ले।
1: हेलो,
2: हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: तूने दिमाग खराब कर रखा है मेरा, मेरी मेरी,
0: मेरी, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन लो भाई, मैं तुम्हारा बर्थडे नहीं है, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम, मैंने तो ऐसे नंबर मिला दिया था। तुम्हारा बर्थडे नहीं मना रहे हैं, तुम्हारा मुर्गा मना रहे हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और तुम अपने नाम बताएंगे प्लीज अपना?
1: मैं समीर बोल रहा हूँ।
0: समीर, तुम तो ये मेरे साथ की जो टीम है ये कुछ कहना चाह रही है, जरा सुन लो एक सेकंड।
2: बोला कुकड़ू कुकू
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न। अरे यार, हॉलिडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्डन समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस, प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर, विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन द GCC। विजिट मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
4: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
3: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स,
2: जबरदस्त ट्रैक्स,
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
2: 89.6
3: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: अरे शेर खुल गए और अब शेर घर में एकदम खुल के टीवी भी देख रहे हैं। अरे बच्चों की बात कर रहे हैं, वेकेशन ऑन होते ही इनकी टीवी पर पकड़ मजबूत हो जाती है। टीवी में गेमिंग से लेकर टीवी पर वीडियो वॉच करना, यूट्यूबर्स को देखना, यही तो इनका काम है। कि फिलहाल बच्चों के लिए एक और अच्छी चीज आई है, उसके बारे में बता देते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी इन्वाइट कर रहा है अ नाइट अंडर द स्टार्स, एक कम्युनिटी इवनिंग इवेंट जो कि 974 बीच पर होने वाला है 3 जुलाई को शाम 7 बजे से वहां पर होगी मूवी स्क्रीनिंग। इसके अलावा आपके बच्चे वहां पर बहुत सारी एक्टिविटीज का हिस्सा बन सकते हैं एंड एक डेडिकेटेड फैमिली गैदरिंग हो रही है जो कि बीच पर हो जा रही है। इसमें स्टोरी टेलिंग भी होगी, मूवी स्क्रीनिंग के अलावा फैमिली फ्रेंडली एक्टिविटीज होगी, पेंटिंग होगा, एक तरह से एक ऐसी इवनिंग जिसको आप बहुत समय तक याद रखेंगे। जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनके लिए ये अंडर 14 15 रियाल है, एडल्ट्स को 35 रियाल देने और VIP व्हीकल एंट्री भी होने वाली है 150 रुपए में। कार अंदर एकदम टकाटक मजे लीजिए, मौज कीजिए और इस फैमिली फ्रेंडली एक्टिविटी का जो कि 974 बीच पर होने जा रही है हिस्सा बनिए। अ नाइट अंडर द स्टार्स, दुनिया में बहुत सारे इवेंट होते हैं लेकिन हमारे कतर में कोई भी इवेंट होता है उसका अपना ही एक अलग एक्सपीरियंस होता है। सो हबीब वेलकम टू 974 बीच, अ नाइट अंडर द स्टार्स एट July 3rd 7 PM इवनिंग 89.6 मिर्ची 1 अनारा खतीर। इट्स हॉट
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

बिल्कुल मिलेगी, आम की पाकिस्तान की वैरायटी भी मिलेगी। यस, पाकिस्तानी मैंगो बोले तो चौसा, अनवर रतोल, सिंदरी, दशहरी, ये सब के 10 दिनों का फेस्टिवल भी अब आ रहा है। यस, 9th ऑफ जुलाई से 18th ऑफ जुलाई के बीच ईस्टर्न स्क्वायर सुख वाकिफ में जहां इंडियन हम्बा फेस्टिवल लगा था वहां पाकिस्तानी मैंगो फेस्टिवल लग रहा है। ये भी शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक चलेगा एंड एंटायर फैमिली यहां जाएगी बिल्कुल फ्री में, हैं जी। इसके अलावा यहां पर मैंगो बेस्ड प्रोडक्ट मिलेंगे, जूसेस, आइसक्रीम, स्वीट्स कॉर्नर एंड कुछ बड़ी ट्रेडिशनल डेलिकेसीज ऑफ मैंगोज इन पाकिस्तानी कल्चर, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। हमारे कतर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी वहां पर होंगे और 10 स्पेशलाइज्ड पाकिस्तानी मैंगो एक्सपोर्टर भी इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। चलो जी, बहुत खाया अब इंडियन आम, पाकिस्तानी मैंगो की भी बारी आ गई है, छक्के खाएंगे और अपना समर और अच्छे से बिताएंगे। सो ऑल दी बेस्ट टू एवरीवन, एक बार फिर से आम को खास बनाने की बारी आ गई। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसको एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची, इट्स हॉट।
7: अर्ज किया है
8: इरशाद।

आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल सीधा नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5 10 15 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईपी स्मॉलर फीस बिगर स्माइल्स.

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है।

0: हाँ क्या जबरदस्त खेलती है ऑस्ट्रेलियन टीम, जबरदस्त खेल रही है वर्ल्ड कप में। हाँ पता, आप सोच रहे हैं कि कौन सा वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया चल रहा है। नहीं, फीफा ही सिर्फ नहीं हो रहा है भैया, यहाँ हम विमेन C20 वर्ल्ड कप की बात करें जिसमें ऑस्ट्रेलिया लगातार 8वीं बार फाइनल में है।
1: क्रिकेट का, फुटबॉल का, हॉकी का, सबका अपडेट बताएगा रे तिरम मिर्ची।
0: स्पोर्ट्स अपडेट। यस, हम आपको बता दें कि अपने 7th T20 वर्ल्ड कप टाइटल की तरफ नजरें गड़ाए बैठी ऑस्ट्रेलियन टीम पहुंच चुकी है फाइनल्स में, और सेमीफाइनल में उन्होंने वेस्ट इंडीज की टीम को 8 विकेट से हरा दिया और 8वीं बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में है। ऐसे में मैं बस यही सोच रहा हूँ कि ये वर्ल्ड कप का नाम ही ऑस्ट्रेलियन कप कर दें, मतलब यार इतनी बार जीत रहा अच्छा थोड़े लगता है। वैसे अब इनको इंतजार है, इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका में जो जीतेगा वो फाइनल में इनसे भिड़ने आएगा और फिर ये उसको भी हरा के फिर से ट्रॉफी उठा लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कह सकते हैं कि क्रिकेट की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का डोमिनेशन वुमेन्स क्रिकेट में भी जबरदस्त है। हालांकि वनडे वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता पिछले साल, पर कोई नहीं, मौका आएगा हम T20 वर्ल्ड कप में इसी ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हरा कर जीतेंगे, तभी हमारे अंदर का जो जोश है वो बड़ा हो जाएगा, फिर हम जीतते जाएंगे। हमेशा बड़ा सोचो तभी तो बड़ा होगा। मिर्ची थॉट बुलावे तो।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अनिल कपूर सर, ये सवाल हम आपसे 365वीं बार पूछ रहे हैं कि आपकी फिटनेस का राज क्या है?
3: हेल्थ ऐसी बनाओ, काम ऐसा करो कि आप 40, 50 साल, 60 साल तक आराम से वैसे ही काम करते रहो। मीठा खाना है तो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, आपको मीठा अगर सूट नहीं करता है तो हफ्ते में एक बार खाइए, और खाना है तो थोड़ा सा खाइए। आपको नमकीन पसंद है, उसका मतलब ये नहीं कि आप इतना ही नमकीन खाते रहें। आपको चावल पसंद है तो दबा के आप चावल ही खा रहे हैं। आप यू नो, तो हर चीज़ करनी चाहिए, मगर थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके यू शुड वर्क इट आउट एंड बैलेंस एवरीथिंग इन लाइफ एंड डू एवरीथिंग इन लाइफ एंड दैट्स आई फील इज द मंत्रा फॉर योर फिटनेस। यू डू एवरीथिंग बट डू इट इन मॉडरेशन एंड डू इट व्हाट मेक्स यू हैप्पी।
2: हेल्थ टिप आपने दिया एकदम क्लास, क्योंकि अनिल कपूर आप आदमी एकदम झकास। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स ऑन
0: बॉलीवुड बोल्डा। Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: A ring for the newly married? Cute little bangle for the newborn?
5: Arey yaar, holiday season is here, aur phir wahi gifting ka tension. Phir Malabar Gold and Diamonds, golden summer ke saath, buy a free cash vouchers on diamond and precious gem jewelry purchases. Plus, exchange your gold jewelry and upgrade to the latest designs without any loss. Aur suno, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
6: Our business is our business. None of your business.
7: But Didi, our entertainment is your entertainment.
8: Qatar ka number one radio station.
9: 89.6 FM, Mirchi 1.
10: It's hot.

0: emergency helpline?
1: Hi there, what's up? Tell me.
0: Sir, मुझे वेकेशन पे गोवा जाना है पर बॉस लीव ही अप्रूव नहीं कर रहा है, क्या करूँ?
1: ओ मैन, गोवा के लिए अप्रूव नहीं कर रहे ना तो शिमला या मनाली चले जाओ.
2: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983.

0: गाड़ी तो महंगी लेते ही है, उससे महंगा नंबर प्लेट। इसी को तो शौक कहते हैं। फिलहाल मिर्ची घड़ी का टाइम शाम के 7:04 होने को आएंगे।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: हाँ जी, तो मस्त बोलो गौरव, आपको बता दें एक बार फिर से हमारे कतर में तैयार हो गया वो मामला, जहां पर अगर आप अपनी गाड़ी के लिए लेना चाहते हैं बेहतरीन व्हीकल नंबर प्लेट तो मौका है। यस, ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने अनाउंस कर दिया है एक बार फिर से न्यू नंबर प्लेट्स का ऑक्शन, और जनरल डायरेक्टर ऑफ ट्रैफिक ने कहा है कि सूम ऐप पर SOOM इस ऐप पर संडे 5 जुलाई को ओपन होंगे न्यू नंबर्स एट अर्ली मॉर्निंग 8 AM, और आपको उसी विंडो में जाकर ऐप के लिए जाकर आपको बिड करना है। अगर 72 आवर्स तक आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दी तो बस आपके लिए इंटरेस्ट पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, और जो जो नंबर्स आते जाएं आप उसके हिसाब से देख लें आपको कौन सा सूट कर रहा है। मतलब मैंने देखा यार, कई बार तो गाड़ी की नंबर प्लेट गाड़ी से भी 10-15 गुना महंगी होती है। यही कहते हैं शौक। हमारे तो नंबर प्लेट में कोई भी नंबर हो हमें याद भी नहीं होता, और हमारा शौक एक ही है, गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, नंबर प्लेट से क्या ही होता है। लेकिन देखिए भाई, शौक बड़ी चीज है और पालना चाहिए, और ऐसे ही ये जबरदस्त शौक के लिए आप इस नंबर प्लेट को देखिए, कई बार करोड़ों का मामला रहता है। 89.6 मिर्ची 1, हमारे रिजल्ट में अच्छे नंबर नहीं आते थे, नंबर प्लेट में कहां से आएंगे मिर्ची 1।

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. Na vid vala burga. Mirchi, burga.
1: हेलो,
2: इज दैट वर्षा?
1: हु इज दैट?
2: वर्षा, मैं निखिल बोल रहा हूँ, एक्चुअली मुंबई से मैं बोल रहा हूँ। हमारा एक रियलिटी शो शुरू होने वाला है जिसका नाम है धारे गम पा।
1: क्या नाम बताया आपने?
2: धारे गम पा। हमारा ये रियलिटी शो है, मुझे कहीं से पता चला कि आप अच्छी सिंगिंग कर लेती हैं, अच्छा गाना गा लेती हैं, और किसी ने मुझे बताया कि आप हिमेश रेशमिया को भी कॉपी कर सकती हैं, उनके गाने आपको पसंद हैं।
1: थोड़ा बहुत गा लेती हूं।
2: ओके, मैं आपको टेलीफोन पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर धारे गम पा में आप शॉर्टलिस्टेड हो गई तो हम आपको फिर इस रियलिटी शो में पूरा हिंदुस्तान देखेगा, आपको गाने का मौका देंगे।
1: बट ये रिकॉर्डिंग आप फोन पर ही करेंगे?
2: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझे आप। आपको जो भी गाना देंगे आप उसमें हिमेश रेशमिया का जो आपने मशहूर सुना होगा अब तक, ओ राइट, वो जो एक उनका सुर है,
1: लेकिन उनकी कॉपी करनी पड़ेगी।
2: नहीं नहीं नहीं, नॉट एग्जैक्टली कॉपी, आप कोशिश करिएगा कि हिमेश रेशमिया स्टाइल में गाना आपने सुना ही होगा। गाना है आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। गाने की शुरुआत में, गाने के बीच में, अंतरा जब खत्म हो, मुखड़ा जब शुरू हुआ, आप ऊ ऊ लगाएंगी। स्टार्ट वर्षा। वर्षा, वन सेकेंड, देखिए। ऊ

0: वही वाली ऊँ चाहिए जो पहले करी थी आपने, बहुत अच्छी करी है।
1: देखिए इससे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा।
0: अरे गड़बड़ आपको क्या प्रॉब्लम है, हमारा शो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, धारेगा में पानी सर। स्टार्ट
1: मिल गई मंजिल मुझे,
0: ऊँ चाहिए तेरा तेरा तेरा सुरूर। एक्चुअली ये तेरा कसूर भी नहीं है
2: वर्षा, ये किसी का कसूर नहीं होता, ये कसूर उनका होता है जो लोग मुझे नंबर देते हैं और ये कहते हैं कि उनका मुर्गा बनाया जाए। वर्षा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा आपको अजीब लगा होगा लेकिन
1: अजीब नहीं, मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस, और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
5: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
6: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
7: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
8: कम है के?
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: अपनी गाड़ी की सर्विस बहुत टाइम पे कराते हैं, आप एकदम चकाचक रखते हैं। जब बात आती है अपने फोन के किसी भी अपडेट की, एकदम मिस नहीं करते, खटाक से अपडेट कर देते हैं। लेकिन जब बात खुद के हेल्थ की आती है तो आप अक्सर कह देते हैं, अरे हम बिल्कुल ठीक हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो नहीं करना है। क्योंकि याद रखिए, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, और PHCC हमें यही याद दिलाना है कि अब वो टाइम है जब हमें ईयरली चेकअप कराना है।
1: local news of the day.
0: Yes, annual health checkup को लेकर एक बार फिर से सारे eligible patient को encourage किया है primary health care corporation ने, और कहा है कि आप जितनी जल्दी हो सके अपना checkup जरूर कराइए। ये routine checkup से क्या होता है, कल जो disease का पता लगने वाला है वो आज ही चल जाएगा, और उसे आप early stage में आराम से treat भी करा सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है, PHCC के eligible patient है, तो आप 107 पर अभी call करके appointment लीजिए। अपना walk-in facility से भी आप जा सकते हैं, लेकिन जितनी जल्दी उसके अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, ताकि आपका चेकअप साल में जो एक बार होता है वो बहुत जरूरी है, उसको करिए। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हेल्थ चेकअप कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट हैबिट है जो आपको टाइमली जरूर रखनी चाहिए, जिससे कि आप अपने आप को वाकई में फिट एंड फाइन रखें। और घर वालों से दूर जब आपके यहां शायद कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, ऐसे में PHCC आपको इसीलिए PHCC के एलिजिबल पेशेंट है, तो आप 107 पर अभी कॉल करके अपॉइंटमेंट लीजिए। अपना वॉक इन फैसिलिटी से भी आप जा सकते हैं, लेकिन जितनी जल्दी उसके अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, ताकि आपका चेकअप साल में जो एक बार होता है वो बहुत जरूरी है, उसको करिए। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हेल्थ चेकअप कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट हैबिट है जो आपको टाइमली जरूर रखनी चाहिए, जिससे कि आप अपने आप को वाकई में फिट एंड फाइन रखें, और घर वालों से

0: उनके लिए जो कर रहे हैं उससे भी वो ज्यादा खुश होंगे। तो प्लीज अपना थोड़ा ख्याल रखिए। पीएचसीसी ने आपको याद दिलाया है, आप एनुअल चेकअप कराने का टाइम है, अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, कॉल एट 107 या फिर वॉक इन जाइए और करा कर आइए। मस्त मौला गौरव को थैंक यू कहिए जिसने याद दिला दिया। मिर्ची इट्स हॉट
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसको एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची, इट्स हॉट।
7: अर्ज किया है
8: इरशाद। इरशाद

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
2: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
0: आएंगे दीदी। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची वन। It's hot.

इश्क जैसा तो नहीं, शॉर्ट ट्रिप जैसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो जरूर सुनिए। अगर आप कतर से गाड़ी चला के सऊदी वदी जा रहे हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट प्लान आपको स्पॉइल ना हो, इसके लिए इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कर दी गई है आपके सामने जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रैफिक में, जहां पर मोटर व्हीकल्स जो कि कतर को छोड़कर बाहर जाना चाहती है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के किसी भी जगह, तो उनके पास एग्जिट परमिट होना चाहिए फ्रॉम जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रैफिक। और ये मेक श्योर कीजिए कि व्हीकल का कोई भी आउटस्टैंडिंग ट्रैफिक वायलेशन ना हो, कि पता लगे बॉर्डर पहुंचे रहे भैया गाड़ी में तो चलान लगा हुआ है। वेल, स्पेशली आपको फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि पॉइंट ऑफ अराइवल भी बताना है, और अगर आप व्हीकल ओनर हैं तो आपको ऑथराइजेशन का, ओनर ऑथराइजेशन का, कि आपका ही व्हीकल है वो एक प्रूफ रखना पड़ेगा। और अगर आप किसी का लेके जा रहे हैं तो उसका भी आपको व्हीकल ओनर का प्रूफ रखना पड़ेगा। कुल मिलाकर आप इसके अलावा व्हीकल एग्जिट परमिट वाया मेथराज भी अप्लाई कर सकते हैं एंड GCC ट्रेवल एग्जेम्पशन मिलेगा। लेकिन याद रखिए उसके लिए एग्जिट परमिट रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी, नो आउटस्टैंडिंग ट्रैफिक वायलेशन, और जितने भी फाइन्स हैं पहले भर दो भैया, और कतर वापस आते टाइम भी एग्जिट परमिट के साथ रिटर्न परमिट भी आपका होना चाहिए, वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, इस बात को समझ लेना है जी। इसी उम्मीद में कि आप इन बातों का ध्यान रख के ही कोई छोटी सी ट्रिप प्लान करेंगे, वरना एक हफ्ते से लेकर एक साल की जेल भी है अगर कोई भी तरह का वायलेशन पाया गया, और 3,000 से 10,000 कतरी रियाल के बीच का फाइन भी। पता लगे जितना ट्रिप का प्लान नहीं उससे ज्यादा फाइन भर रहे, इसलिए थोड़ा सोच समझ के अपना होश हवास में एकदम आराम से ड्राइव सेफ ड्राइव स्लो एंड कोशिश ये कीजिए वैकेशन अच्छा हो, उसके लिए बहुत प्रॉपर प्लानिंग भी करें। चलिए जी आगे बढ़ते हैं मस्मोलोवर के साथ मिर्ची इट्स हॉट, आइए झिंगा डांस करें।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: आमिर खान इतनी सारी फिल्में और हर फिल्म में एक अलग फिजिक. What is the ultimate fitness tip?
3: I know everyone says this, but I can't stress how important it is to be regular in your workout. And along with that, for the best results, you need to have a very balanced and healthy diet. आमतौर पे लोग high protein diet करते हैं. You know, that's not healthy. The body needs proteins, but also needs carbohydrates. It needs fat. It needs everything. So we must have a balanced diet and a healthy diet and rest. You have to sleep well. You have to rest well.
2: Sleep well. Oh, फिर तो फिट होना मुश्किल है आमिर खान. आप सुन रहे हैं मिर्ची. It's hot.
0: Bollywood Bolda. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स. अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस. और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन GCC. विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे.
5: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं.
6: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
1: बार बार.
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
8: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

गुरु रंधावा की आवाज में नाच मेरी रानी किसने सुनाया? वैसे फिलहाल के लिए रानी नाच रही है, नाचने दीजिए, लेकिन मैं आपसे जो कह रहा हूँ उस बात पर ध्यान दीजिए। हाँ जी, समर कैंप एक्टिविटीज बहुत सारी जगह चल रही हैं एंड बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने भी इसे आपके लिए शुरू किया है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे छुट्टियों में जब घर पर होते हैं ना तो उनका ज़्यादातर दिमाग होता है कि गेम खेल रहे, टीवी लगा लें, यूट्यूब पे चले जाएं, अपने मोबाइल पे बैठ जाएंगे, अपने टैबलेट पे बैठ जाएंगे। प्लीज़ उनके लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मौसम को ध्यान में रखते हुए आप इंडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी उनका पार्टिसिपेशन करा सकते हैं। कोशिश यही कीजिए कि बच्चे एक्टिव मोड में रहें और पढ़ाई का भी एक टाइम निकालिएगा। मुझे अच्छे से याद है, मेरे समर वेकेशन टाइम पे होता था कल पढ़ लेंगे। इसमें 2 महीने कैसे बीतते थे, ये कल कब 2 महीनों बदल जाता है पता ही लगता था। और फिर स्कूल खेलने के 5 दिन पहले हम पूरे होमवर्क करने की तैयारी करते थे और फिर बिना होमवर्क किए जब कॉपी लेकर स्कूल में जाते थे, दे दनादन। तो भाई वो गलतियां आज के बच्चे ना करें, हम यही चाहेंगे इस उम्मीद में कि आप अलग अलग समर कैंप का हिस्सा बन रहे हैं। यहाँ के कतर में अलग अलग जगहों पर अनाउंसमेंट है, जरूर लेकर जाइए अपने बच्चों को, उनको एक्टिव बनाए रखिए। मस्मोलोग और लेगा अलविदा, लौटेगा कल शाम एक बार फिर से शाम शानदार लेकर यहीं मिर्ची पर। इट्स हॉट।

0: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8. सुनते रहिए 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट.
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.

0: सोनू निगम, अलका याग्निक, जतिन ललित, जावेद अख्तर, फिर भी दिल हिंदुस्तानी 1999, वाओ कहां चली गई मैं एकदम से।
1: मिर्ची कैफे,
0: कम बैक, सुन रहे हैं आप मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। शाहरुख खान का ये क्यूट सा गाना विद जूही चावला, बहुत ही प्यारी प्यारी चीज होती थी यार उस वक्त, आपको याद है? वैसे अगर देखा जाए तो 1999 वाज अ हैट्रिक ईयर ऑफ सलमान खान। सो हम साथ साथ हैं, बीवी नंबर वन, हम दिल दे चुके सनम, ऐसी वाली फिल्म आ रही थी उस वक्त। कितना वक्त बदल जाता है ना देखते देखते, एवरीथिंग जस्ट चेंजेस। इनफैक्ट आपको मैं कहती हूँ, याद करो 1999 में आप क्या कर रहे थे। कभी कभी पुराने वक्त को सोच के ऐसा ही लगता कि वो भी एक लाइफ टाइम था। नहीं, एनीवे, जब तक आप अपनी यादों में खोए हुए हैं, टॉकिंग अबाउट सलमान खान, अगला गाना मैं आपके लिए चला रही हूँ श्रेया घोषाल, बेनी दयाल, ए आर रहमान, इन तीनों के सुपर ट्रायो का ये बहुत प्यारा गाना। दिस इज वन ऑफ माई वेरी वेरी फेवरेट्स ऑफ सलमान खान। सबसे क्यूट बात पता है इस पूरे गाने की क्या है? सो ये गाना ना बिल्कुल दोस्ती के जोन में रखा गया है, इसमें कोई ऐसे प्यार मोहब्बत वाले शब्द नहीं इस्तेमाल किए हैं। सुन के देखो पूरा गाना, यू विल गेट व्हाट आई एम सेइंग। लिसन टू तू मेरी दोस्त है, राइट हियर राइट नाउ ऑन मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabala, puskabala, sakabala. Rabbala. Burka, burka. La virba la burka. Mirci, burka.
1: हेलो
2: हेलो भाई राज, एक ये बात बता भाई, तू तेरी इनकम कितनी है? हैं,
1: बोल कौन रहा है?
2: नहीं, मुझे ये बता भाई, कितनी तनख्वाह मिलती है तुझे एक महीने में? कितने पैसे कमा? तमीज से ही बात कर रहा हूँ मैं, मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया। मैं तुम्हें बताने चाह रहा, तेरी जेब कटी थी कुछ दिन पहले, तेरा वॉलेट गायब हुआ है यहाँ से?
1: हाँ, कटी। कौन बोल रहा है?
2: मैंने काटी है तेरी जेब, 17.5 रुपए लेके घूम रहा है तू पर्स में मेरी मेहनत की। तूने ऐसी
1: तूने जेब काटी,
2: तेरा नंबर मुझे इसमें पड़ा मिला है, तू रखता क्यों नहीं इसमें पैसे?
1: तो मेरे पैन कार्ड और कुछ क्रेडिट कार्ड होंगे भाई।
2: हाँ, तो मैं क्या करूँ उसका?
1: जरा वापस दे दो यार।
2: पैन कार्ड दे दूँ मैं, तेरा क्रेडिट कार्ड दे दूँ, और जो मेरी मैंने तो पानी फिरा 17.5 रुपए, शर्म नहीं आती पर्स में? नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस है। मेरी मेहनत का क्या होगा? मेरी मेहनत का क्या होगा, वो कौन देखेगा आके?
1: 17.5 रुपए
2: कितने पैसे चाहिए? 2000 रुपए से कम आज तक जेब नहीं काटी मैंने।
1: एड्रेस दे अपना, वो कर दे, मैं कर दूंगा।
2: एक चीज कर दो मेरे लिए, मैं सारा पैसा तुम्हारा वापस कर दूंगा। करो मेरे साथ।
1: क्या करो बताओ?
2: मेरे साथ बोलो कुकड़ो कु।
1: सॉरी
2: भाई साहब, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका पर्स किसी ने मारा था? मैंने नहीं मारा। और आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया यार, मुझे बड़ा तरस आया आप। अब मेरे साथ जरा प्यार से बोल दीजिए आप कुकड़ो कु।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न।
5: अरे यार, हॉलीडे सीजन इज हियर, और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। तो फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस, प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर्स मोर। With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
6: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
7: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
8: का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: माय गॉड, सच बताना, आपके शोल्डर्स डांस कर रहे थे ना बैठे बैठे इस गाने को सुनते सुनते। यार यही तो कमाल की बात है ना, सच अ बम्पिंग थम्पिंग ट्रैक, नच बलिए फ्रॉम द फिल्म बंटी बबली, शंकर महादेवन का माइंड ब्लोइंग म्यूजिक। लेकिन जब लिरिसिस्ट हो गुलजार साहब तो वो इतने मजेदार गाने में भी क्या लिख रहे हैं, सुनिए। हर कदम ये ख्वाबों का बिछौना है, खेल खेल ये किस्मत तो खिलौना है, दाव लगा दाव पर किस्मत खड़ी पांव पर चलवे। जब हम नाच रहे होते हैं ऐसे गानों पे तो हम सोच रहे होते हैं कि ओह ये इतने इंटेंस लिरिक्स हैं।
1: मिर्ची कैफे,
0: सुन रहे हैं आप मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। और यही मैजिक है यार, कमाल है हमारे लिरिसिस्ट का। कभी कभी ना मैं ऐसे एकदम माइंड ब्लो हो जाती हूँ और मेरे को लगता है कि आपको बताऊं कि देखो क्या मैजिक चल रहा है यहाँ पर। ओके, सो एक डांसिंग ट्रैक से निकल के दूसरे डांसिंग ट्रैक में घुस रहे हैं हम अभी यहाँ पर। शंकर महादेवन का गाना अगेन, एंड ये जो फिल्म है ये मेरी फॉरएवर फेवरेट फिल्म है। इसके सारे कैरेक्टर्स की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम। फिलहाल मैं एक बताती हूँ आपको मजेदार सी कूल सी बात अबाउट दिस सॉन्ग। सो ये गाना बड़े सारे लोगों ने मिलकर गाया है और इस गाने में पिक्चराइज्ड हैं तीनों दिल चाहता है के कैरेक्टर्स, आमिर, अक्षय खन्ना एंड सैफ अली खान। तो जब ये गाना बन रहा था, शान वाज अबाउट टू सिंग अक्षय खन्ना वाला पोर्शन, लेकिन सडनली फरहान अख्तर जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनको लगा कि नहीं यार ये सैफ अली खान से ना शान की वाइब और एनर्जी ज्यादा मैच हो रही है, सो उनको उनका पोर्शन गाने देते हैं। और उसके बाद जब गाना रिलीज हो गया तो फरहान ने एक्चुअली लोगों को उल्लू बनाया कहकर कि वो पार्ट ना सैफ ने खुद गाया है और लोगों ने यकीन भी कर लिया। So, आप सोच रहे हो ये लिरिसिस्ट और म्यूजिशियंस और इन सब का कितना कमाल का बैकिंग काम होता है ना किसी भी फिल्म या गाने के ऊपर, जिसको हम सुनकर बस मस्ती से नाचते रहते हैं। सो यस, गेटिंग इनटू दिस ट्रैक, कोई कहे कहता रहे, ओनली ऑन मिर्ची कैफे विद मी पारुल। स्टे ट्यून्ड, मिलती हूँ ब्रेक के बाद। उल्लू बनाए कहकर कि वो पार्ट ना सैफ ने खुद गाया है और लोगों ने यकीन भी कर लिया। सो आप सोच रहे हो ये लिरिसिस्ट और म्यूजिशियंस और इन सब का कितना कमाल का बैकिंग काम होता है ना किसी भी फिल्म या गाने के ऊपर, जिसको हम सुनकर बस मस्ती से नाचते रहते हैं। सो यस, गेटिंग इनटू दिस ट्रैक, कोई कहे कहता रहे, ओनली ऑन मिर्ची कैफे विद मी पारुल। स्टे ट्यून्ड, मिलती हूँ ब्रेक के बाद।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची, इट्स हॉट।
7: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
8: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
9: बहुत कुछ होगा।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: होगी पार्टी। अच्छा आप ये सुनो, व्हाई डिडंट द स्केलेटन गो टू द पार्टी? एक स्केलेटन पार्टी में क्यों नहीं गया? बिकॉज ही हैड नो बॉडी टू गो विद। स्केलेटन था ना, ही हैड नो बॉडी टू गो विद।
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी बारूल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। और इससे पहले कि आप मुझे मारने के लिए ढूंढो, मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो अभी आपने गाना सुना, अर्जुन कानूंगो एंड बादशाह का गाना बाकी बातें पीने बाद, यार इसकी वाइब बहुत ही निराली थी उस वक्त ना। बहुत सारे ऐसे फिल्मी वाले ही गाने आ रहे थे और ये जब आया था तो अचानक से एक इंडिपेंडेंट कमाल का गाना आ गया था। एंड बादशाह ने इसमें अपेरेंटली मयूर पुरी के साथ लिरिक्स भी खुद लिखे हैं एंड कॉम्पोजिशन भी उन्हीं की है। अगला गाना आपके लिए फिलहाल एक और पार्टी मूड का लेकर आई हूँ। और ये गाना जो था ना, इसमें अपेरेंटली रितेश देशमुख ना शेप में आए थे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सॉन्ग। उनको ऐसे ग्रूव करना था इस गाने पे, इसलिए तो इस गाने में ना ऐसे एक पिक्यूलियर सा बीट है। दं, तटक, दं, दं, दं। अभी आप सुनोगे, मैं अपनी बकवास बंद करती हूँ, सुनाती हूँ आपको ये गाना। कहीं मत जाना, स्टे ट्यून्ड हियर ऑन मिर्ची कैफे। आप सुन रहे हैं मेरे यानी पारुल के साथ ऑन मिर्ची। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, bold eye. Only on Mirchi. It's hot.
1: मिलिन सोमन, आपकी इतनी फिट बॉडी है, क्या आपने कभी इस बॉडी का फायदा उठाया है? आ जा, दिखाता हूँ तुझे, झगड़ा करेगा मेरे साथ।
2: कभी झगड़ा नहीं किया, और टफ फिजिक का मतलब ये नहीं कि झगड़ा करके उसको जस्टिफाई करो। गुड फॉर शो व्हिच इज गुड फॉर माय प्रोफेशन एंड आई वर्क अ लॉट, I work very hard, so I need that fitness level.
1: And I need your motivation level, Milind Soman. Aap sun rahe hain Mirchi, it's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
3: Only on Mirchi, it's hot.
4: Hello, Sharps. Our product is phenomenal. One of a kind, but still profit nahi ho raha hai. Maine Baba Ji se advice li to kehte hain.
5: Office ke toilet mein toilet paper white nahi, yellow lagao. प्रॉफिट आएगा।
4: रिलेटिव से एडवाइस स्लो तो कहते हैं,
6: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
4: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
7: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहाँ तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
8: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.

0: बाय गॉड, कुछ लोग ना इतने मैजिकल हैं कि उन्होंने बहुत पहले ही अपने वक्त से बहुत आगे पहुंचकर इतनी एक्सपीरियंशियल चीजें कर ली हैं कि आज तक अगर हम उसको ऐसे बाइफरकेट करें ना, हम नहीं कर पाएंगे. आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन A.R. रहमान सर एंड ताल का म्यूजिक. ये जो अभी अभी आपने गाना सुना है ऑन मिर्ची कैफे, मैं हूँ आपके साथ पारुल, ओनली ऑन मिर्ची.
1: मिर्ची कैफे.
0: मतलब आप यकीन कर सकते हैं ये जो गाना है कहीं आग लगे लग जावे. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल सुभाष घाई खुद ही अपनी फिल्मों में बहुत ख्याल रखते हैं कि क्या म्यूजिक यूज हो रहा है. पहली चीज, उन्होंने पूरा का पूरा डिपार्टमेंट रहमान सर को दे दिया कि भाई तुमको जो करना है कर लो, ठीक है. दूसरी चीज, देर आर क्लैप लूप्स इन दिस सॉन्ग कहीं आग लगे लग जावे. एक होता है 4/4 बीट, ठीक है, जो मोस्टली बॉलीवुड में सब जगह यूज होता है, उसको ब्रेक किया इस गाने ने. तीसरी चीज, और एक होता है स्टेकेटो फॉर्म ऑफ म्यूजिक और एक होता है लिगेटो. तो जो लिगेटो होता है ना, दैट इज अ सिंप्लीफाइड फॉर्म जो मोस्टली सब यूज करते हैं. स्टेकेटो होता है बिल्कुल शॉर्ट, शार्प और डिटैच्ड. तो ये फॉर्म यूज हुआ है इस गाने में. ये तो हुई सिर्फ कॉम्पोजिशन की बात. अगर आप कहीं आग लगे लग जावे का विजुअल याद करोगे या कभी देखोगे यूट्यूब पे जाके, तो आप ये देखोगे कि इतना ब्रिलियंट परफॉर्मेंस चल रहा है वहां पे ऐश्वर्या राय बच्चन. हैट्स ऑफ टू हर. दिस इज टिल डेट मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग्स जो हमेशा हर चीज में अव्वल नंबर पे रखती हूँ मैं. व्हाट अ सॉन्ग गाइस. ऐसे गाने जो बनते हैं ना, तो वो साल नहीं, वो ऐसे सदियों लाखों जमानों तक चलते हैं और उनकी पहुंच कहाँ कहाँ तक जाती है और हमेशा अमेजिंग लगते हैं. एंड ऑन दिस नोट आई रियली नीड टू काम डाउन एंड से कि अब मेरा जाने का वक्त यहाँ से हो गया है, क्योंकि अब अगले एपिसोड के लिए मैं आपके लिए गाने तैयार करने के लिए जाने वाली हूँ. अगर आपको कोई गाना ऐसा सुनना है जो आपके दिल के बड़ा करीब है, तो प्लीज मुझे लिखिए. आप मेरे मिर्ची के व्हाट्सएप नंबर 9930983983 पर मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो parul.world. प्लीज मुझे बताओ आपको कौन सा गाना सुनना है. ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू टेल समथिंग अबाउट दिस शो, आप मुझे कोई इनपुट देना चाहते हो, प्लीज राइट इन टू मी. और मैं यहाँ पर अगला गाना आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ, विच इज इन द ब्यूटिफुल वॉइस ऑफ हर्षदीप कौर. ये भी ना गाना जो है, ये बहुत ही खूबसूरत गाना है. इसके बड़े सारे मीनिंग है. सूफिज्म में इसका मीनिंग है कि सारी रात चरखा कात रही हूं तेरे इंतजार में. एंड इफ यू सिंप्लीफाई इट, इसका मतलब है कि सारी रात काट रही हूं बस तेरे इंतजार में. तो मैंने ये गाना आपके लिए आखिरी आज के एपिसोड का इसलिए चलाया है कि आप भी मेरा इंतजार करो अगले एपिसोड तक, और मस्ती करो, खुश रहो और सुनते रहो मिर्ची. स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट.

जाना चाहता है। उलझा रहता हूँ यादों में, मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना, जिंदगी को हंस के जीना, तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना। hey!

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: घड़ी में राइट एंगल का इशारा हो चुका है यार कि रात के 9 बज चुके हैं। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स राइट हियर ऑन मिर्ची।

ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ पुरानी जींस पर सुनो सुन रहे हो ना मिर्ची पर

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: जब भी राजकुमार साहब का जिक्र होता है, जानी लव्स अपने आप ही जहन में आ जाता है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन सच बात यह है कि उन्होंने बहुत कम फिल्मों में जानी लव्स का इस्तेमाल किया है, जैसे कि 1968 की फिल्म वासना, जी इस नाम से भी फिल्में बनती थी, इसमें उन्होंने, सुनिए इस डायलॉग में कैसे जानी बोला।
2: और डालो जानी,
3: अपन ने शराब उधार बेचने का कसम खाया है, ये बोर्ड में देखते आज न कल उधार।
2: ये तो वो बात हुई जानी कि आज मरो और कल जियो।
1: अच्छा, ज्यादातर ये माना जाता है कि वक्त फिल्म के किसी बहुत पॉपुलर डायलॉग में उन्होंने जानी बोला है, जबकि ऐसा नहीं था। हुआ कुछ यूं था कि श्रीदेवी ने चालबाज फिल्म के कॉमेडी सीन में उनकी मिमिक्री करते हुए वक्त फिल्म के डायलॉग को कुछ ऐसे बोला था, सुनिए।
4: जानी ये चाकू है, क्या है?
5: चाकू,
4: लग जाए तो खून निकल आता है।
1: और वाकई में वक्त फिल्म का डायलॉग क्या है, जब वो विलन के हाथ में चाकू को देखकर ये बोलते हैं,
2: ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है।
1: सो द ट्रूथ इज, राजकुमार साहब ने फिल्मों में ज्यादा जानी नहीं बोला है, बल्कि वो रियल लाइफ में इस लफ्ज का इस्तेमाल बहुत करते थे। तो जानी, उन्हीं की फिल्म का गाना सुनते हैं, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं

0: यानी ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ। पुरानी जींस पर सुनो, सुन रहे हो ना मिर्ची पर
1: मिर्ची।
2: इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नफीत वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो,
4: मिल गया
5: मैडम। आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेस वन से फेस टू गई थी, याद है आपको?
3: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
5: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाए को मुड़ने के लिए, जब दाए मुड़े हैं ना हम। मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आज जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम कि छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
3: क्या तुझे पागल लग
5: नहीं वो? मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
3: क्या कहना है?
5: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना। रिक्शा वाले
4: मेरी बात है। अच्छा चारू, चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू चारू चलो। हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू, बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा नहीं, रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
7: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: जानी ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ। पुरानी जींस पर सुनो, सुन रहे हो ना मिर्ची पर।

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: इस बात में कोई डाउट नहीं है कि पाकीज़ा फिल्म कम्प्लीटली बिलोंग्स टू मीना कुमारी जी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन ये बात भी है कि राजकुमार साहब ने उस फिल्म को एक अलग तरह से ओन किया था, जिस तरह से उन्होंने डायलॉग्स बोले थे। जैसे कि ये एक डायलॉग जो मोहब्बत में बागी बनकर वो अपने बड़े अब्बा को बोलते हैं, सुनिए।
2: मैं भूल गया था इस घर के इंसानों को हर सांस के बाद दूसरे सांस के लिए भी आपसे इजाजत लेना पड़ती है, और आपकी औलाद खुदा की बनाई हुई जमीन पर नहीं चलती, आपकी हथेली पर रेंगती है।
1: ओए होए होए होए, फिर उनका शायरी बोलने का अंदाज भी अजब गजब रहा है। इसी फिल्म में जब वो एक शेर पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं?
3: बदल कर फकीरों का अंधे सवालिब तमाशाए अहले करम देखते हैं।
1: ये हुई ना शेरों वाली बात। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: यानी ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ। पुरानी जींस पर सुनो, सुन रहे हो ना मिर्ची पर
1: मिर्ची स्टोरीज।
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: अरे चाटा क्यों मारा?
4: चला पैसे निकाल।
3: किस बात के पैसे?
4: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
5: क्या बोला तूने?
3: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
6: क्या जोक मारा भाई?
3: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
4: कौन सा?
3: चाटा लगा
4: भाई लगा।
7: मिर्ची, इट्स हॉट।
8: दोस्ती कैसे सुले मैडम? No sorry, no thank you.
9: भाई साहब sorry and thank you. हमें दोस्ती नहीं entertainment चाहिए।
10: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ entertainment खूब मिलेगा।
11: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
12: कतर का number one radio station. 89.6
13: FM मिर्ची one. It's hot.
14: पुरानी जींस with Charu only on.

0: अर्ली 80s की मूवी थी बुलंदी, उसके कुछ डायलॉग सुनते हैं। एक सीन होता है जिसमें रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद डैनी उनको फेस करते हैं सड़क पे, तो उनको वो क्या बोलते हैं?
1: बिल्ली के दांत गिने नहीं और चला शेर के मुंह में हाथ डालने। ये बदतमीज हरकतें अपने बाप के साथ घर के आंगन में करना, सड़कों पर नहीं।
0: इसी फिल्म में एक फंक्शन में वो एक शायरी भी बोलते हैं।
1: खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है।
0: ऑल्सो इसी फिल्म में जब उनको मारने की धमकी दी जाती है तब वो क्या बोलते हैं, सुनिए।
1: हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं।
0: कितनी बार ये शेर सुना है, लेकिन राजकुमार साहब के मुंह से सुनना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए।

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: राजकुमार साहब जब कोई किरदार निभाते थे तो किरदार उनमें नहीं घुसता था, वो किरदार में घुस जाते थे। मिर्ची सुन रहे आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यही तो थी उनकी अलग बात। अच्छा, उनकी एक

जानी ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ पुरानी जींस पर सुनो सुन रहे हो ना मिर्ची पर

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: बॉलीवुड बॉय डाल Boys of the Hindi film industry.
2: First reference is always going to be Varun Dhawan, and I'll tell you why. क्योंकि वरुण का जो फिजिक है वो बहुत ही proportionate है. उसके legs बहुत ही strong है. Tiger Shroff, fantastic body. Ranveer Singh, extremely fit. And of course, Hrithik Roshan. Honestly, amongst all these, including myself, I think सबसे fittest इंसान हमारे industry में is Akshay Kumar. And I mean holistically fit. He can survive anywhere. अगर आप उसको Mount Everest पे छोड़ दो, अगर आप उसको रेगिस्तान में छोड़ दो, अक्षय कुमार will be the only guy who will survive and come out.
1: छोड़ने की जरूरत ही नहीं है जॉन अब्राहम. अक्षय कुमार is the only person in the Hindi film industry जो by choice इन जगहों पर जाएंगे. आप सुन रहे हैं मिर्ची, It's hot.
3: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood.

0: Only on Mirchi. It's hot.
1: बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
2: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
3: कैसे रुक सकता है?
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
4: FM मिर्ची वन इट्स हॉट।
6: पुरानी जींस चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: Sarigama, 1, 2, 3, 4.
1: Sarigama, ma sarigama, sarigama, magaresa. Sarigama, ma sarigama, sarigama, magaresa. Magaresa, magaresa, magaresa, magaresa, magaresa, magaresa, magaresa.
2: Jani, ye hamara special show hai. राजकुमार स्पेशल।
3: सारे एक्टर्स की डायलॉग डिलीवरी एक तरफ, राजकुमार साहब की डायलॉग डिलीवरी एक तरफ। मिर्ची सुन रहे आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और राजकुमार साहब डायलॉग्स ही बढ़िया नहीं बोलते थे, शायरी भी क्या बढ़िया बोलते थे। उनके रोमांटिक रोल्स में भी डायलॉग डिलीवरी अलग ही तरह की होती थी, जैसे उनकी फिल्म हीर रांझा में। सुनिए शायरी उन्होंने कैसे बोली।
4: तुझको पाना जिंदगी है, तुझको खोना मौत है, और कुछ इसके सिवा मेरे फसाने में नहीं। मांग लूंगा मैं खुदा से या चुरा लूंगा तुझे, तुझसा मोती दूसरा उसके खजाने में नहीं।
3: ओए होए होए होए, सदके जाऊं। वैसे राजकुमार साहब ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1952 की फिल्म रंगीली से की थी। फिर उनको पहचान मिली 1957 की मदर इंडिया फिल्म से। हालांकि उसमें उनका रोल काफी छोटा सा था, लेकिन वो फिल्म इतनी बड़ी बन गई कि राजकुमार भी बड़े बन गए। राजकुमार साहब को अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था 1964 की फिल्म दिल एक मंदिर में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के रोल के लिए। इसी का गाना सुनते हैं जो रील्स पे काफी ट्रेंडिंग है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं।

यानी ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ। पुरानी जींस पर सुनो, सुन रहे हो ना, मिर्ची पर

0: पुरानी चीज विद चारू ओनली ऑन मिर्ची.
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन.
2: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है.
1: मैं एक लड़के को एक महीने से डेट कर रही थी, पर मुझे आज पता चला कि वो मैरिड है. क्या करूं?
2: अरे अच्छा है ना, एक बार जो उसने कमिटमेंट कर लिया तो दूसरी बार भी कर ही लेगा ना.
3: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा.
4: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983. इट्स हॉट.

0: सुनार जी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: राजकुमार साहब को उनकी डायलॉग डिलीवरी के लिए जिस फिल्म से पहचान मिली थी ना, वो थी 1965 की वक्त। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और खास तौर पे इस फिल्म में उनके और एक्टर रहमान, जो इसमें चिनॉय सेठ प्ले करते हैं, इन दोनों के बीच के जो डायलॉग्स थे ना, वो बहुत पॉपुलर हुए थे, खास करके ये वाला।
2: ये काम सिर्फ राजा कर सकता है, और राजा ना करे तो राजा, मैं जितनी मोहब्बत करता हूँ उतनी नफरत भी कर सकता हूँ। मोहब्बत और नफरत, चिनॉय सेठ जिनके अपने घर शीशे के हों, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते।
1: ओए होए, ग्लास फोड़ दिया। नहीं सही में, इस सीन में जब ये डायलॉग खत्म होता है तो राजकुमार साहब के हाथ में एक वाइन का ग्लास होता है जो वो टेबल पे ऐसे फोड़ देते हैं। इस फिल्म के लिए उनको अपना दूसरा बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। और मैं यानी कि चारू आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, राइट हियर पुरानी जीन्स पर ऑन मिर्ची।

जानी ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ पुरानी जींस पर सुनो सुन रहे हो ना मिर्ची पर

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना
3: बना
2: मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा
3: मिर्ची मुर्गा
4: हेलो
5: हैप्पी

0: हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, कहाँ पे है?
1: थैंक यू सो मच, लेकिन मेरा बर्थडे नहीं है।
0: तो फिर कहाँ पे भाई तेरा बर्थडे?
1: मेरा भी 3 महीने बाद बर्थडे आना है।
0: तो 3 महीने बाद है तो तू बता अब रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया? यहाँ मैंने पूरे ग्रुप को जमा करके तुझे विश करना चाह रहे हैं, हम पागल खड़े हैं? हैं राकेश, तेरे को पहले नहीं बताना चाहिए था ये?
1: भाई मैं राकेश नहीं हूँ, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, मैं राकेश नहीं हूँ।
0: तो सो के जाग रहा, राकेश भी नहीं है, तेरा बर्थडे भी नहीं है, तू पहले नहीं बता सकता था? दांत फाड़ रहा है, अब तेरे को बोले परेशानी?
1: तमीज नहीं है बात करनी?
0: तमीज तेरे को तमीज होनी चाहिए यार। यहाँ पे हम 50 आदमी खड़े हो गए, तेरे को बर्थडे विश कर रहे हैं, तेरे को पहले बोल देना चाहिए क्यों कर रहे हैं? मैं राकेश नहीं हूँ। नवाब साहब पहले पूरा सुनेंगे हैप्पी बर्थडे, फिर मेरे से कहेंगे यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं मेरा बर्थडे नहीं है, ना मैं राकेश हूँ। तू है कौन यार?
1: तू एक बार बता, मेरा नाम ना राकेश है, ना मेरा बर्थडे है, तू मेरे को जबरदस्त उल्टा सीधा बोले यार।
0: उल्टा सीधा मैं तेरे को नहीं बोल रहा, तू एक बार बता, तेरे को पहले बताना नहीं चाहिए था कि तेरा बर्थडे नहीं है? तो तेरा बर्थडे देख के क्यों नहीं आता आज? क्यों नहीं आया तेरा बर्थडे? बैक आ गया यार, ये केक तो खा ले।
1: हेलो, हैप्पी बर्थडे टू यू। तूने दिमाग खराब कर रखा है मेरा, मेरी
0: मेरी, मेरी बात सुने, मेरी बात सुन लो भाई। मैं तुम्हारा बर्थडे नहीं है, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम, मैंने तो ऐसे नंबर मिला दिया था। तुम्हारा बर्थडे नहीं मना रहे हैं, तुम्हारा मुर्गा मना रहे हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और तुम अपना नाम बताएंगे प्लीज अपना?
1: मैं समीर बोल रहा हूँ।
0: समीर, तुमसे ये मेरे साथ की जो टीम है ये कुछ कहना चाह रही है, जरा सुन लो एक सेकंड।
2: बोला कुकड़ू कुकू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, ये पकड़ा।
4: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
3: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।
6: पुरानी जींस विद चारू, ओनली ऑन

0: पहली बार।
1: आपका जो किरदार है वो आनन फानन में बरसात की रात में ट्रेन में अपने कंपार्टमेंट की जगह किसी गलत कंपार्टमेंट में घुस जाते हैं और वहाँ वो मीना कुमारी से मिलते हैं। एक्चुअली मिलते नहीं है क्योंकि वो तो सो रही होती है ना, और उनके चेहरे की तरफ तो वो ठीक से देखते ही नहीं है क्योंकि वो उनके खूबसूरत पाँव ही देखते रह जाते हैं। और फिर उनके पाँव में एक प्यारी सी चिट्ठी छोड़ के जाते हैं। उस चिट्ठी पे क्या लिखा होता है ये सुनिए।
2: माफ कीजिएगा, इत्तेफाकन आपके कंपार्टमेंट में चला आया था। आपके पाँव देखे बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे, आपका एक हम सफर।
1: ओए होए होए होए होए होए। वैसे जिसने ये फिल्म देखी है ना वो ये जानता है कि जिस तरह से राजकुमार साहब का किरदार इसमें मीना कुमारी के किरदार से प्यार करता है वैसा प्यार हर कोई चाहता है, ट्रू लव। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: जानी ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ पुरानी जींस पर सुनो सुन रहे हो ना मिर्ची पर
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: अरे चाटा क्यों मारा?
4: चला पैसे निकाल।
3: किस बात के पैसे?
4: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
5: क्या बोला तूने?
3: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसको एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
6: क्या जोक मारा भाई?
3: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
4: कौन सा?
3: चाटा लगा
4: भाई लगा।
7: मिर्ची इट्स हॉट।
8: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
9: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।
0: जानी ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ पुरानी जींस पर सुनो सुन रहे हो ना मिर्ची पर।

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: राजकुमार साहब का असली नाम कुलभूषण पंडित था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वो तो फिल्मों में आने के लिए उन्होंने अपना फिल्मी नाम रख लिया राजकुमार, जो उनको वेल सूटेड था, क्योंकि राजकुमार राजा महाराजा जैसे वो रहते थे। और उनके कई पॉपुलर डायलॉग्स में से एक है उनकी लेट 80s की एक फिल्म सूर्या का ये डायलॉग। इस फिल्म में वो एक कलेक्टर प्ले करते हैं, सुनिए जरा।
2: हम वो कलेक्टर नहीं जिनका फूंक मारकर तबादला किया जा सकता है। कलेक्टरी तो हम शौक से करते हैं, रोजी रोटी के लिए नहीं। दिल्ली तक बात मशहूर है कि राजपाल चौहान के हाथ में तंबाकू का पाइप और जेब में इस्तीफा रहता है। जिस रोज हम इस कुर्सी पर बैठकर इंसाफ नहीं कर सकेंगे, उस रोज हम इस कुर्सी को छोड़ देंगे। समझ गए चौधरी?
1: वैसे कलेक्टर, कमिश्नर, इंस्पेक्टर, इस तरह के रोल्स उनको बहुत ही नेचुरली सूट करते थे, क्योंकि फिल्मों में आने से पहले वो बॉम्बे पुलिस में पुलिस इंस्पेक्टर की जॉब करते थे। जी, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: शी इट्स हॉट।
1: गोविंदा, आपका अल्टीमेट फिटनेस टिप कौन सा है?
2: मुझे ऐसा लगता है योग और प्राणायाम जो है, इससे आपकी बॉडी जो है बहुत ही करेक्ट रहती है और आपको मतलब वो घबराहट नहीं होती है।
1: तो ये एडवाइस आप देंगे कंटेम्प्रेरी हीरोज को?
2: योग प्राणायाम तो करते ही होंगे वो लोग, मुझे ऐसा लगता है।
1: आपको क्या लगता है कौन कौन करता होगा? मैं आपको तीन नाम देती हूँ, इन तीनों में से बताइए। वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जॉन अब्राहम।
2: ये तीनों एक्टर्स ऐसे हैं लोगों की, मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी ज्यादा अच्छी है और पता नहीं कितने पैक निकले हुए हैं। उस जमाने में तो पूरी शाम में सब लोग हीरो लोग पैक ही लगाया करते थे, अब वो पैक उनके पेट पे आ गए। टेढ़ा मेढ़ा क्या नजर आ रहा है, ये पेट है इनका? ओहो, अच्छा अच्छा, फाइन फाइन फाइन, वेरी गुड वेरी गुड।
1: फिटनेस का पता नहीं लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर पर 110 फॉर चीची। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
3: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
0: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: पुरानी जींस चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: 1970 की फिल्म ही रांझा एक सुपरहिट फिल्म थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एंड वन ऑफ द मेन रीजंस इसके हिट होने का, इसके पोएटिक डायलॉग्स। इसमें हीर का रोल प्ले करती हैं प्रिया राजवंश और रांझा का रोल प्ले करते हैं राजकुमार साहब। और राजकुमार साहब हो और डायलॉग डिलीवरी की बात ना हो, कैसे हो सकता है। चलो उनके ढेंटेड एंड डिशुम डिशुम एक्शन वाले डायलॉग्स जो होते थे वो तो एक से एक बढ़कर होते थे, लेकिन उनके ये जो रोमांटिक पोएटिक डायलॉग्स होते थे इनकी भी एक अलग ही बात है। तो हीर रांझा में एक शायरी जो वो रिसाइट करते हैं हीर के लिए, वो सुनते हैं।
2: तू जब आ जाती है पास, भूख मर जाती है, जाग उठती है प्यास, तुझ में भोलापन भी है, शोखी भी है, देख सकती काश अपना हुस्न मेरी आंख से, तू सब पाया है आशिक की नजर पाई नहीं, जब से देखा तुझको दुनिया की तरफ देखा नहीं, जब से चाहा तुझको अपनी याद भी आई नहीं।
1: ओए होए होए होए होए होए, दिल किडनी जिगर सब निकाल कर ले गए सर। अज्ञानी राजकुमार साहब, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

जानी, ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ। पुरानी जींस पर सुनो, सुन रहे हो ना, मिर्ची पर

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय अंजलि, मिर्ची हेल्पलाइन बोल।
0: यू नो आई लव ट्विनिंग, पर मेरा बीएफ मैचिंग कपड़े कभी नहीं पहनता, वो हर बार ना बोल देता है, क्या करूं?
1: हाय, तो गलत थोड़ी बोल रहा है, लड़के स्कर्ट में थोड़ी अच्छे लगते हैं अंजलि।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्कट हंस।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स

0: तरीके थे, लेकिन यहाँ पर हम उनका एक सख्त डायलॉग सुनने वाले हैं वक्त फिल्म से। एक्चुअली 1965 की वक्त फिल्म है जिसने उनकी अलग तरह की डायलॉग डिलीवरी को एक पहचान दी। इसमें उनके डायलॉग्स काफी हिट हुए थे, खास करके चिनॉय सेठ प्ले कर रहे रहमान के साथ जो उनके इंटरैक्शंस होते हैं, तो ऐसा ही एक इंटरैक्शन सुनते हैं।
1: चलो हटाओ, जो देखा ख्वाब था, जो सुना अफसाना था, अब अपनी दुनिया में वापस आ जाओ। राजा आगे बढ़कर कभी पीछे नहीं हटा करता चिनॉय सेठ।
0: तो ये एंड में जो आवाज आई ना, तो इसमें वो इस सीन में वो गन शॉट से दो लैंप फोड़ देते हैं। ये प्रोड्यूसर्स को राजकुमार साहब के डायलॉग्स बहुत महंगे पड़ते थे, कभी वो लैंप फोड़ देते थे, कभी ग्लास तोड़ देते थे। खैर, नरम दिल इंसान जब गुस्सा करता है तो काफी कड़क हो जाता है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

जानी ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ पुरानी जींस पर सुनो सुन रहे हो ना मिर्ची पर

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सका बना। मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो,
4: इज दैट वर्षा? वर्षा, मैं निखिल बोल रहा हूँ। एक्चुअली मुंबई से मैं बोल रहा हूँ। हमारा एक रियलिटी शो शुरू होने वाला है जिसका नाम है धारे गम पा।
3: क्या नाम बताया आपने?
4: धारे गम पा। हमारा ये रियलिटी शो है। मुझे कहीं से पता चला कि आप अच्छी सिंगिंग कर लेती हैं, अच्छा गाना गा लेती हैं, और किसी ने मुझे बताया कि आप हिमेश रेशमिया को भी कॉपी कर सकती हैं, उनके गाने आपको पसंद हैं।
3: थोड़ा बहुत गा लेती
4: हूं। ओके, मैं आपको टेलीफोन पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। अगर धारे गम पा में आप शॉर्टलिस्टेड हो गई तो हम आपको फिर इस रियलिटी शो में पूरा हिंदुस्तान देखेगा, आपको गाने का मौका देंगे।
3: बट ये रिकॉर्डिंग आप फोन पर ही करेंगे?
4: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझिए। आपको जो भी गाना देंगे आप उसमें हिमेश रेशमिया का जो आपने मशहूर सुना होगा अब तक, ओ राइट, वो जो एक उनका सुर है,
3: लेकिन उनकी कॉपी करनी पड़ेगी।
4: नहीं नहीं नहीं, नॉट एग्जैक्टली कॉपी। आप कोशिश करिएगा कि हिमेश रेशमिया स्टाइल में गाना आपने सुना ही होगा। गाना है आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। गाने की शुरुआत में, गाने के बीच में, अंतरा जब खत्म हो, मुखड़ा जब शुरू हुआ, आप ऊ ऊ लगाएंगी। स्टार्ट वर्षा। वर्षा वन सेकेंड, देखिए ऊ।

0: वही वाली ऊंच चाहिए जो पहले करी थी आपने, बहुत अच्छी करी है।
1: देखिए इससे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा।
0: अरे गड़बड़ आपको क्या प्रॉब्लम है, हमारा शो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, धारेगा में पानी सा, स्टार्ट।
1: मिल गई मंजिल मुझे।
0: ऊंच चाहिए, ऊंच चाहिए।

0: वही वाली ऊँ चाहिए जो पहले करी थी आपने, बहुत अच्छी करी है।
1: देखिए इससे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा।
0: अरे गड़बड़ आपको क्या प्रॉब्लम है, हमारा शो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, धारेगा में पानी सर। स्टार्ट
1: मिल गई मंजिल मुझे,
0: ऊँ चाहिए तेरा तेरा तेरा
1: मंजिल मुझे,
0: ऊँ चाहिए तेरा तेरा तेरा
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

0: में खड़े होते हैं और बालकनी से सामने से नजारा दिख रहा होता है, पहाड़ होते हैं और झरना बह रहा होता है। और इसमें ना सिचुएशन कुछ यूं होती है कि मीना कुमारी जी ऐसा नाटक कर रही होती है कि उनको कुछ याद नहीं आ रहा है, वो अपने आप को भूल चुकी हैं। तो इस सीन में सुनिए इन दोनों के बीच में क्या इंटरेक्शन होता है।
1: तुम शायद हमेशा के लिए अपने आप को भूल चुकी हो और अब मुझे यकीन हो चुका है कि तुम कोई नहीं हो, सिर्फ मेरी तकदीर हो। उधर देखो, सारा आलम तुम्हारे कदमों पर झुका हुआ है और ये सब तुम्हें सलाम कर रही है।
2: लल्ला, चुप हो जाइए, इतने प्यार से मेरी जान मत लीजिए। मैं इकरार किए लेती हूँ, मुझे सब याद है, मैं क्या हूँ, कौन हूँ।
0: उफ तौबा, सदके वारी जाऊं। और इसी रोमांटिक सीन के बाद आता है ये रोमांटिक गाना जो हम यहाँ पर सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।
3: चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो।
2: याद है मैं क्या हूँ, कौन हूँ।
0: उफ तौबा, सदके वारी जाऊं। और इसी रोमांटिक सीन के बाद आता है ये रोमांटिक गाना जो हम यहाँ पर सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।
3: चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो।
0: मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

जानी ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ पुरानी जींस पर सुनो सुन रहे हो ना मिर्ची पर

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: Hi, this is Akshay Kumar.
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन।
3: Hi, everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: Hi, this is सलमान खान। खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहाँ कहाँ थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुँचाया।
8: यहाँ की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहाँ का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका फेवरेट।

89.6 Mirchi 1. It's hot. Purani Jeans. With Charu. Only on Mirchi.

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: कितनी ही सॉलिड होगी वो डायलॉग डिलीवरी जो राइटर्स को अच्छे डायलॉग्स लिखने पर मजबूर कर देती होगी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ऐसी ही डायलॉग डिलीवरी करते थे राजकुमार साहब। किसी भी फिल्म में राजकुमार साहब हो, ये तो तय होता था कि उसके डायलॉग एकदम धांसू होंगे। ऐसी एक फिल्म थी लेट 80s की, मरते दम तक। इस फिल्म के उनके कुछ डायलॉग्स काफी पॉपुलर हैं, सुनिए जरा।
2: हम कुत्तों से बात नहीं करते, ठीक है? बोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। राणा का माल तो बड़ी शान से राणा तक पहुंचेगा डीके। ले जाने की बात को भूल जाओ, अगर तुमने गलती से उसे कहीं देख भी लिया तो हम तुम्हें ऐसी मौत मारेंगे तुम्हारी आने वाली नस्लों की नींद भी उस मौत के खौफ से उड़ जाएगी।
1: क्या बात है भाई। वैसे आपने अगर ये फिल्म नहीं देखी ना, प्लीज देखें, खास करके इसके दो ग्रेट एक्टर्स के लिए, राजकुमार साहब और ओमपुरी साहब। दोनों इसमें गैंगस्टर प्ले करते हैं जो आपस में भिड़ते रहते हैं, और क्या डायलॉग बाजी है दोनों के बीच में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्च।

0: जानी ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ पुरानी जींस पर सुनो सुन रहे हो ना मिर्ची पर
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: अनिल कपूर सर, ये सवाल हम आपसे 365वीं बार पूछ रहे हैं कि आपकी फिटनेस का राज क्या है।
4: हेल्थ ऐसी बनाओ, काम ऐसा करो कि आप 40, 50 साल 60 साल तक आराम से वैसे ही काम करते रहो। मीठा खाना है तो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, आपको मीठा अगर सूट नहीं करता तो हफ्ते में एक बार खाइए, और खाना है तो थोड़ा सा खाइए। आपको नमकीन पसंद है उसका मतलब ये नहीं कि आप इतना ही नमकीन खाते रहें। आपको चावल पसंद है तो दबा के आप चावल ही खा रहे हैं आप, यू नो, तो हर चीज़ करनी चाहिए मगर थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके। यू शुड वर्क इट आउट एंड बैलेंस एवरीथिंग इन लाइफ एंड डू एवरीथिंग इन लाइफ एंड दैट्स I feel is the mantra for your fitness. You do everything, but do it in moderation, and do it what makes you happy.
3: Health tip आपने दिया एकदम class, क्योंकि अनिल कपूर आप आदमी एकदम झकास। आप सुन रहे हैं मिर्ची, it's all.
1: Bollywood bol dal, Bollywood Bollywood Bollywood bol dal.
2: Only on Mirchi, it's hot.
5: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
6: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
2: बार बार
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
6: FM मिर्ची वन इट्स हॉट।
0: जानी ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ पुरानी जींस पर सुनो सुन रहे हो ना मिर्ची पर।

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: भाई ऐसा सुनने में आता है कि राजकुमार साहब के फिल्मों के सेट पे अलग ही तरह के टैंट्रम्स होते थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। वो बहुत पंक्चुअल, डिसिप्लिन्ड, हार्ड वर्किंग तो थे, लेकिन उनके टैंट्रम्स भी होते थे। जैसे कि उनको सफेद जूते पहनना बहुत पसंद था। कई बार यूं भी होता था कि सीन में वो जूते सूट भी नहीं कर रहे होते थे या रिक्वायर्ड भी नहीं होते थे, लेकिन उनको पहनने होते थे। वैसे चाहे डिशुम डिशुम, ढेंटड़न, एक्शन टाइप के रोल्स हों या सॉफ्ट रोमांटिक डायलॉग्स हों, राजकुमार साहब की डायलॉग डिलीवरी पार एक्सेलेंस। उनकी हीर रांझा फिल्म का ये डायलॉग सुनिए जरा।
2: मोहब्बत का तमाशा, इश्क की तासीर देखोगे, मेरे सीने में, दिल में हीर की तस्वीर देखोगे।
1: क्या बात है। और इस फिल्म में उन पर पिक्चराइज्ड एक गाना, वो तो एक तरह का एंथम बन गया था उस टाइम पे जब रिलीज हुआ था, बहुत ही हिट हुआ था। इनफैक्ट आज भी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन हो जब आप अपने लाइफ से, अपने रिश्तेदारों से, अपने कलीग से, अपने दोस्तों से बेजार हो जाएं, डिसअपॉइंट हो जाएं, और ये गाना सुन लें तो एक अलग ही तरह का सुकून मिलता है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

जानी ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ पुरानी जींस पर सुनो सुन रहे हो ना मिर्ची पर

0: Mix. Mirci. Mirci. Fresh Maal.
1: जब हर बीट में हो तड़का, तब बनती है चटनी।

0: इस गाने को आवाज दी है नीलकमल सिंह और ममता शर्मा ने, म्यूजिक दिया है आदित्य देव और नीलकमल सिंह ने, और लिरिक्स लिखे हैं धीरज बबुआन ने। धमाल फोर से सुनते रहिए चटनी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6,
1: it's hot.